0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: किसी की एक लाइन मेरी मन, फीलिंग्स, वर्ड्स, एक्शन, रिलेशनशिप एंड बॉडी, छह चीजों पर असर हुआ मेरे। एक घंटे तक ये पूरी साइकोलॉजी, फिजियोलॉजी सब डिस्टर्ब रहे, रिश्ता डिस्टर्ब हुआ, रात को भी वो बात याद आई। एंड डेफिनेटली जब ये चीजें दिन में इतनी देर माइंड पे रही होंगी, ये नींद में जरूर चले होंगे, क्योंकि जो थॉट्स एक्टिव ड्यूरिंग द डे चलेगी ज्यादा, ये नींद

0: अजी सुनते हो?
1: हाँ सुनी तो रहा हूँ।
0: क्या सुन रहे हो?
1: रेडियो पुनेरी आवाज।
0: ओ रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

इस भजन में भक्त ने भगवान के साथ ऐसे सुंदर सुंदर संबंध जोड़े कि ना तो भक्त भगवान से दूर रह सकते हैं, ना भगवान भक्त से दूर रह सकते हैं।

लिबास चाहे जो हो, अंदर से हम सब हिंदुस्तानी हैं। एकता की डोर में सबको बांधता पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

नमस्कार दोस्तों, ज्ञान की धारा इस कार्यक्रम में मैं ज्योत्सना आपका स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो हमारा आज का विषय है महाभारत रूपी मनोयुद्ध में संपूर्ण विजय कैसे प्राप्त करें। आज हम देखते हैं कि इस घोर कलयुग में मानव जीवन महाभारत युद्ध का रूप ले चुका है। प्रतिदिन व्यक्ति अपने जीवन को सुखी, समृद्ध और खुशहाल बनाने के लिए मनोयुद्ध रूपी संघर्ष करते हुए विजय का प्रयास करता नजर आता है, किंतु गलत आधार चुनने के कारण उसे विजय से अधिक हार का सामना करना पड़ता है। यादगार महाभारत युद्ध में दुर्योधन ने कृष्ण से उनकी सेना प्राप्त की और अर्जुन ने निहत्थे कृष्ण को अपना सारथी बनाया। परिणाम सभी जानते हैं कि निहत्थे होते हुए भी श्री कृष्ण ने पांडवों को जीत दिलाई और दुर्योधन की हार हुई। दुर्योधन की यही भूल थी कि उसने सेना को महत्व देते हुए भगवान का साथ ठुकरा दिया। आज लगभग

व्यक्ति उसी दुर्योधन के मनोभाव का अनुसरण कर रहा है। ईश्वरीय नियमों मर्यादाओं का उल्लंघन करते हुए वह सांसारिक संपदाओं के बल पर जीवन रूपी संग्राम में विजयी होना चाहता है, लेकिन परमात्मा को अपना साथी सारथी व खेवैया बनाकर जो जीवन रूपी रण क्षेत्र में उतरता है उसी की विजय होती है। सांसारिक सुखों का भोग करने की लालसा से हम अनेक अनेक पाप करते हुए भौतिक संपदाओं का लंबा चौड़ा साम्राज्य स्थापित करने लग जाते हैं। इतिहास साक्षी है कि रावण सिकंदर आदि अनेक लोगों ने यह मार्ग अपनाने की भूल की और अंत में पछतावे के सिवाय उनके जीवन में कुछ भी नहीं बचा। तो आज हम देखते हैं कि भौतिक संपदाओं के आकर्षण के अंधे होने के कारण संपूर्ण सृष्टि के संचालक परमात्मा की स्मृति ही बुद्धि से ओझल हो जाती है। अहंकार में डूबे ऐसे लोग जीवन में चाहे कुछ भी करें, किंतु उनकी जो सर्व प्राप्तियां संदिग्ध ही रहती है। तो इसी के साथ हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद मैं फिर से आपसे आकर मिलती हूँ, और तब तक के लिए आइए सुनते हैं इस गीत को।

नमस्कार दोस्तों, तो ज्ञान की धारा इस कार्यक्रम में मैं ज्योत्सना आपका फिर से स्वागत करती हूँ। हमारा आज का विषय महाभारत रूपी मनोयुद्ध में संपूर्ण विजय कैसे प्राप्त करें। तो हम अपने आगे की चर्चा इसी तरह जारी रखते हैं। आज जैसा कि हम देखते हैं कि वैभव युक्त जीवन की लालसा

हमसे ईश्वरीय सत्ता की अपेक्षा करवाती है, जो जीवन पर्यंत दुख कष्ट रोग संताप विलाप आदि का अनुभव कराने वाली है।

समस्याएं तो समाप्त नहीं होती, किंतु जीवन से उमंग उत्साह मनोबल और आत्मबल अवश्य समाप्त होने लगता है। यदि आप देखें तो संपूर्ण श्रद्धा भाव से जीवन नैया को पतवार जो है जीवन की नैया की पतवार परमात्मा के हाथों में सौंप दी जाए तो मन से भय व संशय समाप्त हो जाएगा। प्रभु पालना से प्रतिदिन आप देखना, दिन प्रतिदिन हमारा चरित्र दिव्य गुणों से भरपूर होता जाएगा। इस विश्व नाट्य मंच पर समस्त घटनाएं हमारे ही कर्मों के प्रतिफल के रूप में निर्धारित समय पर घटित होती रहती है, जिनके लिए कोई और व्यक्ति दोषी नहीं है। इसलिए विपरीत परिस्थितियों में परमात्म सत्ता पर अटूट व अटल विश्वास ही हमें उनका सामना करने का संबल प्रदान करता है। विश्व में कर्म की प्रधानता, कर्म करना मानव धर्म है। कर्मों के आधार पर ही जीवन यापन के समस्त साधन जुटाए जाते हैं। हम परमात्मा द्वारा निर्मित जो भी वैश्विक आचार संहिता की परिधि में रहकर जो भी ईश्वर इच्छा के अनुरूप ही प्रत्येक कर्म करे, हमारे मन बुद्धि में यह प्रश्न सदा विचरण करता रहे कि परमात्मा मुझसे क्या करवाना चाहता है। क्या मैं परमात्मा की इच्छा अनुरूप ही कर्म करती हूँ या करता हूँ? परमात्मा इच्छा को प्रधानता देने वाला उसके पावन हृदय से स्थान प्राप्त करने के साथ साथ अपना भौतिक जीवन में दिव्य श्रेष्ठ और महान बना सकता है। अपने जीवन को, अपने सर्व कर्म यदि परमात्मा को अर्पित कर दिए जाए तो वह हमें सर्व दुखों से पार कर देगा। तो दोस्तों, इसी के साथ हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद मैं फिर से आपसे आकर मिलती हूँ, और तब तक के लिए आइए सुनते हैं इसकी

नमस्कार दोस्तों, तो फिर से स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में और हम अपने आगे की चर्चा इसी तरह जारी रखते हैं। हमारा आज का विषय है महाभारत रूपी मनोयुद्ध में संपूर्ण विजय कैसे प्राप्त करें। जैसे कि हम देखते हैं आज की विडंबना यह है कि सब कुछ जानते हुए भी हम

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: एक वाक्य ने मेरे थॉट्स को डिस्टर्ब किया, फीलिंग्स को डिस्टर्ब किया, मेरे शब्द डिस्टर्ब हुए, मैंने शायद वो चीजें बोल दी आपने जो बोलनी नहीं चाहिए थी, फिर आपका बिहेवियर डिस्टर्ब्ड हुआ, फिर रिलेशनशिप एनर्जी एक्सचेंज डिस्टर्ब हुआ एक घंटे के लिए। लेकिन मुझे अपने आप को ये चेक करना है कि ये जो मैं सोच रही हूँ, इज इट कम्फर्टेबल फॉर मी। एक चीज हमने मिस आउट की कि ये सारी थॉट्स एंड फीलिंग्स जो हमने क्रिएट की उसका इफेक्ट हमारे शरीर पे भी पड़ा। व्हेन वी हैव अंडरस्टूड कि एवरी थॉट दैट वी क्रिएट, जस्ट दी अदर डे एक डॉक्टर ने हमें एक्सप्लेन किया, एक साइकाइट्रिस्ट है, तो उन्होंने कहा ब्रेन के अंदर 10,000 करोड़ सेल्स है, दिस इज द ब्रेन, ओके, 10,000 करोड़ सेल्स। एंड फिर उन्होंने कहा ये 10,000 करोड़ सेल्स आर, ईच सेल इज कनेक्टेड टू एटलीस्ट 10,000 मोर सेल्स इन द बॉडी, 10,000 करोड़ सेल्स इन द ब्रेन इंटू 10,000, दिस इज द ह्यूमन नेटवर्क, सो मेनी स्विचेस कनेक्टेड टू सो मेनी स्विचेस। अब जब इतने स्विचेस से कनेक्टेड होते हैं तो एक में भी अगर कुछ ऊपर नीचे होगा तो उसका इफेक्ट कितना लंबा जाएगा। तो जब ब्रेन में 10,000 करोड़ सेल्स कनेक्टेड टू 10,000 सेल्स, ईच सेल कनेक्टेड टू 10,000 सेल्स इन द बॉडी, एंड हर थॉट जो हम क्रिएट कर रहे हैं उसका ब्रेन पर असर पड़ रहा है, ब्रेन से फिर वो केमिकल सिक्रेट होते हैं, फिर उसका असर शरीर पे पड़ता है, और हमने कितने आराम से एक घंटा डिस्टर्ब रहे। अब हम अगर इस इक्वेशन को सिर्फ चेक करें तो एक घंटे में कितना इम्पैक्ट आया होगा हमारे शरीर के ऊपर, उससे हमें याद नहीं रहता ना, क्योंकि हमें शायद नॉलेज नहीं है, अवेयर नहीं है, या हम अपने आप को अलाउ करते हैं वैसे करना।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM, खुश रहो खुशियां बांटो।
2: हे महामाया, तेरी सदा ही जय हो। तूने भक्ति का दान देकर एक भक्त का जीवन सफल कर दिया है। इस नाचीज को अपने चरण की शरण देकर उसका जीवन खास बना दिया है। अब ये भक्त ताउम्र तेरे चरणों में रहना चाहता है, सदैव उसकी सेवा को स्वीकार करते रहना। हे दातिये, एक

0: शिवाजी की तलवार है, लावणी बेमिसाल है, टेक्नोलॉजी के साथ संस्कार है। मराठी करती स्वागत हर भाषा का, यहाँ भूमि अपनाती हर त्योहार है। सुनिए पुनेरी आवाज 107.8, खुश रहो, खुशियाँ बांटो।
1: करदर्शन

ओम शांति अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में आज फिर आप सबका स्वागत। जैसे ही बात हम स्पिरिचुअलिटी की करते हैं या अध्यात्म की करते हैं लगता है कि किसी और के बारे में बात की जाने वाली है, लेकिन जैसे ही बात अपने जीवन की हो रही होती है तब हम सुनना चाहते हैं। तो एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं इस नई श्रृंखला में जिसमें हम बात जिंदगी की कर रहे हैं, और जहां अध्यात्म हुआ, जहां स्पिरिचुअलिटी हुई, वो सचमुच बात मेरी ही तो हो रही होती है। अगर आपको याद हो पिछली कड़ी में हमने बात की थी खुशी की। सब कुछ होते हुए भी कभी ऐसा लगता है कि हम खुश नहीं हैं, और एक बात जिस पर छूटी थी

0: बात जो कड़ी हमारी खत्म हुई थी वो थी कि हम सबका ध्यान रखते हैं लेकिन खुद यानी इस बॉडी या इस पर्सनालिटी का नहीं, बल्कि जो मैं हूं द बीइंग उसका ध्यान नहीं रखते हैं। कैसे रखना है वो ध्यान और उसी से जुड़ी और कई सारी बातें इस पूरी श्रृंखला में हम करने वाले हैं। आज की कड़ी को शुरू करते हैं। हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति
0: सिस्टर शिवानी, अगर पिछली कड़ी पर नजर डालते हैं, बहुत कुछ हमने एक नए अंदाज से देखने की कोशिश की और जो बात आई थी कि सब कुछ हो रहा होता है, सबका ध्यान हम रखना चाहते हैं, कहीं आपने कहा कि हम ध्यान अपना नहीं रख पाते हैं। ध्यान अपना इन द सेंस खाना खाना है, फिजिकली ड्रेस अच्छी पहननी है, आई शुड लुक गुड परफेक्टली फाइन, सब कुछ है वो रखते हैं, लेकिन
1: माय चेयर शुड बी कंफर्टेबल,
0: ओह यस, माय कार शुड बी, एयर कंडीशनिंग शुड बी परफेक्ट, यू नो मुझे पसीने नहीं आने चाहिए, अनकंफर्टेबलनेस नहीं होनी चाहिए, लेकिन
1: विच इज वेरी गुड, सी व्हाट अ ब्यूटीफुल सेंटेंस, अनकंफर्टेबल नहीं होना चाहिए मीन्स कंफर्टेबल होना चाहिए। शरीर के लिए कितना ध्यान रखते कंफर्टेबल होना चाहिए आप?
0: मन कि मन के बारे में हम भूल ही जाते हैं, क्योंकि मन के बारे में ध्यान रखना हमें आता ही नहीं शायद। एक यहाँ पे मैं आपसे बात पूछना चाहती हूँ, आपने कहा कि हम ध्यान नहीं रखते कि हम खुश कितना है, लेकिन हम सब कुछ जो कर रहे हैं उसमें तो मुझे खुशी मिल रही है, फिर ध्यान कैसे नहीं रखते? मेरा बच्चा जब खाना खा लेता है या मेरा बॉस मुझसे खुश हो जाता है, मैंने एक अच्छी चीज अचीव कर ली अपनी कोई चीज, मुझे बहुत खुशी मिलती है। मेरे पेरेंट अगर मैं कुछ ऐसी चीज करके उनको देती हूँ और वो खुश होते हैं, आई फील वेरी गुड, यू नो दिस गिव्स मी हैप्पीनेस, तो फिर कहाँ ध्यान नहीं रखा? मैंने जो सारी चीजें की अपने वाइफ के लिए किया या अपने बच्चे के लिए किया, मुझे इसी में तो खुशी मिल रही है, तो फिर मेरे को क्यों है कि मैं, आपने कहा कि हम ध्यान नहीं रखते, हम ध्यान तो रख रहे हैं।
1: आई डोंट नो, वी हैव टू, एवरी वन हैज टू आस्क देमसेल्फ। जो हैप्पीनेस इंडेक्स की हम बात कर रहे हैं कि मेरी स्टेट ऑफ माइंड कैसी है, यू और मी और एनी वन एल्स हैज नो राइट टू से कि हर एक का इंडेक्स क्या है, लेकिन जब हम लोगों से बात करते हैं, सबसे मिलते हैं, तब यही कहीं ना कहीं सबसे रिस्पॉन्स आ रहा है कि वो जो होना चाहिए वो नहीं,
0: तो बात
1: वो नहीं आ रहा। सो लेट्स नॉट मेक अ जनरलाइज स्टेटमेंट, लेकिन लेट एवरी वन जस्ट चेक फॉर देम सेल्फ, क्योंकि हो सकता है कि आई एम सेइंग कि आप खुश नहीं हो, बट एक्चुअली आप बहुत खुश हो, विच इज एब्सोल्यूटली फाइन, क्योंकि ये आपको किसी और से मिलने वाला पैरामीटर नहीं है, दिस इज वन थिंग जो सिर्फ आप और सिर्फ आप अंदर जानते हैं। कई बार स्पेशली आप जिस प्रोफेशन में है, लेट्स से आपका रोल है सारा दिन स्माइल करना, यू नो ऑलवेज बी सो ब्यूटिफुल एनर्जेटिक, नॉट जस्ट ब्यूटिफुल लेकिन एनर्जेटिक ऑन द फेस हैज टू बी ऑलवेज बहुत वेलकमिंग बहुत, लेकिन हो सकता है आप अंदर आज खुश नहीं हो, इज दैट पॉसिबल और नॉट पॉसिबल?
0: मैक्सिमम टाइम्स
1: तो, लेकिन इस वास्तविकता को कि आप अंदर कैसा फील कर रहे हो सिर्फ आप जानते हो, क्योंकि आज जो एक बहुत कॉमन बात भी निकल कर आती है कि मैं इतना कर रहा हूँ इतना कर रहा हूँ, क्योंकि हम अपनी कैपेसिटी से कई गुना ज्यादा आज करने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी हम खुश नहीं है, एंड फिर हम साथ साथ ये भी कहते हैं वो भी खुश नहीं है मेरे से।
0: एक्चुअली हमने सब कुछ किया, एक्चुअली मेरी खुशी तब खत्म हुई कि मैंने कुछ किया उनके लिए। सपोज मैंने बच्चों के लिए कुछ ऐसी चीज बनाई जो मैं चाहती हूँ, जो आई नो कि मैं बहुत अच्छा बनाऊंगी और उन्हें अच्छा लगेगा। चाहे मैंने पिज्जा बनाया सपोज, और मैंने बनाया, उन्होंने खाया और उन्हें अच्छा नहीं लगा, तो मैंने बड़ा खुश होकर बनाया था, लेकिन वो खुश नहीं हुए तो मैं भी खुश नहीं हुई, फिर मुझे गुस्सा चढ़ना शुरू होता है।
1: आपने खुश होकर नहीं बनाया था, आपने बनाया था ये सोचकर कि जब वो खाएंगे तब वो खुश होंगे तो मैं खुश होंगे, इट्स अ डिफरेंस।
0: देखिए मैं बनाते वक्त ये सोच के खुश थी,
1: ये सोच के खुश थे कि वो खुश होंगे तो दिस विल गिव मी हैप्पीनेस, सो इट वाज अ प्रेपरेशन फॉर दैट स्टेट ऑफ हैप्पीनेस, कि जब मैं आपके लिए, यू नो हम क्या होता है, हम एक पिक्चर ऑलरेडी क्रिएट करना शुरू कर देते हैं फ्यूचर की, कि एक घंटे के बाद ये होगा, ये मैं बनाऊंगी, वहां लेकर जाऊंगी, वो देखें, दैट इज व्हाट इट्स अ स्टिम्युलेंट व्हिच इज गिविंग मी हैप्पीनेस, कि वो सीन जो मुझे खुशी देने वाला है मैंने उस सीन को पहले से क्रिएट कर लिया, यू नो लेट्स से कि मैं आपको कुछ खिलाऊंगी आप बहुत खुश होंगे तो वो मुझे खुशी मिलेगी, लेकिन बनाते बनाते मैं वो सीन ऑलरेडी क्रिएट कर लेती हूँ। दिस इटसेल्फ शोज द पावर ऑफ द माइंड, कि सिचुएशन अभी हुई भी नहीं है, वो पिज्जा अभी बना भी नहीं है, लेकिन वो जो मैं सीन क्रिएट कर लेती हूँ वो ऑलरेडी मुझे वो देना शुरू कर देता है, लेकिन साथ साथ मेरा माइंड ये भी प्रिपेयर होता जा रहा है, ऐसे वो खुश होंगे फिर मैं खुश होंगे, ऐसे

0: खुश होंगे, फिर मैं खुश होंगी। अब सपोज जो रियलिटी हुई वो उस इमेज के साथ मैच नहीं की, आपने जो इमेज यहाँ डेटा फीड कर दिया था वो ये था कि बच्चे खुश होंगे देन आई विल बी हैप्पी, बट आपने कहा बच्चे खुश नहीं हुए, तो फिर रिजल्ट क्या होगा?
1: गुस्सा, यू नो, बिकॉज देयर सो मच ऑफ वन लेट डाउन की फीलिंग, टू फ्रस्ट्रेशन, एंड थ्री यू नो मतलब एक एक ऐसा मतलब फीलिंग ऑफ यू नो नॉट बीइंग वेरी हैप्पी एक्चुअली।
0: हाँ, तो आपने अपने माइंड को पहले कंडीशन किया ना, माइंड की इतनी तैयारी की थी कि ऐसे वो खाएंगे फिर उनको अच्छा लगेगा, फिर वो मेरी प्रेज करेंगे, फिर वो खुश होंगे, फिर मैं, तो माइंड को पूरा क्या प्रोग्रामिंग किया, दिस इज ऑल्सो प्रोग्रामिंग ऑफ द माइंड। माइंड को पूरा प्रोग्राम किया कि ये इंस्ट्रक्शन होगी, फिर ये होगी, फिर ये होगी, रिजल्ट होगा हैप्पीनेस। तो जो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम कोडिंग की हमने माइंड की वो क्या की, कि डेटा ये होगा बच्चे खुश होंगे, रिजल्ट ये होगा मैं खुश होंगी। जब डेटा चेंज हो गया कि बच्चे खुश नहीं हुए तो रिजल्ट भी तो चेंज हो जाएगा।
1: लेकिन उसके लिए मैं तैयार नहीं थी, और ये प्रोग्रामिंग मैंने कब की तुम्हें पता
0: है? प्रोग्रामिंग पिज्जा बनाते टाइम,
1: हाँ
0: अभी तो कहा बनाते टाइम सी वी आर डूइंग द प्रोग्रामिंग, माइंड थोड़ी बना रहा है, मैं बना रही हूँ, लेकिन मन तो वो एंटिसिपेट कर रहा है ऑलरेडी, उस सीन को क्रिएट कर रहा है। सो ये कोडिंग चल रही है मेरी, लेकिन कोडिंग में इंस्ट्रक्शंस बहुत क्लियर हैं। यही अगर मैं कोडिंग थोड़ी सी डिफरेंट कर दूं,
1: और मैं कहूँ कि अगर वो खुश ना भी हूँ तो कोई बात नहीं
0: है? नहीं, डोंट लाइक द कोडिंग,
1: आई वॉन्ट देम टू बी हैप्पी।
0: ये हो, अगर मैं ये कोडिंग करूँ कि मैं ऑलरेडी खुश हूँ, मैं बनाते हुए भी खुश हूँ, उनको खिलाते हुए भी खुश हूँ, अगर उनको वो बहुत ज्यादा पसंद नहीं आया, दैट्स जस्ट अ क्वेश्चन ऑफ टेस्ट, दैट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ हैप्पीनेस। मिक्स कर दिया ना मैंने दोनों चीजों को,
1: मेरी क्रेडिबिलिटी अब क्या कहीं ना कहीं आ गया।
0: हाँ, तो ईगो पर तो वो टच हुआ, लेकिन क्वेश्चन ऑफ टेस्ट है कि हो सकता है उनको वो पसंद नहीं आया, लेकिन जब मैंने रिएक्ट कर दिया उस बात को कि मैंने इतनी मेहनत की, तुम्हारे लिए बनाया, तुमको पसंद है, तब वो पिज्जा तो रह गया साइड पे, लेकिन तब जो सीन क्रिएट हो जाएगा बाद में सारा, तो बनाने क्या चले थे, खुशी बनाने चले थे और हो गई कुछ और। तो ये जो कोडिंग हम माइंड की करते हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट है, कि सारा दिन जो एक एक थॉट हम क्रिएट करते हैं इस पर रिजल्ट फिर बहुत डिपेंडेंट होता है। अभी हमारी कोडिंग ऐसे ही हुई हुई है कि ये होगा तो मैं खुश होंगी, ये मेरे से अच्छी तरह से बात करेंगे तो मैं खुश होंगी, उनका फोन आएगा तो मैं खुश होंगी।
1: I want to do things for others, you know. Like so many times we feel that way. I want to do this for my husband. I want to do this for my mom. Matlab whatever.
0: To make them happy.
1: Yes.
0: Because when they are happy,
1: I am happy.
0: Right? So मैं आपके लिए ये करूंगी, ये करूंगी, एंड जो करने वाली हमारी लिस्ट होती है कई बार छोटी छोटी चीजें होती है, लेकिन कई बार बहुत बड़ी बड़ी भी चीजें होती हैं। They could mean big sacrifices in my personal decisions. लेकिन they are all being done with this purpose कि मैं करूंगी, आप खुश होंगे, आप खुश होंगे तो मैं खुश होंगी। अब ये इक्वेशन ठीक है कि आप खुश होंगे तो मैं खुश होंगी, लेकिन बाय चांस अगर दूसरा वाला नहीं खुश हुआ, सामने वाला कोई अपने ही टेंशन में है, कोई अपनी चिंता में है, आप अपने हस्बैंड के लिए बहुत अच्छा कोई गिफ्ट लेकर आ गए, राइट? जस्ट डे बिफोर यस्टरडे इट हैपेंड विद माय नेबर, उसके पास व्हीकल नहीं था, वो दो बस चेंज करके बहुत मेहनत से अपने हस्बैंड के लिए एक शर्ट लेने गई बर्थडे के लिए, ठीक है? लेकिन वो जो शर्ट लेकर आई, बहुत एफर्ट किया, मैंने एक्चुअली सॉ हर डूइंग ऑल दैट, लेकिन जो वो शर्ट लेकर आई तो उसके हस्बैंड को नहीं पसंद आई, इसे मैं रात को पहनकर सो जाऊं।
1: आई नो इट्स अ हार्ड थिंग,
0: यू सी द व्हाट शी गोस थ्रू आफ्टर दैट, तो शर्ट तो रह गई साइड पे, बट द पेन एंड द, सो द क्वेश्चन इज कि दैट शर्ट, दैट पिज्जा, दैट ऑब्जेक्ट, दैट एक्टिविटी,
1: बट द अदर शुड बी एक्चुअली लिटिल बिट मोर यू नो कंसिडरेट।
0: हाँ, मतलब हमें दूसरों को बोलना चाहिए प्लीज मेरे से अच्छी तरह से बात करो, अगेन डिपेंडेंसी है ना ये, आप खुश हो जाओ प्लीज, क्योंकि अगर जब आप खुश हो गए तब मैं खुश होंगी, एंड देयर फोर ऑल्सो द ऑपोजिट, कि जब आप उदास हो गए या नाराज हो गए या अपसेट हो गए तो मैं भी हो जाऊंगी। सो समवेयर मैंने ये इक्वेशन क्रिएट कर ली है कि जब लोग मेरे आसपास जो खुश होंगे तब मैं खुश होंगी, तब मेरा वो प्रोसेस सारा स्टार्ट हो गया।
1: तो मतलब आसपास सब लोग दुखी रहे और मैं खुश हो जाऊं, ये संभव है?
0: We don't know, we'll explore during this whole journey. This is what it is all about. Okay, not that it is being selfish. It's like saying, agar mere aas paas sab bimar ho to main theek rahun.
1: Ha, of course.
0: Of course, usme of course ho gaya fir.

0: अभी तो हम कह रहे थे कि जब आसपास हमारे सब बीमार होंगे तो मुझे भी कैसे होना चाहिए?
1: बीमार तो मैं अपने आप ही हो जाती हूँ वैसे.
0: एक्चुअली बिल्कुल ऑपोजिट होना चाहिए कि जब मेरे आसपास लोग बीमार हैं और वो भी वो लोग जो मेरे एकदम क्लोज सर्कल में आते हैं, तो उनका ध्यान रखने के लिए भी मुझे पहले किसका ध्यान रखना पड़ता?
1: अपना.
0: फिजिकल लेवल पर भी सेम इक्वेशन अप्लाई करती, इमोशनल लेवल पर भी वही इक्वेशन अप्लाई करती है कि औरों को खुश करने के लिए सिर्फ एक्टिविटी पर नहीं ध्यान रखा जा सकता. कि ये करूंगी ये करूंगी ये करूंगी तो वो खुश हो जाएंगे. नहीं, मूल मंत्र है मैं खुश रहूंगी
1: तो वो खुश होंगे.
0: खुश होंगे.
1: अरे कितनी बार तो हम कहते हैं कि तुम तो मुझे खुश देख ही नहीं सकते हो. यू नो सो मेनी टाइम्स वी टेल अदर्स कि यू कांट सी मी हैप्पी. द मोमेंट आई एम हैप्पी यू क्रिएट समथिंग माई हैप्पीनेस को.
0: क्योंकि अगेन कितना डीप रूटेड बिलीफ है ना कि दूसरे की स्टेट ऑफ माइंड और बिहेवियर के ऊपर मेरा स्टेट ऑफ माइंड डिपेंडेंट. सपोज अब मैं बहुत अच्छे मूड में आई सुबह लेकिन आपका मूड ठीक नहीं है और अब मैं भी डिस्टर्ब हो गई और फिर मैं उसका ब्लेम आपके ऊपर डालूं कि आपको तो बस अच्छा ही नहीं लगता कि मैं खुश हूं, आपने ऐसे इतनी रूडली बात कर दी कि मेरा मूड भी खराब हुआ. आपका मूड ठीक नहीं है, वो आपकी स्टेट ऑफ बीइंग है. मैं अपना अपने ऊपर वो नहीं रख पाई कंट्रोल, ये तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. व्हाट राइट डू आई हैव टू से टू अनदर पर्सन कि आपकी वजह से मैं डिस्टर्ब हो गई? दिस इज ऑल हैपनिंग एंड उसकी वजह से बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स और बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं. ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि मेरी इक्वेशन इन लाइफ सेट नहीं है. हमने सोचा बाहर से जो एनर्जी आएगी, चाहे वो ऑब्जेक्ट से आएगी, चाहे वो लोगों से आएगी, चाहे मेरे कोई काम से आएगी, वो जो एनर्जी बाहर से आएगी वो मेरे अंदर की एनर्जी क्रिएट करेगी. इसलिए आप अपनी वोकैबुलरी को अगर किसी भी दिन थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे, मैं ये करूंगी
1: तो खुश
0: होगा, ये होगा तो मैं खुश होंगी, बच्चे के 90% मार्क्स आएंगे तो मैं खुश होंगी, उसकी जॉब हो जाएगी, उसकी शादी हो जाएगी, मतलब कुछ बाहर होगा तब
1: मैं खुश
0: होंगी, तब मैं खुश होंगी. सो द इक्वेशन इज आउटसाइड इन. आउटसाइड का प्रोडक्ट इनसाइड के एनर्जी क्रिएट करेगा.
1: ये ऐसा ही तो होता है शिवानी बहन, दिस इज व्हाट आई वांट टू से कि होता है ना ऐसे. मतलब खुशी मुझे मिलती है इन सब चीजों से. अब अगर वो चीजें नहीं हो रही होगी तो मैं खुश कैसे हो सकती हूँ?
0: खुशी, अच्छा कौन सी चीजों से खुशी मिलती है?
1: अगेन यू नो लाइक अगर वो खुश हो रहे होंगे मेरा पिज्जा खा के, अगर वो खुश हुए तभी तो मैं खुश होंगी ना.
0: मैं खुश हुई इस थॉट को क्रिएट करके कि वो जो मैंने बनाया वो खाकर उनको अच्छा लगा. ये थॉट किसने क्रिएट किया? मैंने. अच्छा लेट्स से वो ही पिज्जा खा रहे हैं अभी अभी, वो बच्चे बहुत खुश हैं, उनको खुश देखकर आप बहुत खुश हो, एवरीवन इज वेरी हैप्पी एंड वन फोन कॉल एंड वन मैसेज. या किसी ने आपको, वो आप घर में हो बहुत खुश हो लेकिन आपके बॉस ने आपको फोन कर दिया और कहा कि आज जो आपने सारा काम ऑफिस में किया था उसमें ये गलती है ये गलती है.
1: बस खुशी की.
0: अब पिज्जा तो वही है ना, बच्चे भी वही हैं, वो अभी भी खुश हैं. वेयर इज योर हैप्पीनेस गॉन?
1: तो दूसरी सिचुएशन होगी ना. इस सिचुएशन में तो मैं खुश थी ना. इस
0: सिचुएशन में मुझे सिचुएशन को टाइम तो नहीं लगा ना आके आपकी खुशी को वाइप आउट करने के लिए.
1: तो वो हर सिचुएशन अपने साथ कैसे खुशी लेकर या गम लेकर आता
0: है. तो नाउ मेरी लाइफ किस पर डिपेंडेंट है?
1: सिचुएशंस
0: पर. सिचुएशंस में भी लोगों पर, लोगों के मूड पर, लोगों के टेम्परमेंट पर. मेरा टेम्परमेंट डिपेंडेंट है, मेरी स्टेट ऑफ माइंड लोगों पर डिपेंडेंट है. हाउ हेल्दी इज दिस फॉर मी? मेरी फिजिकल हेल्थ, लेट्स कीप ऑन कंपेयरिंग इट बिकॉज तभी समझ में आता है. मेरी फिजिकल हेल्थ बाहर के मौसम, बाहर के इन्फेक्शन, बाहर के बैक्टीरिया पे डिपेंडेंट है.
1: तो मेरा रेजिस्टेंस पावर खत्म है.
0: एग्जैक्टली.
1: यू नो बिकॉज ये तो होता ही है, जब मेरी रेजिस्टेंस पावर खत्म होती है बॉडी की तो मुझे सारे इन्फेक्शन हो जाते हैं, मुझे सारा बैक्टीरिया अटैक करता है, सारे वायरस आ जाते हैं. वायरस फीवर,
0: दैट्स द आंसर. दैट्स द आंसर. बैक्टीरिया तो ऑलरेडी है, इन्फेक्शन तो ऑलरेडी है, लेकिन अगर मैं अपने फिजिकल बॉडी का ध्यान रखती हूँ, अपना इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग रखती हूँ तो वो मुझ पर अटैक नहीं करता है. लेकिन जैसे ही मेरा इम्यूनिटी सिस्टम क्रैश किया तो छोटा छोटा वायरस भी, थोड़ा सा मौसम का चेंज मेरे ऊपर,
1: एकदम से सर्दी जुकाम बुखार ये.
0: सो हियर इट इज, आई बिकम ईदर आई एम स्ट्रांग और आई बिकम वल्नरेबल. तो स्ट्रांग हूँ तो मेरे ऊपर किसी का प्रभाव नहीं आता, मौसम भले बदले, बाहर तूफान हो, बर्फ

0: आई नो हाउ टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, लेकिन मैं अपना ध्यान नहीं रखू और सिर्फ बोलती रहूं मौसम ही ठीक नहीं है, सर्दी इतनी हो गई है या गर्मी इतनी हो गई है तो बीमार तो पड़ना ही है, तो फिर बीमार रहिए, नो प्रॉब्लम, इट्स अ चॉइस। क्या बीमार रहना चाहते हैं या हेल्दी रहना चाहते हैं, दोनों चॉइस हमारे पास है।
1: वेरी ट्रू, लेकिन हमारे पास तो इतनी शक्ति नहीं है ना, यू नो व्हेन यू सेड इधर यू बिकम पावरफुल और यू रिमेन वल्नरेबल, सो बिकॉज आई डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, यू नो लाइक आई फील दैट दिस इज आई डोंट हैव द पावर, यू नो कि मेरे को वो सिचुएशंस अफेक्ट ना करें या मेरी खुशी को ना यू नो उस पर ना कुठाराघात करें, तो इसीलिए वो मैं वल्नरेबल हूं। मैं आई कैन अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग, एक्चुअली वी ऑल अंडरस्टैंडिंग कि फ्रॉम वेयर इट इज कमिंग, कि वी एक्चुअली आर वल्नरेबल, यू नो चाहे वो फिजिकल है या मेंटल या खुशी की बात है। हम कर क्या सकते हैं?
0: जैसे हम अपने शरीर का ध्यान रखते हैं
1: वैसे
0: वैसे ही हमें अपने मन का भी ध्यान रखना है। ये उस टाइम नहीं होगा जब परिस्थिति आएगी, आप अपने शरीर के अंदर ताकत तब नहीं भरते जिस क्षण मौसम बदलता है, लेकिन आप एवरीडे डेली बेसिस पर अपने शरीर का ध्यान रखते हैं तो बाहर कितना भी परिवर्तन आए, बाहर का परिवर्तन अंदर परिवर्तन नहीं क्रिएट कर देता। जैसे शरीर फिर भी शरीर के अंदर पावर है कि वो बाहर के परिवर्तन के साथ अडेप्ट करके
1: अपना इम्यून सिस्टम
0: अपना, अगर बाहर से इन्फेक्शन आ रही है लेकिन शरीर के अंदर भी वो
1: एंटीबायोटिक्स है, हाँ, वो जो
0: जो उसको फाइट करेंगे और फिनिश कर देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, आप अपना नॉर्मल काम कर रहे हैं। इसी तरह अगर जैसे शरीर का ध्यान इतना रखते हैं तो ये सारी चीजें कब आती कब चली जाती पता भी नहीं चलता, अगर मन का भी उसी तरह से ध्यान रखेंगे, हर रोज इसकी सफाई करते रहेंगे, इसको नरिशमेंट देंगे, इसकी एक्सरसाइज करेंगे, तो कब क्या बाहर होता जाएगा, आएगा चला जाएगा, हम उस सीन को क्रॉस करते जाएंगे। फिर आप वो वाला नहीं सेंटेंस बोलेंगे कि अभी अभी अच्छा फिर अभी अभी खराब, दिस इज हाउ द इंडेक्स इज गोइंग, दिस इज हाउ द इंडेक्स इज गोइंग एक्चुअली, कि जैसी सिचुएशन वैसे मेरी हैप्पीनेस, कभी ऊपर कभी नीचे, क्यों? क्योंकि इट इज डिपेंडेंट ऑन समथिंग आउटसाइड, अपने आप में इसके अंदर कोई पावर नहीं है। आप अच्छा बोलो तो मैं खुश, आप नहीं बोलो तो मैं नहीं खुश, तो मैं सारा दिन क्या करती रहती हूँ, आपको प्लीज करने की कोशिश करती रहती हूँ ताकि आप मेरे से अच्छा बोलते रहेंगे, क्योंकि एवरीथिंग आई एम डूइंग इज फॉर हैप्पीनेस, एक्चुअली एवरीथिंग दैट आई एम डूइंग इज फॉर हैप्पीनेस, लेकिन प्रोबेबली वेयर आई एम डूइंग इट इज समवेयर, यू नो। तो फिर क्या होता, अभी अभी अच्छा था और अभी अभी उसको खराब होने में टाइम नहीं लगता। तो अगर हम अपनी स्टेट ऑफ माइंड का भी उस तरह से ध्यान रखते जाएंगे, इसलिए हमने उस दिन भी कहा कि ध्यान रखना, तब बैक्टीरिया भले आएगा, कोई कुछ बहुत बुरा कह देगा, कोई नाराज हो जाएगा, बच्चे हमारे से संतुष्ट नहीं होंगे, बॉस फायर कर देगा, ये सब बैक्टीरिया ही तो है जो बाहर से आता है, ये परिवर्तन ही तो है जो सारा बाहर से आ रहा है। आज बच्चे बहुत अच्छी तरह से बात कर रहे हैं, कल सडनली रिएक्ट कर गए, कुछ रूडली बोल दिया, कुछ हो गया, परिवर्तन है ना, मौसम में बदलाव आया है, लेकिन मेरे अंदर पावर नहीं है उस बदलाव को फेस करने की, तो जैसे ही वो परिवर्तन
1: क्या हुआ, मतलब मौसम के बारिश और व्यवहार की जो बारिश है उसमें बहुत फर्क है, क्योंकि मौसम की बारिश के लिए मैं छाता लेके जा सकती हूँ, मैं रेनकोट पहन सकती हूँ,
0: प्रोटेक्शन कर रहे हैं ना,
1: घर से बाहर ना निकल,
0: जो छाता नहीं लेके जाता
1: वो पेड़ के नीचे खड़ा हो जाएगा, कुछ ना कुछ
0: पेड़ के थ्रू भी उसको लाइटिंग हिट की, तो सो जो नहीं प्रोटेक्ट करेगा वो तो सफर करेगा ना, चाहे फिजिकल हो चाहे इमोशनल। अभी हम बोल रहे हैं कि फिजिकल तो बहुत इजी है, क्यों? क्योंकि हमारे लिए फिजिकल प्रोटेक्शन बहुत इजी लगती है, सेम थिंग कैन हैपन विद इमोशनल प्रोटेक्शन। इमोशनल प्रोटेक्शन भी जब हम अपनी करेंगे तब भी यही लगेगा, तो क्या हुआ उन्होंने रूडली बात कर दी, तो
1: रीच एवर एट द स्टेज कि किसी ने मेरे साथ गंदे तरीके से बात की, मेरी बेइज्जती कर दी, मेरे इंसल्ट कर दी, मुझे रिजेक्ट कर दिया, वो मुझे हर्ट नहीं होगा?
0: डोंट यू थिंक यू आर ऑलरेडी वर्किंग ऑन योर सेल्फ? जस्ट हैव टू टेक केयर, एक दिन ध्यान रख के देखना है कि कैन आई डू दैट, या क्या मैं इतना कमजोर हूँ कि हरेक के व्यवहार को अपने ऊपर हावी होने देता हूँ, क्योंकि इन टूडेज टाइम इट इज रिस्की, इट इज रिस्की अगर हम अपना कंट्रोल सारा बाहर दे देंगे, क्योंकि चैलेंजेस बहुत हैं।
1: यस, वी ऑलवेज से ना, यू नेवर नो दूसरे व्यक्ति कैसे रिएक्ट करने वाला।
0: एग्जैक्टली, नाउ दैट्स द पॉइंट। सबके व्यवहार आज बहुत अनप्रेडिक्टेबल हो गए हैं, मतलब बाहर तो क्यों जाना, अपने घर के अंदर भी अगर हम देखें

0: सडनली ये बैठे बैठे अभी गुस्सा क्यों कर रहे हैं, इनको क्या हो गया, क्योंकि हर एक के अंदर बहुत कुछ चल रहा है और वो कई बार एकदम से, तो लोगों के जो रिस्पॉन्सेज हैं, रिएक्शंस हैं, वो बहुत अनप्रडिक्टेबल हो गए हैं। अब मेरा रिस्पॉन्स आपके रिस्पॉन्स पे क्योंकि डिपेंडेंट है, तो आप जब अनप्रडिक्टेबल होते हो तो मेरा क्या हल होगा अंदर?
1: हाँ, मैं और इनफैक्ट मैंने तैयारी नहीं की हुई होती।
0: मौसम को देखो, मौसम हमें पता है, अब गर्मी है तो गर्मी ही रहेगी, फिर ये आएगा, फिर विंटर आएगा, तो इट्स इजी टू मैनेज। जिस दिन मौसम अनप्रडिक्टेबल हो जाए कि अभी अभी गर्मी है, आधे घंटे में बारिश होने लग गई, उसके आधे घंटे में सपोज बहुत ठंड हो गई, तो विल वी बी प्रिपेयर्ड? नो, वी विल से ये क्या, और आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दिस काइंड ऑफ वेदर, यू नो, वी विल से आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दिस, वी नॉट प्रिपेयर्ड, तो वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस अनप्रडिक्टेबल बिहेवियर्स फ्रॉम पीपल। और उसके लिए और भी इम्पोर्टेंट अब हो गया है कि मुझे अपना ध्यान रखना पड़ेगा पहले, बिकॉज येस थिंग्स आर, क्योंकि हरेक के जीवन में चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं, हरेक ने अपने स्टेट ऑफ माइंड का कंट्रोल सिचुएशन पर लिया हुआ है। जितनी सिचुएशन रैपिडली चेंज होती जा रही है, स्टेट ऑफ माइंड चेंज होता जा रहा है, और जितना उनका चेंज होता जा रहा है, मेरा चेंज होता जा रहा है, आप सोचो इसकी क्या हालत होती होगी। सारा दिन ये मन सिचुएशंस को भी फेस करता, लोगों के भी रिस्पॉन्सेस को फेस करता, फिर जितना आपका अनप्रडिक्टेबल उतना फिर मेरा भी अनप्रडिक्टेबल, फिर मेरा अनप्रडिक्टेबल, तो फिर आप कैसे रिस्पॉन्ड करोगे
1: वो इतना, हाँ, अगेन यू नो, और सच बात तो ये है कि कई बार हमारा रिस्पॉन्स भी बहुत अनप्रडिक्टेबल होता है।
0: आप बच्चे के साथ देखो अपना, ठीक है, बच्चा अपने कोई यू नो टीनेज फेज में है, उसके स्कूल में कुछ आज हुआ, कोई बात हो गई, उसने नहीं बताया आपको आकर, लेकिन उसके माइंड में कुछ चल रहा है। अब आपने तो थोड़ा सा कुछ कहा, जो आप हर रोज ही कहते हो वो बहुत प्यार से सुन लेते हैं, लेकिन आज सडनली उसने रिएक्ट कर दिया, दैट इज देयर अनप्रडिक्टेबिलिटी। लेकिन आप अगर अपना ध्यान रख लेते उस टाइम, तो सिचुएशन वहां की वहां ठीक हो जाएगी 5 मिनट के अंदर। लेकिन वो अनप्रडिक्टेबल ऐसे बात की मेरे से, ये कोई बात करने का तरीका, तुमको हुआ क्या है, तो मेरा भी रिस्पॉन्स उसके ऊपर, तुम तो हो ही ऐसे गए हो, बिगड़ गए हो, ये तुम्हारा फ्रेंड सर्कल ही खराब, यू नो, वी कैन जस्ट गो टू सेइंग एनीथिंग टू देम। अब एक तो वो ऑलरेडी डिस्टर्ब है अंदर से, फिर उसको पता है उसने गलत तरह से व्यवहार किया, उसका गिल्ट, फिर आपका गुस्सा ऊपर से, तो उसका नेक्स्ट रिस्पॉन्स कैसा होगा? सो यूर हैंडलिंग ईच अदर्स रिस्पॉन्सेज की बजाय, अगर हम अपने रिस्पॉन्स की तरफ ध्यान दे, अपने रिस्पॉन्स को हैंडल करें, तो सामने वाले को हैंडल करना,
1: लेकिन दूसरे को सुधारना नहीं है, मतलब उसे समझाना तो पड़ेगा। आपने ये कह तो दिया कि उसका अपना गिल्ट, बट वी नेवर फील कि वो गिल्ट फील कर रहा है।
0: यू हैव टू वन स्टॉप एंड आस्क, जब भी आप, चलो दूसरे को छोड़ो, अपना देखो, जब आप गुस्सा करोगे किसी पर, बच्चे पर, हस्बैंड पर या किसी पर, उसके बाद आपको कितना अच्छा फील होता है उसके बाद, तो आप ऑलरेडी अपने उसमें गुजर रहे हो कि मुझे नहीं करना चाहिए था अननेसेसरली पूरा घर का वातावरण कर, तो वो गिल्ट ही तो है ना, पर उस गिल्ट में फिर सामने वाले ने
1: कुछ गलत
0: गुस्सा भी कह दिया, फिर ऊपर से ब्लेम भी डाल दिया आपके ऊपर। हाउ फार आर वी एबल टू हैंडल ऑल दिस, एंड ऑल दिस वी से इसलिए हुआ क्योंकि उसने ठीक से बात नहीं की, तो पूरे सिनारियो का ब्लेम भी हम तुरंत उसके ऊपर डाल देते, भले उसने ठीक से बात नहीं की, लेकिन आफ्टर दैट द बॉल वॉज इन माई कोर्ट, ठीक है, उसने किस तरह से बॉल मारी, लेकिन आफ्टर दैट द बॉल वॉज इन माई कोर्ट, नाउ आई हैड द पावर। अगर मैंने उसको ठीक से हैंडल कर लिया होता, सिचुएशन वुड हैव बीन समथिंग एल्स ऑल टूगेदर।
1: वट नीड्स टू बी डन देन?
0: स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ माई सेल्फ, यस, एंड दैट्स वट वी वॉन्ट टू सी हाउ टू डू, कि जो हमने फोकस चेंज कर दिया था, जो आपने लास्ट टाइम भी कहा कि सिचुएशन पे ध्यान देना है, ये करना है, ये करना है, तो मेरा अपना खुशी और ये सब तो मेरी प्रायोरिटी लिस्ट पर नहीं आ रही, तो ये सब ध्यान देते देते दूसरों का जो इश्यूज उठ रहे हैं सारे, ये इसलिए हो रहे हैं क्योंकि मैंने इसको लास्ट प्रायोरिटी पे रखा कि मैं खुश नहीं हूं, कोई बात नहीं, मुझे काम तो करना है।
1: Show must go on even if I'm not happy.
0: Yeah, the show is going on, but then look at the quality of the show. So somewhere I will have to stop and say, first I have to be happy, then take care of the show. Pehle I have to be healthy, fir baki jo ye drama enact hota hai hamare jeevan mein sara din, it's just a drama. Every scene I am enacting, quality dekho kya hoti ja rahi hai, aur fir bhi usko घसीटते जा रहे हैं। एक दिन भी रुक कर हमारे माइंड में ये थॉट नहीं चलता कभी कि ये क्या होता है हमारे घर में रोज, क्यों हम हर रोज एक

0: मनोबल तक, आस्था से अस्तित्व तक। पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: हमारे भारत में हर प्रेमी को श्री कृष्ण और प्रेमिका को राधा जी के रूप में देखा जाता है।

0: रिश्तों में सरलता और प्यार बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: एंगर इज अ वेपन जिसको हमने हर परिस्थिति में यूज करना शुरू कर दिया है। व्हाट वी आर नॉट रियलाइजिंग दैट वेपन डजंट वर्क, इट्स नॉट प्रोवाइडिंग एनी रिजल्ट, लेकिन फिर भी हम उसी शस्त्र को बार बार यूज करे जा रहे हैं और उससे चोट दूसरे को नहीं लगती उतनी ज्यादा, वो भूल जाएगा। बॉडी के अंदर भी उसका इफेक्ट होता है, माइंड पर भी होता है। तो अगर हम ये याद रख लें कि ये एक हथियार है मेरे हाथ में जिससे मैं दूसरों को मारने की कोशिश कर रहा हूं, उसका किसी और पर कोई अच्छा इफेक्ट नहीं होने वाला है, वो सिर्फ मेरा ही नुकसान करे जा रहा, तो हम उसको धीरे धीरे ऑटोमेटिकली खत्म कर देंगे। बहुत ईजी है खत्म करना, इट्स जस्ट दिस अंडरस्टैंडिंग ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। कि दूसरा, सबसे पहला निवारण यही होगा कि दूसरा मुझे गुस्सा नहीं दिला सकता, ये खुद मेरे हाथ में, तो आधा तो इसी से खत्म हो जाता है, क्योंकि अभी तक हमेशा कोई और मुझे गुस्सा दिला रहा। ये अंडरस्टैंडिंग ही अपने आप, क्योंकि मैं खुद से गुस्सा नहीं करना चाहूंगी जब मुझे समझ में आ गया कि उसका इतना डैमेज है, लेकिन मैं खुद से नहीं कर रही ना, आप मुझे दिला रहे हैं, तो देन आई फील कि नथिंग इज इन माई कंट्रोल, सो दैट इट सेल्फ चेंजेस सो मच ऑफ द पर्सपेक्टिव देखने का।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

नमस्कार एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्म कुमारीज। इस पूरे सफर में जो हम तय कर रहे हैं, एक नई जिंदगी हमारे सामने आ रही है, कुछ नई मान्यताएं आ रही हैं और हम ये समझ रहे हैं कि मैं कौन हूं। मैं जो कि एक प्यार करने वाली, खुश रहने वाली, एक

0: पीस लविंग आत्मा हूँ, कौन हूँ मैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और इतना कुछ हमने जाना है कि कैसे अपनी जो पुरानी गलत धारणाएं हैं उन्हें चेंज करके एक पॉजिटिव थॉट का संचार करके उसे पैदा करके हम अपनी डेस्टिनी को बदल सकते हैं। लेकिन फिर भी मुश्किलें आ रही हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में जब हम जाते हैं तो इतना आसान नहीं होता। तो आज हम ये तलाशते हैं कि कैसे उन्हें आसान किया जा सकता है। और हमारे साथ है ब्रह्म कुमारी सिस्टर शिवानी। शिवानी, आज जो पहली बात मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि काफी कुछ क्लियर हो गया है, लोगों को भी क्लियर होगा, मुझे भी, कि मैं एक प्यार करने वाला, एक पीस लविंग व्यक्ति हूं, या अंदर मैं जो खुद हूं वो ऐसा हूं, लेकिन कहीं ना कहीं बाहरी वातावरण ने, एनवायरमेंट ने मुझे चेंज किया और मैं वही चीजें बाहर तलाशने लगी। ये बात तो समझ में आई, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में जब मैं गई तो वो मुझे लगा कि वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रही मैं। बार बार कंटिन्यूस रिमाइंडर जो था वो इतना आसान नहीं था। और प्रैक्टिकल लाइफ में जो जो बातें मुझे तंग करती थी, कितना समझाने के बाद भी अभी भी तंग कर रही है। ट्रस्ट तो चलिए ठीक है, फिर भी बात है, एंगर और हैप्पीनेस, ये अभी भी मेरी कई कई चीजों से जुड़ी हुई है। तो क्या कुछ ऐसे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स हैं जिन्हें मैं अपने, क्योंकि अगर प्रैक्टिकल लाइफ की बात कर रहे हैं तो उन प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को लाइफ में इम्प्लीमेंट करके मैं कर सकती हूँ?
1: बहुत छोटी छोटी बातें होती हैं जिनका हमें ध्यान रखना होता है, जिनसे पूरा सोचने का तरीका परिवर्तन हो जाएगा। एक जैसे सिंपल चीज आपने कही कि हमें समझ में आ गया कि गुस्सा नहीं करना है, लेकिन फिर भी गुस्सा आ जाता है। सबसे पहली चीज कि अपने आप को अगर आपने समझा दिया कि ये काम की चीज नहीं है, आप बार बार अपने आप को रिमाइंड कर देंगे, हमेशा जब आप कर भी देते हैं आउट ऑफ कंट्रोल चले भी जाते हैं, आफ्टर दैट डेफिनेटली पॉज फॉर अ मिनट, यू नो, इट्स अ वेरी सिंपल ट्रिक। बट इफ वी डोंट डू इट दैट टाइम वी विल जस्ट कीप ऑन, यू नो, दैट संस्कार विल अगेन गेट री इन्फोर्स्ड। तो अगर गुस्सा आ भी जाए, सिट बैक विद योर सेल्फ देन एंड देयर। कई बार हम कहते हैं ना, जैसे रात को बैठकर अपने सारा दिन की रूटीन देखकर उसमें से आपने क्या लिया क्या छोड़ा, दैट्स ओके, बट आई फील समटाइम्स उसी टाइम करना ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि उसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर उसी टाइम पड़ेगा बहुत ज्यादा। तो जैसे ही आपने अपना टेम्पर खो दिया किसी के ऊपर, सिट बैक, इवेल्यूएट द सीन कि क्या सीन हुआ था, एंड जस्ट सिट बैक एंड लुक एट इट नाउ एज एन ऑब्जर्वर। अभी तक हम उस सिचुएशन का हिस्सा थे, तब जब हम हिस्सा होते हैं तो परिस्थिति कुछ और दिखाई देती है, और जब हम परिस्थिति से हटकर साक्षी होकर देखते हैं, आप देखिए एक एक्सीडेंट हो जाता है, जो दो लोगों के बीच एक्सीडेंट होता है उनका दृष्टिकोण बिल्कुल डिफरेंट है। उनको एक्चुअली पता भी नहीं चला किसकी गलती थी, कौन रॉन्ग, क्योंकि वो अचानक हो जाता है। लेकिन जो साइड पे रोड पे लोग चल रहे हैं, जो उसमें इन्वॉल्व नहीं है, वो सिर्फ दूर से देख रहे हैं, उनको एग्जैक्ट सिचुएशन पता होती है कि एक्चुअली किसकी गलती थी, कौन कहां से आया, कैसा हुआ। तो दैट ऑब्जर्वर इज इन अ बेटर पोजिशन टू टेल कि एक्चुअली व्हाट हैड हैपेंड, वी आर नॉट हु आर इन्वॉल्व इन द सिचुएशन। तो यही सारा दिन में भी होता है, अगर हमारा किसी के साथ कुछ हो भी गया तब हम उस राइट फ्रेम ऑफ माइंड में नहीं थे। अब हम थोड़ा सा साक्षी हो जाएं, ऑब्जर्व करें कि एक्चुअली क्या हुआ था, एंड बहुत इम्पोर्टेंट है, ट्राई करें अपने आप को दूसरे की पोजीशन में रखने की कोशिश करें, जिसको हम एम्पथी कहते हैं। जो हम कहते भी हैं, हाँ मैंने उनके दृष्टिकोण से सोचा, लेकिन फिर भी मुझे लगता मैं राइट हूँ, यू नो, दैट्स बिकॉज मैंने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि मैं राइट हूँ,
0: मैं राइट हूँ।
1: व्हाट वी नॉर्मली ट्राई टू डू इज, आई एम नॉट सेइंग आई एम रॉन्ग, बट आई एम नॉट सेइंग यू आर रॉन्ग ईदर। यू सी, अगर हम डिस्कशन कर रहे हैं लेकिन डिस्कशन के दौरान हमने पहले ये मान लिया है मैं राइट हूँ आप तो रॉन्ग हो, लेकिन फिर भी हम डिस्कशन कर रहे हैं, तो उस डिस्कशन का बहुत ज्यादा कोई फायदा नहीं होगा। हम ये मानकर चले कि आप जो कह रहे हैं वो आपके दृष्टिकोण से बिल्कुल राइट है, इसलिए आप कह रहे हैं। ये कहना दूसरा रॉन्ग है, ये डिस्कशन को फिनिश कर देता है, अब बात करने का कोई बहुत ज्यादा लाभ नहीं होगा। सबसे पहले ये सोचिए कि वो जिस सीट पर बैठा है वो अपनी तरफ से राइट ही कर रहा होगा, भले मेरे लिए वो रॉन्ग है, लेकिन उसके लिए वो राइट है। कोई भी व्यक्ति जान पूछ के गलत नहीं करता है, ये 100% है, कोई भी नहीं करता। द वर्स्ट थिंग दैट यू कैन थिंक ऑफ, बट उस समय उस व्यक्ति ने उस बात को सही समझ कर ही किया था। अगर मैं ये समझ लूं कि आप जो कर रहे हैं वो राइट

0: सोचने की कोशिश करूंगी ना, मुझे लगेगा कि राइट आप अपनी तरफ से राइट ही थे, लेकिन समवेयर हम दोनों के बीच वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है और वो शायद रहेगा टिल वी टॉक इट आउट, बट आप राइट हैं एंड नाउ आई स्टार्ट माय डायलॉग विद यू, बट व्हाट विल बिकम इजी इज टू एक्सेप्ट यू। मुझे आपको एक्सेप्ट करना बहुत इजी हो जाएगा।
1: आई थिंक उससे पहले मुझे लगता है ये एक्सेप्ट करना है कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रह सकता है।
0: डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रह सकता है, नहीं डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हमेशा होगा।
1: हाँ होता है,
0: बिकॉज द ब्यूटी ऑफ दिस वर्ल्ड इज दैट वी आर ऑल डिफरेंट। अगर हम सब एक जैसे हो जाए तो व्हाट वुड द वर्ल्ड बी लाइक, इमेजिन एवरीवन थिंकिंग द सेम, टॉकिंग द सेम, बिहेविंग द सेम। दिस दुनिया की ब्यूटी ही इस चीज में है कि वी आर ऑल डिफरेंट एंड लुक एट इट। लेकिन सारा दिन हम इस ब्यूटी को खत्म करने की कोशिश करते हैं क्योंकि हम हमेशा दूसरों को अपने तरह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे जो ठीक लग रहा है आप भी वैसा करना शुरू कर दीजिए, मतलब आप मेरे जैसे बनते जाइए। You know, I'm trying to make you like me. That's not beautiful. You are beautiful because you are you. And this world is beautiful because of that. So we accept that everyone is unique. Everyone is different. But everyone is right in what they're saying. Let's try and understand them. So acceptance. Ye sabse important cheez hai. Kisi ko bhi respect karne ki, kisi ko bhi trust karne ki. Wo jo hai, jaisa hai, pehle usko accept kar lijiye. जब आप एक्सेप्ट कर लेंगे, आप देखिए एक माँ एक बच्चे को सबसे बड़ा मोटिवेटर होती है उसे चेंज करने के लिए, क्योंकि एक माँ एक बच्चे को एक्सेप्ट करती है, शी हैज अनकंडीशनल लव। और किसी भी रिलेशनशिप में शायद अनकंडीशनल लव नहीं आता। वन अनकंडीशनल लव इज नाउ गॉड एंड मी, दैट इज अनकंडीशनल लव एंड दैट्स वाई द पावर ऑफ गॉड इज समथिंग विच कैन ट्रांसफॉर्म वन इजिली। हम सरेंडर करें अभी और हम अभी चेंज हो जाएंगे, बिकॉज देर इज अनकंडीशनल लव। उसे पता है, हमें ये पता है कि वो हमारे अच्छे के लिए ही कर रहा है या कह रहा है, जो भी हो रहा है। तो सिमिलरली द मदर एंड द चाइल्ड वेरी अनकंडीशनल। कैन आई हैव दैट विद अदर पीपल? अनकंडीशनल लव। कैन आई एक्सेप्ट देम द वे दे आर? हमारी ऑर्गेनाइजेशन ब्रह्मा कुमारीज के जो फाउंडर रहे प्रजापिता ब्रह्मा बाबा, इतनी बड़ी संस्था थी, यू नो, जब शुरू शुरू में इतने सब लोग आए, अलग अलग परिवार से, अलग अलग संस्कार, हर चीज अलग, जब आए हर एक में कोई कमजोरियां, कोई विशेषताएं, सब कुछ लेकर आए, लेकिन उन सबको इकट्ठा कर दिया, उन सबको एकजुट करके जो संगठन बना, उसकी सबसे बड़ी कारण ये थी कि ब्रह्मा बाबा ने हरेक को एक्सेप्ट कर लिया कि पहले आप जो हो, जैसे हो, बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे हो एंड नॉट फ्लैटरी। दैट्स ऑल्सो वेरी लिटिल बैलेंस दैट हैज टू बी मेंटेन। और वो क्या करते थे कि उस व्यक्ति को पहले उसकी विशेषता बताते थे। कई बार हमें खुद अपनी विशेषता नहीं पता होती, तो उसकी विशेषता बताते थे, आपके अंदर ये है, आपके अंदर ये है जेन्युइन, एंड फिर धीरे से बता देते थे अगर ये सब चीजों के साथ आप ये वाली भी एक चीज करो तो, एंड दैट पर्सन वुड बी लाइक एनीथिंग फॉर यू,
1: यू नो, यू रियली मेड मी
0: फील गुड, बिकॉज यू हैव एक्सेप्टेड मी द वे आई एम, सो आई एम लाइकिंग माई सेल्फ नाउ बिकॉज यू आर लाइकिंग मी। You know, sometimes it happens that I start liking myself after that and then I want to make myself better. So acceptance ek bahut easy ho jata hai ek energy transaction ko smooth karne mein, nahi to blockage hai if I reject you.
1: आई थिंक एक्सेप्टेंस अपने आप को भी होना चाहिए।
0: एक्सेप्टेंस सबसे पहले अपने आप
1: समवेयर, यू नो, लाइक वी डोंट एक्सेप्ट आवर सेल्फ, द मोमेंट वी विल एक्सेप्ट आवर सेल्फ ऑल्सो वी विल,
0: बट देन दैट डजंट मीन एक्सेप्टिंग दैट आई एम एब्सोल्युटली परफेक्ट द वे आई एम, बट एक्सेप्टेंस दैट येस आई हैव ऑल दीज स्ट्रेंथ्स एंड थोड़ी सी कमजोरियां भी है,
1: विच
0: आई विल चेंज। लेकिन हम एक्सेप्टेंस को जो दूसरा एक रूप दे देंगे वो है आई डोंट नीड टू चेंज, आई एम जस्ट परफेक्ट, तो वो सेल्फ रियलाइजेशन नहीं है। तो फर्स्ट स्टेज होगी कोशिश कीजिए एंड रियली प्रयास करेंगे तो बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है कि वो जो है जैसे है और हरेक के अंदर विशेषता देखिए, बिकॉज एवरीबडी इज ब्लेस्ड विद दैट, एवरीबडी, बट वी फॉरगेट ऑल द 99 स्ट्रेंथ्स एंड वी लुक एट दैट वन वीकनेस, इनके अंदर ये आदत है, इनके अंदर ये आदत है, और जितना हम उस आदत को हाईलाइट करते रहेंगे बार बार, वो आदत और भी ज्यादा पक्की हो जाएगी, और जितना हम उनकी विशेषताओं को हाईलाइट करेंगे विशेषताएं और पक्की होती जाएंगी। तो एक्सेप्ट कीजिए एंड सेकंड वेरी सिंपल थिंग विल बी टू लेट गो, यू नो, डोंट होल्ड ऑन टू सिचुएशंस,
1: सिचुएशंस एंड पीपल,
0: सिचुएशंस एंड पीपल ऑल्सो, या लेट गो ऑफ सिचुएशंस के

0: पास्ट में कुछ हुआ है, इट्स ओके, यू नो, लेट इट गो, क्योंकि जितना हम उसको पकड़ के रखेंगे वो और भी ज्यादा यू नो हमें तकलीफ ही देने वाला है। जैसे हमने उस दिन बात की कि 40,000 थॉट्स हम क्रिएट करते हैं, उसमें से 85-90% थॉट वेस्ट कैटेगरी में जाते हैं, विच आर थॉट्स ऑफ ईदर द पास्ट और द फ्यूचर। बहुत ज्यादा बीती हुई बातों के बारे में बार बार चिंतन करना, उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन क्यों किया, वो ऐसा ना करता तो ऐसा करता, मैंने ऐसा जवाब क्यों दिया, मैं ऐसा ना, एनर्जी बींग कंज्यूम्ड, एब्सोल्यूटली यू नो ड्रेनिंग मी आउट, ठीक है हो गया, फुल स्टॉप, यू नो जस्ट फुल स्टॉप। और अगर नहीं हो तो भी अपने आप को, अगर ये चेन ऑफ थॉट्स चल रही है, यू कैन एक्चुअली से टू योर सेल्फ, आई एम वेस्टिंग एनर्जी, फुल स्टॉप। एक बार, दो बार, तीन बार, अपना ही माइंड है। हम औरों को इतनी अच्छी तरह से बताते हैं और लोग हमारी बात मान लेते हैं, तो हमारा अपना मन हमारी बात क्यों नहीं मानेगा?
1: यहाँ पे ये जानना चाहती हूँ कि हमारा अपना दिमाग हमारी बात कौन मांगे, हम कौन है?
0: दिमाग अलग चीज है,
1: हमारा मन,
0: मन अलग चीज है। इट्स द माइंड एंड द ब्रेन।
1: दिमाग
0: ब्रेन है तो दैट्स फिजिकल, तो दिमाग नहीं मान रहा है कुछ भी, मन मानता है उस बात को और फिर वो सिग्नल ब्रेन की तरफ ट्रांसमिट करता है।
1: किसकी बात मान रहा है,
0: किसकी बात मानता है? What do you think? Who's the one who's doing this work?
1: Yeah, that's what I want to ask. Like, you know, it's like,
0: because
1: who am I?
0: Yeah, who am I? Because हम सारा दिन इतनी जो बात करते हैं, I, mind, energy, consciousness, लेकिन somewhere we have forgotten कि what is it? कि वो है कौन? आज अगर हम अपना परिचय दें, we'll talk about our name, our position, our status, our family, designation. लेकिन ये सारी चीजें तो वो हैं जो हमने प्राप्त किए। नाम भी हमें किसी और ने दिया, इट वॉज एन आइडेंटिफिकेशन लेबल, और कुछ भी नहीं है।
1: आई मीन्स लाइक माई सोल, माई आत्मा।
0: इट इज, आई मीन्स द एनर्जी विच इज द मास्टर ऑफ दिस बॉडी, इट्स नॉट माई सोल।
1: ओके,
0: आई से माई हैंड इज पेनिंग, आई नेवर से आई द हैंड इज पेनिंग। मेरा सर आज बहुत दर्द हो रहा है, मेरा मेरा सर, मेरे हाथ, मेरे पाँव, आज मेरा पूरा शरीर ही टूट रहा है। माई बॉडी, माई बॉडी इज एकिंग टूडे, my body, so there is something,
1: who owns it,
0: and that's why it's saying it's my body. I never say I the body.
1: So but this I is the energy,
0: is that energy,
1: so where is that energy?
0: Wo shakti hai, it's like tube light, tube plus light, physical glass tube plus electrical energy, human being, human body, ye jo mitti ka bana hai isliye wo humus word se aata hai, and being, that energy, that consciousness, जीव आत्मा, जीव ये शरीर, आत्मा उसको चलाने वाली है। ये हाथ है, ये अपने आप कुछ नहीं कर सकता। I choose, इधर रखू, इधर रखू, किसी को मारू, किसी को प्यार दू, किसी को आशीर्वाद दू, it's the same hand, but it can't do anything on its own. So now I ask myself, कि am I this hand, flesh, blood, bones? Or am I the power who chooses what to do with this hand?
1: And where is that power? It's flowing within us?
0: It's energy which is concentrated here. It's absolute energy. It has to have a seat. The seat of the soul. Wo kahan hai wo sthan? Jahan se baith kar main us pure shareer ko chalaunga. Jaise ek bahut bada kamra hai, usme bahut sari electrical equipment hai. तो जो कंट्रोलर है वो पूरे कमरे में भाग कर नहीं इसको कोऑर्डिनेट करता है, उसका एक कंट्रोल बॉक्स है।
1: ऑफ कोर्स दिस इज द वे सूर्य, यू नो लाइक सन इज
0: देयर, एब्सोल्युटली। तो वो कंट्रोल बॉक्स के पास वो कंट्रोलर बैठता है। सिमिलरली इस बॉडी का कंट्रोल बॉक्स ये ब्रेन है।
1: ओके,
0: द बॉक्स, इट्स द बॉक्स, इट्स द सीपीयू, इट्स लाइक यू हैव अ मशीन, वो मशीन के लिए चलाने के लिए आपके पास एक कंप्यूटर है, तो ये वो मशीन है, इस मशीन को चलाने के लिए हमारे पास वो कंप्यूटर है, वो कंप्यूटर वो ब्रेन, लेकिन उस कंप्यूटर को ऑपरेट करने वाला, कंप्यूटर अपने आप कुछ नहीं करेगा, उस कंप्यूटर को ऑपरेट करने वाला मैं आत्मा, वो प्रोग्रामर हूँ, आई हैव द चॉइस, जो इंस्ट्रक्शन मैं फीड करूं, द कंप्यूटर विल ओनली प्रोसेस, सेंड द मैसेज टू द एंटायर नर्वस सिस्टम, द बॉडी विल वर्क अकॉर्डिंगली।
1: ओके, सो माई प्रोग्रामर और आई,
0: इन द आई, नाउ अगेन इट्स नॉट माई, हम लोग बहुत बार बोलते हैं मेरी आत्मा, नहीं, मैं आत्मा, आई द एनर्जी, मेरा शरीर, लेकिन हम इतने ज्यादा बॉडी कॉन्शियसनेस में है तो हम उल्टा कर देते हैं।

0: ये मैं हूँ शरीर और ये मेरी आत्मा है.
1: बट वाई द सोल आई द सोल इज नॉट इन द हार्ट. यू नो आई ऑलवेज फेल्ट दैट इज समवेयर यू नो डीप विद इन माई हार्ट इज नॉट हियर.
0: सारा जो शरीर का कंट्रोल है, जब आप सोचते भी हो तो कहाँ सोच रहे हो? वेयर डू यू फील दैट? यू नो यू से यहाँ यू नो बहुत सोच चल रही है. भाग्य की भी बात करते हैं तो हम कहाँ बात करते हैं? क्योंकि आत्मा जैसे कर्म करेगी उसका भाग्य वैसे बनेगा, तो वो यहाँ है. संकल्प शक्ति यहाँ है. पूरे शरीर का कंट्रोल यहाँ है. हार्ट का भी कंट्रोल
1: ऊपर,
0: इट्स अ पंपिंग ऑर्गन सिर्फ, उसका भी कंट्रोल यहाँ से हो रहा है. आज हार्ट ट्रांसप्लांट हो जाता इफ द सोल वॉज ऐसे. आज शरीर के कोई भी अंग का आप ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, आप उसको काट के रख सकते हैं, लेकिन वेरी लिटिल इज स्टिल नोन अबाउट द ब्रेन. स्टिल वेरी यू नो लॉट ऑफ रिसर्च हैज टू बी डन, क्योंकि दिस डायमेंशन ऑफ इट उसकी अभी भी स्टडी चल रही है, विच इज द एनर्जी पार्ट ऑफ इट. क्योंकि हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के बीच, दैट्स द लोकेशन, एंड आत्मा वहां से बैठकर, एक एक आत्मा है क्या चीज? मैं आत्मा जब सोचने का काम करती हूँ, दैट्स द माइंड. द माइंड इज नॉट डिफरेंट, माइंड इज ऑल्सो एनर्जी. तो आई द सोल, आई व्हेन आई थिंक वी कॉल इट द माइंड. इट्स लाइक यू आर वन पर्सन कनुप्रिया, बट टू समबडी यू आर अ मदर, टू समबडी यू आर अ वाइफ, टू समबडी यू आर एन एक्ट्रेस. वन पर्सन डिफरेंट रोल. आई द एनर्जी, जब मैं सोचने का काम करती हूँ माइंड हूँ. मन में दो तीन संकल्प आएंगे, तब मैं उन संकल्पों को समझती हूँ, परखती हूँ, निर्णय लेती हूँ. उसको हम बुद्धि कहते हैं, इंटेलेक्ट, द डिसीजन मेकिंग पावर, इंटेलेक्ट. ये बहुत बुद्धिवान है, ये बहुत इंटेलिजेंट है. नॉट इंटेलिजेंस मीन्स अकेडमिक, बट वो परखने की शक्ति. तो मैं आत्मा जब सोचने का काम करती हूँ मन, जब मैं आत्मा निर्णय ले रही हूँ बुद्धि, और जो मैंने निर्णय लिया वो कर्म में आएगा. किसी ने सिगरेट ऑफर किया, पियो नहीं पियो, पियो नहीं पियो, बुद्धि ने कहा पी लो कुछ नहीं होता, पी लिया. छह महीने बाद फिर ऑफर किया, दो थॉट चले, बुद्धि ने फिर किया पी लो, ले लिया. आठ दस बार वही चीज रिपीट कर ली तो मन में दो संकल्प नहीं उठेंगे, पियो या नहीं पियो,
1: पियूंगा ही,
0: क्योंकि अब वो मेरी आदत बन गई है, जिसको हम कहते हैं संस्कार. तो जो संस्कार बार बार, अगर हम जो आदतें बनती जाती हैं वो संस्कार बन जाती हैं, और वो ही जो संस्कार बनेंगे वो थॉट फिर क्रिएट करेगा. यू नो बहुत बार झूठ बोला, झूठ बोलने की आदत पड़ गई, तो वो मेरा संस्कार है. अब मेरा संस्कार है झूठ बोलने का, तो मैं बहुत जल्दी झूठ बोलने का संकल्प कर लेती हूँ. तो इट्स अ साइकिल, इट्स अ चेन ऑफ यू नो. सो दैट इज मी, आई द सोल एम दीज थ्री एनर्जी. इट्स लाइक वन एनर्जी बट थ्री फैकल्टीज ऑफ द सेम एनर्जी. अब हर आत्मा के अलग अलग प्रकार के संस्कार होते हैं. इफ वी अंडरस्टैंड दैट, हमारा लोगों से संबंध में आना या इंटरेक्ट करना बहुत ईजी हो जाता है.
1: लेकिन हम अपने संस्कार को, इसका मतलब अपनी बुद्धि से, जब आई का बुद्धि वाला एस्पेक्ट हम देते हैं, हम उसको चेंज कर सकते हैं.
0: बिल्कुल, चेंज तो कर सकते हैं अपने संस्कारों को विद अंडरस्टैंडिंग. संकल्प वही तो एक साइकिल है ना, कहीं भी अगर उस साइकिल को तोड़ दिया तो वो वर्क हो जाएगा. इसलिए हमने कहा अगर थॉट पे तोड़ दे कि नहीं, अभी तक संस्कार था गुस्सा करने का, अब थॉट क्रिएट किया नहीं मैं शांत स्वरूप हूँ, चेंज कर दिया, दो बार चार बार गुस्सा नहीं करेंगे, धीरे धीरे संस्कार चेंज हो जाएगा. आत्मा के जो संस्कार होते हैं, कुछ संस्कार हमें पेरेंट्स से मिलते हैं, जेनेटिक हेरिडिट्री, हमारा कुछ बहुत ज्यादा उसमें चॉइस नहीं है, वी गेट इट. कुछ संस्कार हम अपने पूर्व जन्म से कैरी फॉरवर्ड करते हैं, बिकॉज इट इज एनर्जी, डजंट गेट क्रिएटेड, डजंट गेट डिस्ट्रॉयड. एक कॉस्ट्यूम छोड़ा शरीर, दूसरा कॉस्ट्यूम लिया, इस शरीर में किए हुए कर्म और उसके संस्कार कैरी फॉरवर्ड हुआ.
1: सारे ही हो जाते हैं
0: और इम्प्रेशन रहेगा, उसमें से कुछ मर्ज्ड रहते हैं, कुछ इमर्ज हो जाते हैं, लेकिन रिकॉर्डिंग सारी है आपकी सीडी के ऊपर, सारी रिकॉर्डिंग है. एब्सोल्युटली, हर रिकॉर्डिंग है. तीसरे प्रकार के संस्कार होते हैं जो हमारे वायुमंडल से बनते हैं, किस स्कूल में, किस वातावरण में हम पले, एज द कंपनी, यू नो. चौथे प्रकार के संस्कार है विल पावर. अब जो हम बात कर रहे हैं कि विल पावर से हम अपने संस्कार को चेंज कर सकते हैं. जो फर्स्ट थ्री थे बहुत ज्यादा कंट्रोल नहीं है, पेरेंट्स से मिले, पास्ट वर्ड से कैरी फॉरवर्ड किया, एनवायरमेंट से मिल गए, तो अब जो फीलिंग ऑफ विक्टिमाइजेशन

0: वो इन तीनों की वजह से आ रही है, ये मेरी आदत है जी, मैं नहीं बदल सकता, मैं नहीं बदल सकता। अगर आज संकल्प करें दृढ़ता से, वो चेंज हो जाएगा। फोर्थ, क्योंकि संस्कार ही संस्कार को काटता है।
1: अच्छा,
0: जैसे लोहा लोहे को काटता है, विल पावर से क्रिएट किया हुआ संस्कार हमारे इन तीनों, पहले तीनों प्रकारों के संस्कार को काट सकता है। इट्स वेरी, बहुत शक्तिशाली है ये। एंड पांचवें प्रकार के संस्कार है मुझ आत्मा के अपने ओरिजिनल संस्कार। व्हाट इज माय ओरिजिनल नेचर? व्हेन आई टुक द फर्स्ट कॉस्ट्यूम, व्हाट्स द ओरिजिनल प्रॉपर्टी ऑफ दिस एनर्जी? यू नो, प्रॉपर्टीज विल कीप
1: changing. That must be same actually for
0: everyone.
1: Huh?
0: That is the beauty.
1: Yes,
0: it's the same for everyone. तो जब मुझे पता चलता है
1: pure without anything else, we must be similar.
0: Absolutely. तो हर आत्मा के जो original संस्कार है वो है peace, love, happiness, purity, power, will power, knowledge, bliss, शांति। ये मुझ आत्मा का अपना संस्कार है, इसलिए हमने उस दिन कहा शांति कहीं चाहिए नहीं। ये तो मेरी अपनी नेचर है। सिर्फ ये है कि उसके ऊपर इतने सारे लेयर्स जो हो गई है तो वो मर्ज्ड हो गई है। तो शांति, सुख, प्रेम, पवित्रता, आनंद, खुशी, शक्ति, ये मुझ आत्मा के ओरिजिनल संस्कार है। जब हमें अपनी ये पहचान मिल जाती है कि मैं आत्मा हूँ ही शांत स्वरूप, मैं क्रोध स्वरूप आत्मा नहीं हूँ। इट्स लाइक द साड़ी इज व्हाइट, बट इफ आई गो इन द ट्रेन फॉर टू डेज, हो सकता है उतरने के बाद इसके ऊपर थोड़े से दाग लगे हो, लेकिन नॉलेज है कि इसका ओरिजिनल कलर व्हाइट है। अब उस पर थोड़ा सा दाग लगाए, आउट। यू नो, अगर चार लोग सेम व्हाइट साड़ी पहनकर गए और नीचे उतरे, हर एक का दाग तो अलग अलग होगा। सिमिलरली व्हेन वी बिगैन दिस जर्नी, वी वर ऑल द सेम, वेरी प्योर, लेकिन हर एक की जर्नी अलग अलग रही, तो हर एक पे दाग आज अलग अलग है। लेकिन जब मैं आपसे मिलूं, अगर मुझे ये अवेयरनेस रहे कि यू आर अ ब्यूटिफुल बीइंग, आप भी एक प्योर पवित्र शांत स्वरूप आत्मा हो, मैं आपको वो व्हाइट कलर में देखूं, आपके दाग को नहीं देखूं, तो आपको एक्सेप्ट करना, आपको रिस्पेक्ट करना, आपको ट्रस्ट करना, देयर इज नो एफर्ट।
1: इनफैक्ट ब्यूटीफुल। एंड उससे पहले सबसे बड़ी बात, क्योंकि अपने आप भी तो एक्सेप्ट करूं कि मैं भी उतनी प्योर।
0: सबसे इम्पोर्टेंट, जब हम अपने को कर लेंगे ना, तो दूसरे को करना तो आसान, बहुत इजी बहुत इजी है।
1: क्योंकि खुद के लिए इतना प्योर सोच पाना,
0: राइट,
1: यू नो, लाइक कि आई एम सो प्योर एंड सो नाइस,
0: एब्सोल्युटली,
1: आई एम सो गुड,
0: एंड इट्स द ट्रूथ। And that's why I like these things. I like peace. I like love. I like happiness. Because this is what I'm made of. This is my nature. It's just that ये जो छोटे छोटे दाग ऊपर से लग गए हैं, मैंने इसको क्यों अपना original संस्कार समझा?
1: तो somewhere deep within, you know, जब हमें ये एहसास हो जाए कि I'm pure like white, I'm pure like, you know, इतना ये हूँ, तो फिर मेरे अंदर जो अंधेरा था वो भी खत्म हो जाएगा, रोशनी मुझे मिल जाएगी।
0: नॉलेज मिल गई ना, नॉलेज इज लाइट। जैसे ये नॉलेज मिल गई, और इसीलिए सोल कॉन्शियसनेस, मतलब जैसे आत्मा शब्द आपको भी तो पता है, आपने आज पहली बार नहीं सुना, लेकिन हमने स्पिरिचुअलिटी को अपनी प्रैक्टिकल लाइफ से थोड़ा सा अलग कर दिया था कि जब हम सत्संग में जाएं, हवन कर रहे हैं तो आत्मा, हाँ जी, आत्मा आत्मा, ऑफिस में गए तो आत्मा क्या, आत्मा का तो कोई रोल नहीं है उसके अंदर, देयर आई एम द सीनियर मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर और वट एवर, सो देन इट्स नॉट प्रैक्टिकल। सो व्हाट वी लर्न विद राजयोगा मेडिटेशन इज स्पिरिचुअलिटी इज फॉर प्रैक्टिकल लाइफ। आप आत्मा है तो आप ऑफिस में भी आत्मा ही है, आप अपने घर में भी आत्मा ही है,
1: दैट एनर्जी विच इज देयर, करेक्ट, आई एम कॉन्स्टेंटली देयर।
0: तो मेडिटेशन की फर्स्ट स्टेज है सोल कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस, हु एम आई।
1: वंडरफुल शिवानी, बट राइट नाउ लाइक हमारे पास अब वक्त नहीं है, लेकिन बहुत, मतलब इट्स सो मच ऑफ विद सो मच ऑफ क्लैरिटी, एक्चुअली मुझे रियलाइज हो गया है, अभी कितना मेंटेन रहेगा ये देखते हैं, लेकिन येस, यू नो, लाइक सही बात है कि मैं जब तक यहां बैठी हूं मैं आत्मा को मान सकती हूं, लेकिन बाहर निकलते क्या मैं ये मानूंगी कि ये जिस पावर की, जिस एनर्जी की बात कर रही हूं, यही सब कुछ गवर्न कर रही है, यू नो, मेरी हर चीज का मैं जो हूं वो ये है, ये आत्मा है। एंड अगेन अनदर मिसकंसेप्ट और कंसेप्ट लाइक वट एवर इज मेडिटेशन वेरी डिफिकल्ट और लाइक इट्स नॉट फॉर मी, आई कांट डू मेडिटेशन, आई ऑल्सो टाइम्स फील दैट। सो दिस इज वन एस्पेक्ट विच वी विल टॉक इन द नेक्स्ट एपिसोड, की क्या मेडिटेशन मुश्किल है या आसानी से अपनी लाइफ में डाला जा सकता है, और मेडिटेशन क्यों जरूरी है इस अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। आज एक नए मैं को तलाश रहे हैं, वो

मैं जो कि ऑलरेडी है इतना प्योर, इतना प्यारा, इतना पवित्र, लेकिन कहीं हम भूल चुके थे, तो उससे धूल साफ करके वो सफेद रंग, वो प्योरिटी फिर नजर आ रही है। तो इसी प्योरिटी को मेंटेन करेंगे। अगर आपके पास भी कोई सवाल है, कोई ऐसी बात है जो आप इस प्रोग्राम में शामिल करना चाहते हैं, तो हम आपका स्वागत करते हैं। आप फोन पर संपर्क कर सकते हैं, फोन नंबर है 9873666555। और अगर आप चाहें तो हमें ईमेल भी कर सकते हैं, ईमेल आईडी है omshantistudio@gmail.com। तो इसी के साथ आप दीजिए इजाजत, लेकिन याद रखिए अपने मूल को स्वीकारने का और उसे भूलना नहीं है किसी भी एस्पेक्ट में जब हम जिंदगी जी रहे हैं। अगली कड़ी में क्या मेडिटेशन आसानी से किया जा सकता है और क्यों कर लिया जाए तो अच्छा रहेगा, इसके बारे में जानेंगे। लेकिन फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।

पुनेरी आवाज 107.8 FM वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल ट्रस्ट का सामुदायिक रेडियो स्टेशन। खुश रहो, खुशियां बांटो,

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: आज मैं आत्मा ड्राइवर ये गाड़ी मुझे चलानी है कि मेरी आंखें मेरे हिसाब से चले, मेरा मुख मेरे हिसाब से बोले, मेरा हाथ वो ही करे जो सही है कर्म और मन वो ही सोचे जो सही है। दैट वुड बी दैट माय कार इज इन माय कंट्रोल। सो लाइक दिस फाइव पीपल आर स्टेइंग इन द हाउस, पांच आत्माएं ड्राइवर और उनकी अपनी अपनी एक गाड़ी। अगर हर आत्मा का अपनी गाड़ी पे कंट्रोल होता तो जर्नी कैसी होती उस रोड के ऊपर? ब्यूटीफुल। हर एक ने प्यार से निकल जाना, हर एक ने एक स्टीयरिंग व्हील घुमाना है, थोड़ा सा दूसरा आ भी रहा होगा तो उसने ऐसे टर्न करना है, उसने घूम जाना, एक्सीडेंट कभी होता ही ना। द पावर टू मोल्ड, द पावर टू एडजस्ट, द पावर टू टर्न हियर, द पावर टू ब्रेक स्टॉप, सब कुछ हो जाता अगर ये गाड़ी मेरे कंट्रोल में होती तो। और अगर पांचों की होती तो वो जीवन, वो घर स्वर्ग होता, राइट? अब अगर सपोज चार की भी नहीं है, एक भी अपने करना शुरू करते हैं, सी, तो कितनी सारी चीजें बचेंगी अगर एक आत्मा अपने ऊपर संयम ले आए। दिस इज द पावर दैट वी हैव। लेकिन अगर पांचों ने अपना ध्यान नहीं रखा, अपनी उनकी ब्रेक्स चलती नहीं, उनका स्टीयरिंग व्हील उनके कंट्रोल में नहीं, लेकिन वो चाहते हैं कि वो बाकी सब गाड़ियां मेरे हिसाब से चले, तो एक क्षण भी बिना एक्सीडेंट के नहीं चलेगा उस घर के अंदर। दिस इज द रियलिटी ऑफ आवर लाइफ टुडे।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: लगा
1: लगा
0: लगा के धूप में खिला है चांद दिन में रात हो गई
1: चांद की बात हो गई
0: ओहो ओहो ओहो।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: डिप्रेशन इज एंगर टर्न्ड इनवर्ड्स। जब आप औरों पे नहीं गुस्सा करते तो आप अपने पर ही करने लग जाते हैं, लेकिन शायद जब आप औरों पे भी गुस्सा करते हैं तब भी अपने पर गुस्सा कर रहे हैं। आपको गुस्सा देने के लिए वो मेरे से होते हुए ही गुजरेगा, वो एनर्जी पहले यहाँ क्रिएट करनी पड़ेगी। इट्स नॉट पॉसिबल कि मैं आपको कुछ भी दे दूँ विदाउट क्रिएटिंग इट। पहले मुझे कूट कूट के गुस्सा अपने अंदर क्रिएट करनी पड़ेगी कि मुझे अपने आप को क्या देना है। नहीं, मुझे तो ऐसे गुस्सा करना ही है, कीजिए, बट ओनली रिमेम्बर द एनर्जी दैट एंगर आई क्रिएट देन आई गिव।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
2: नमस्कार साथियों,

0: आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज। अब हम आपके लिए रेडियो मधुबन द्वारा निर्मित एक विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत करने जा रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ।
1: दोस्तों, आपने अक्सर ही सुना है, गुरु गोविंद दोनों खड़े काकू लागे पाए, बलिहारी गुरु आपको जो गोविंद यो बताए। मतलब अगर गुरु और आपके इष्ट दोनों आपके सामने खड़े हैं, तो आप सबसे पहले नमस्कार अपने गुरु को करेंगे जिन्होंने आपको आपके इष्ट तक पहुंचने का रास्ता बताया। हमारे जीवन में बचपन से पहले तो माँ एक शिक्षक या गुरु का किरदार निभाती हैं, और उसके बाद एक शिक्षक, चाहे वो छोटे से प्राइमरी स्कूल का शिक्षक हो या कॉलेज लेवल या माध्यमिक या उच्चतर माध्यमिक या विश्वविद्यालय स्तर का एक शिक्षक हो, अध्यापक और शिक्षक हमारे जीवन में, हमारे जीवन को गढ़ने में एक ऐसी भूमिका निभाते हैं जो कोई और नहीं निभा सकता। चाहे कितने भी आप YouTube के वीडियोस देख लीजिए, लेकिन एक शिक्षक का जो रोल है वो केवल एक शिक्षक ही निभा सकता है। जैसे कि सूर्य का काम केवल सूर्य कर सकता है, कोई और नहीं, ऐसे ही अध्यापन या शिक्षण एक ऐसी विधा है जो एक प्रशिक्षित शिक्षक ही कर सकता है। और आज यशस्वी भारत कार्यक्रम के हमारे आज के एपिसोड के जो मेहमान हैं, वो एक ऐसे ही यशस्वी अध्यापक हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आरजे शांतनु, और यशस्वी भारत कार्यक्रम के आज के हमारे एपिसोड में मैं आपके बीच में लेकर के आया हूं हमारे बहुत ही चहेते खुर्शीद अहमद सर को। आपको सब सर के नाम से ही बुलाते होंगे खुर्शीद जी, लेकिन हमारे लिए तो आप खुर्शीद अहमद जी हैं, और मैं आपका स्वागत करता हूँ रेडियो मधुबन के हमारे स्टूडियो में। साथियों, खुर्शीद अहमद जी को भारत सरकार के द्वारा 2022 में शिक्षक दिवस के दिन 5 सितंबर, आप सब मनाते हैं, आपके घर में जो बच्चे हैं वो शिक्षक दिवस मनाते हैं, तो उस दिन महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने राष्ट्रीय शिक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया है। आइए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं खुर्शीद अहमद जी के साथ। खुर्शीद जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार।
2: नमस्कार सर, आपसे मिलकर के, आपसे बातें करके मैं भी आह्लादित हो रहा हूँ, और ये मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है कि इस मंच पर हमको आपने इनवाइट किया, और आपके माध्यम से मैं तमाम दर्शकों का अपने दिल से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि मुझे सुनने के लिए और मुझे जानने के लिए ये एक मौका मिला।
1: खुर्शीद जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमने यशस्वी भारत कार्यक्रम में तमाम उन बड़ी हस्तियों से बातचीत की है जो तमाम अलग अलग क्षेत्रों में महारत लिए हुए हैं, लेकिन आप पहले ऐसे राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति हैं जिनसे हम बात कर रहे हैं जो स्कूल के बच्चों के साथ काम करते हैं, और ये हम समझते हैं कि एक बहुत नया अध्याय खोलेगा यशस्वी भारत के लिए, क्योंकि जहां तक हम देखते हैं एक किसी भी व्यक्ति के जीवन में, हम हमारे कॉलेज के प्रोफेसर्स को या विश्वविद्यालय या बड़े स्तर के जो टीचर्स होते हैं उनको उतना याद नहीं करते जितने बचपन के टीचर्स को हम याद रखते हैं। आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा, आपका बचपन भी कुछ ऐसे ही यादों के साथ गुजरा होगा। कैसे आप शिक्षण की व्यवस्था में आ गए और शिक्षण को ही अपने जीवन का ध्येय बना लिया, ये हम जानना चाहेंगे। तो खुर्शीद अहमद जी की कहानी खुर्शीद जी की जुबानी।
2: जी सर, मैं बताना चाहूंगा कि जो शिक्षण का मेरा अपना पैसा चुनना हुआ, इसको कहीं बाय चांस नहीं, बाय चॉइस ही लिया गया, मैंने इसको तय किया। मैं बताना चाहूंगा कि मैं जब बचपन में जब स्कूल में पढ़ता था तो प्ले या ड्रामा का जो किरदार होता था उसमें, तो अक्सर मैं उसमें टीचर ही बनता था। पढ़ने के दौरान भी मुझे टीचर का जो रोल होता था, मैं प्ले में टीचर का रोल करना मुझे बहुत पसंद आता था, और बचपन में मैंने तय किया कर लिया था कि मैं एक दिन टीचर ही बनूंगा। तो मेरी जो जर्नी स्टार्ट हुई है, मैं बताना चाहूंगा कि अपनी जो एजुकेशन कंप्लीट करने का जो हमारा प्रोसेस रहा है, उसके दौरान मैंने अर्निंग जो किया, क्योंकि हमारे जो बैकग्राउंड था थोड़ा घर का स्थिति अच्छी नहीं थी, तो टीचिंग के दौरान जो हमसे जो अर्निंग होता था उसके द्वारा अपनी फीस को पे करना और बच्चों के साथ लगे रहना, ये मेरा पैसा रहा। मैं 2006 में एक जो यूपी में कॉन्ट्रैक्ट बेस पर टीचर होते हैं जिनको हम शिक्षा मित्र कहते हैं, 2006 में हमारी पहली जर्नी स्टार्ट हुई एज ए शिक्षा मित्र के रूप में, जिनको मंथली 3,000 रूपए मिलते थे। मैं वहां से अपनी जर्नी को स्टार्ट किया और यह मेरे मन में आया, मेरे दिल में आया कि हो सकता है ईश्वर ये मुझे एक छोटा सा मौका दे करके मेरा इम्तहान ले रहे हैं, और अगर मैं इस काम को बेहतर तरीके से न करूं तो आगे चल करके मुझे बड़ा चांस नहीं मिल सकता है। और मैंने लगातार 4 वर्षों तक उसमें शिक्षा मित्र के रूप में काम किया, और 4 सालों के बाद 2010 में मुझे वो जॉब को छोड़ना पड़ा और बीटीसी मैंने किया, जिसको बेसिक टीचर सर्टिफिकेट ट्रेनिंग कहते हैं। और 2012 में कम्प्लीट हुई ट्रेनिंग, और 2013 में मुझे फुल मतलब कि कहा जाए कि जो एक परमानेंट टीचर है उसमें मुझे अपॉइंटमेंट मिला। और फिर मैं ऊपर वाला का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे मात्र 2 साल 2 महीने उस जॉब पे काम करना पड़ा, पुनः मुझे एक नई वैकेंसी आई जो जूनियर हाई स्कूल में साइंस टीचर की राइट वैकेंसी थी, और फिर मुझे उस पद को रिजाइन देना पड़ा। और तब तक 2015 से लेकर अब तक मैं इस पद पे कार्यरत हूँ। तो मैं जो स्टार्ट किया अपनी जर्नी को बिल्कुल एक लो लेवल से स्टार्ट करके, मुझे अब तक 3 बार चांस मिला है इस विभाग में काम करने के लिए, तो मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली महसूस करता हूँ। और ये मानता हूँ कि शिक्षक एक राष्ट्र निर्माता होता है, अपने कार्यों से, अपने दायित्वों के बोध से वह समाज को, बच्चों के भविष्य के साथ साथ समाज को बदलने का प्रयास करता है। और मुझे यह मौका मिला ये अपने देश के राष्ट्रहित में, बच्चों के हित में, परिवार के हित में, समाज के हित में मुझे कुछ करने का मौका मिला। मैं अपने आप को इस ईश्वर का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि मुझे यह मौका मिला है। जी सर।
1: खुर्शीद जी, मुझे ऐसा लगता है कि आपने संक्षेप में तो अपनी कहानी बताई, और शुरू से ही बचपन से ही आपको एक शिक्षक बनने का, जो मैं कहूँगा उस समय तो शौक कहेंगे, लेकिन बाकी लोगों ने भी यही सोचा हो कि हाँ ये अभी का शौक है, आगे चल करके डॉक्टर इंजीनियर, जो भारतीय परिवारों में होता है कि बच्चा जब पढ़ाई कर रहा है तो हम उम्मीद लगाते हैं कि या तो ये डॉक्टर बनेगा, या तो ये इंजीनियर बनेगा, या फिर लॉयर बनेगा, या CA बनेगा, इन 4 के अलावा हमें कुछ नजर ही नहीं आता। तो शिक्षक बनना ये तो जैसे कि आपके, मुझे ऐसा लगता है, पता नहीं मैं शायद गलत भी हो सकता हूँ, कि आपके आसपास भी लोगों ने आपको ऐसा कुछ बोला होगा कि ये क्या तुम पढ़ाई और कब तक पढ़ोगे, ये क्या है कुछ और कर लो, ऐसा कुछ हुआ आपके साथ भी?
2: हाँ, कुछ ज्वाइन किया है आगे अभी बहुत, क्योंकि मैं जब पढ़ता था तो जो टीचर हमारे स्कूलों में पढ़ाते थे तो उनकी मैं कॉपी करता था, मेरे पास बोर्ड नहीं हुआ करते थे तो मैं फर्श पर उनके तरफ से राइटिंग लिखता था, तो अपने मोहल्ले के बच्चों को बुला करके मैं उनको पढ़ाता था। तो ये कह लेते हैं कि मेरे दिल में था, जहन में था शुरू से कि मुझे टीचर बनना है, क्योंकि टीचर है पूरा जनरेशन चलने का काम करता है। तो मतलब मैं शुरू में ही बोला कि मैं इसको एक चांस के रूप में लेकर के, मेरी ये चॉइस थी, मेरी दिली इच्छा थी मैं जीवन में आगे बढ़ूं। लोगों ने तमाम तरह के कटाक्ष किए कि तुम्हारे पास और पद को, इसके लिए मैंने इसको अब इसको दिल से स्वीकारा। और मैं बात कर रहा हूँ कि मैं ऊपर वाले का शुक्रगुजार हूँ कि उनके दुआओं से मैं इस पद को ग्रहण कर पाया हूँ, कुछ काम कर पा रहा हूँ।
1: जी, ऊपर वाले की दुआ तो आपके साथ थी ही, आपके शिक्षक की भी दुआ आपके साथ रही होगी। मुझे ये जानना था कि बचपन में जब आप पढ़ाई कर रहे थे, या आपके किशोरावस्था में, या आपके पढ़ने के दौरान, क्या कभी कोई एक ऐसी घटना आपके साथ घटी है आपके शिक्षक के साथ, जिसने आपको बहुत ही प्रेरित किया हो कि मुझे भी यही बनना है, क्योंकि ये शिक्षक या ये जो घटना है ये आपको लगा कि एक शिक्षक के लिए जरूरी है, इस प्रकार का एक शिक्षक बनना जरूरी है किसी के लिए भी?
2: मैं ये कह रहा हूँ कि बचपन में हमारे टीचर थे जिन्होंने, जिनके कार्यशैली से मैं इतना प्रभावित हुआ था कि वह बच्चों को इस तरह से गाइड करते थे, इस तरह से मोटिवेट करते थे, और वो जीवन के कैसे जीवन को अच्छी तरह से गुजारे वो हमको मोटिवेट करते थे। तो जीवन में मुझे उनसे ही मैं प्रेरित हुआ था, मैं उनका नाम इस समय भूल पा रहा हूँ, इश्तियार नहीं आ रहा है, तो उनसे मैं काफी प्रेरित हुआ था। और एक सात दिन मैं जीवन में आगे चढ़ करके टीचर ही बनूंगा, तो उससे मैं काफी मोटिवेट हुआ था सबसे।
1: और जब आपने पढ़ाना शुरू किया तो मुझे ऐसा लगता है कि जब आप पढ़ाते हैं तो आपके सामने हर प्रकार के बच्चे आते हैं, कुछ शांत होते हैं, कुछ थोड़े अलग प्रकृति के होते हैं, कुछ थोड़े से हम कहेंगे नटखट होते हैं।

0: लेकिन कुछ तो नटखट से भी आगे होते हैं। तो हर प्रकार के बच्चों को संभालने के लिए क्योंकि एक परिवार में एक अभिभावक को, एक माता पिता को एक ही प्रकार के बच्चे मिलते हैं या दो या तीन प्रकार के मिलते हैं, लेकिन एक कक्षा में एक शिक्षक को 40 प्रकार के बच्चे मिलते हैं, 40 प्रकार की प्रकृति वाले बच्चे मिलते हैं। सबको समाना, सबको संभालना, उसके लिए क्या बातें बहुत जरूरी होती हैं शिक्षक को ध्यान में रखने के लिए?
1: बिल्कुल सर, आपका जो कहना है बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारे जो ग्रामीण अंचल से जो बच्चे आते हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरे विद्यालय में 22 गांव के बच्चे आते हैं और जिनके माता पिता अक्सर मजदूर वर्ग के हैं, जिनके पेरेंट्स मतलब लेबर हैं, लेबर क्लास के हैं। तो ऐसे बच्चों को, 22 गांव के बच्चों को एक साथ लेके चलना, और क्लास में सर डिफरेंस पाए जाते हैं, हर बच्चा हर एक लेवल का नहीं होता है, हर एक बच्चे का एक कहने जाए कि उसका जो सोच है, उसका जो लेवल है अलग है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि हर एक बच्चा अपने आप में एक अनोखा है, उसके पास हर एक बच्चे के पास टैलेंट है, हर एक बच्चे के पास उसके अंदर एक क्षमता है। तो हम लोग करते क्या है कि सर बच्चों के अकॉर्डिंग जो है टीचिंग करना, जैसे बच्चों की जो दक्षताएं हैं, जैसे क्लास में हर एक बच्चे की दक्षताएं अलग अलग होती हैं, तो बच्चों की दक्षता के अनुरूप उनको टीचिंग करना, बच्चों को उनके दक्षता के अनुरूप गाइड करना, उनके जो समस्याएं हैं, उनके जो प्रॉब्लम्स हैं, उनके जो वो है, बार बार उनकी काउंसिलिंग करना, इस तरह से हम लोग मैनेज करते हैं। इसके अलावा विद्यालय में समय समय पर उनका यूनिट टेस्ट करा करके और उनके पेरेंट्स को हम लोग मोटिवेट करते हैं। मैं शुरू में बोला कि बच्चे जो आ रहे हैं हमारे पास, ये पेरेंट्स काफी गरीब हैं, गरीब तबके के लोग हैं, अपने बच्चों को हमारे यहाँ भेजते हैं, तो उनके माता पिता, गुरु, भाई बहन, हम सभी लोग हैं, टीचर ही है, तो टीचर की रिस्पांसिबिलिटी केवल टीचर के करके एज ए पेरेंट्स, एज ए फादर, एज ए मदर, एज ए सब चीजें हैं, तो इस तरह से करते हैं। जी सर।
0: और जब आपने जैसे कहा कि आप केवल टीचर का ही रोल नहीं निभाते हैं, आप माता पिता का भी रोल निभाते हैं, और लेकिन एक चीज जो मेरे को ऐसे समझ में आता है कि क्योंकि आप उत्तर प्रदेश से हैं और उत्तर प्रदेश के इतने सारे गांवों में से आपके गांव में और आपका जो प्राथमिक विद्यालय है, वो विद्यालय जो है अपने आप में बहुत नामचीन विद्यालय बन चुका है, क्योंकि आप हैं उसमें, आपके जैसे शिक्षक हैं। लेकिन मैं समझता हूँ हर विद्यालय में ये शायद संभव नहीं। और जहाँ तक अलग अलग गांवों से बच्चों के आने की बात की जाती है, तो कई बार ऐसा भी देखा गया है कि गांव में ही सामाजिक कुरीतियों की वजह से एक परिवार का दूसरे परिवार के साथ थोड़ा मनमुटाव होता है, या फिर जो कुरीतियां हैं, कहेंगे जैसे कहते हैं कि भाई आप पिछड़े वर्ग से हैं या आप फलाने जाति से हैं, उनके बच्चों से मिलना नहीं है, उनसे बातें नहीं करनी है, आपको उनके साथ खेलना नहीं है, इस प्रकार की कुरीतियों का भी क्या आपको सामना करना पड़ता है?
1: तीन साल पहले सामने घटना घटी थी, स्कूलों में एमडीएम का जो संचालन होता है, जैसे मिड डे मील गवर्नमेंट देती है, बच्चों को एक साथ खाना होता है, तो कुछ बच्चे मैंने देखा कि बच्चे खाना नहीं खा रहे थे, तो मैंने करते हैं, तो बच्चों ने कुछ चीजें ऐसी बताई कि जो मैं इस लेवल पे नहीं कर सकता, लेकिन मैंने उसको ऐसे हैंडल किया कि कहा जाता है टीचर जो होता है लीडर होता है, तो खुद मैंने लीड किया और बच्चों के सामने बैठ करके, बच्चों के बीच में बैठ करके मैंने उनके साथ में खाना प्रारंभ किया। तो बच्चों को जब लगा कि मेरा टीचर ऐसे कर सकता है तो क्यों नहीं हम करें, लेकिन आज के डेट में सारी चीजें बदल चुकी हैं, सभी बच्चे एक साथ बैठकर खाना खाते हैं, बच्चों को कहीं नहीं है कि अंदर क्या है नशे खिलाने, किसी तरह के हमारे विद्यालय में इस तरह में रहते हैं, बच्चे एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। तो इन सब समाज जो कुरीतियां है हर लेवल उनके में ये डालते हैं कि नहीं आप स्टूडेंट हैं और हम लोग माली हैं और आप इस यहाँ के प्लांट हैं, हमको आपको सीखना है। तो ये सब भावनाएं बच्चों के अंदर जो आती हैं उनको हम लोग दूर करने का प्रयास बीच बीच में आकर गाँव में बच्चों के जो अच्छे जो काम है उनके तो धीरे धीरे कहीं अपने हाथ में हम लोग इस तरह से उनको बांध कर देते हैं। जी सर।
0: तो जैसे कि आपने पहले भी बताया खुर्शीद जी कि कई सारी ऐसी कुरीतियां हैं, पुरानी कुरीतियां हैं, जिन पे आपने अपने विचारों से, अपने कर्तव्यों से, जैसे कि एक शिक्षक का कर्तव्य होता

0: है करके दिखाना, उससे आपने उस पर विजय प्राप्त की। लेकिन कुछ ऐसी भी समाज में भ्रांतियां हैं, जैसे जाति भेद होता है या अमीर गरीब का भेद होता है या लड़की लड़कियों में जो भेद किया जाता है, उसका भी सामना किया करते ही होंगे आप। और जैसे कि आपका जो विद्यालय है वो गांव में है, तो गांव में इस भेदभाव को हमने कुछ ज्यादा ही देखा है, जहां पर बच्चियों को पढ़ने के लिए रोका जाता है या उनको उतना प्रोत्साहित नहीं किया जाता है। क्या आपके सामने भी या आपके जो विद्यार्थी हैं उनको भी इस प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ा है, जहां पर कन्याओं को पढ़ाई के लिए उतना नहीं प्रोत्साहित किया गया है, तो आपने कैसे इस समस्या का समाधान किया अगर आपने इसको फेस किया है तो?
1: हाँ सर, मैं बताना चाहूंगा कि मेरे यहाँ जो स्कूल का जो स्ट्रेंथ है, जो इनरोलमेंट है, इस समय 452 बच्चे हैं। और पिछले कई वर्षों मैंने देखा था कि बच्चे लड़के और लड़कियों का जो रेशियो होता था उसमें काफी डिफरेंस होता था। और बच्चे जो हमारे गर्ल्स हैं, गर्ल्स एजुकेशन के बारे में कम अवेयरनेस था, और अपने जो उनके पेरेंट्स होते थे क्लास 6, 7, 8 के बाद बच्चियों के बारे में, उनके करियर के बारे में न सोच करके उनकी लड़कियों की शादी के बारे में ज्यादा सोचते थे। तो मैंने उनके पेरेंट्स को काउंसलिंग के द्वारा या पेरेंट मीटिंग के द्वारा या अवेयरनेस प्रोग्राम चला करके, जैसे गर्ल्स एम्पावरमेंट हुआ, वुमेन एम्पावरमेंट हुआ, इस तरह से हमने योजना बना करके उनको मोटिवेट करने का काम किया। वर्तमान समय में मैं बच्चियों को अभी से ही अग्निवीर की ट्रेनिंग दे रहा हूँ कि बच्चियों के अंदर ये भाव आए कि केवल अग्निवीर एक मेल नहीं हो सकता है, हम फीमेल, हम लड़कियां, हम भी हो सकते हैं। इस तरह के बहुत सारे हम प्रोग्राम स्कूल में ऑर्गेनाइज करते हैं कि बच्चियों को आगे चल करके ये ना महसूस हो कि हम अपने माता पिता के ऊपर एक बोझ की तरह है, बर्डन की तरह है। तो काउंसलिंग के द्वारा और उनके जो एबिलिटी है, जो उनकी बच्चों की योग्यता है कि उनके पेरेंट्स को बताया जाता है, और उनको बीच बीच में जो स्कूल में मीटिंग होता है, बच्चियों के जो अच्छे कारनामे हैं, बच्चों के जो रिजल्ट्स हैं, जैसे कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में जो बच्चियां आगे आई हैं। लास्ट ईयर एक हमारे यहाँ एग्जाम हुआ था नेशनल लेवल पे, जिसमें से 26 बच्चे हमारे यहाँ सेलेक्ट हुए, जिनको आगामी 4 वर्षों तक प्रत्येक माह ₹1,000 धनराशि मिल रही है। 26 में बताना चाहूंगा कि जिसमें हमारे यहाँ 17 बच्चियां लड़कियां हमारी पास आउट हुई थी, अब वे बच्चियों को लगातार आगामी वर्षों तक प्रत्येक माह ₹1,000 धनराशि मिल रही है। तो आप जरा सोच लीजिए, जो हमारे गरीब बच्चियां हैं स्कूल में आ रही हैं, जिनके माता पिता अक्सर मजदूर वर्ग के हैं, उनको प्रत्येक माह अगर ₹1,000 धनराशि मिल रही है तो क्लास 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं तक उनको पढ़ाई की किसी तरह का चिंता फिक्र नहीं है। इसके अतिरिक्त हमारे गवर्नमेंट ने तमाम तरह की पॉलिसीज, तमाम तरह की फैसिलिटीज, तमाम तरह की योजनाएं बच्चियों के लिए चला रखी है। तो बच्चियों को हम बताते हैं और उनको समय समय पर उनकी काउंसलिंग की जाती है। उनके माता पिता को या हमेशा ये सोचने के लिए मजबूर कर दिया जाता है कि अब आपकी लड़की जो है बिना आपके इफोर्ट से, बिना आपके प्रयास से भी लड़की आगे आगे कक्षाओं में पढ़ लेगी, तमाम तरह के गवर्नमेंट की तरफ से जो हमारे योजनाएं चल रही हैं। यस सर।
0: लेकिन जैसे आपने बताया कि सरकार की तरफ से योजनाएं चलती हैं, लेकिन अक्सर ये देखा गया है कि जो अध्यापक वर्ग है वो उन योजनाओं में उतनी रुचि नहीं रखता है, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी काम का इतना एक वो क्या कहेंगे एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है, एक जिम्मेदारी है कि भाई आपको कोर्स खत्म करना है, आपको पढ़ाना है, फिर और भी चीजें होती हैं। एक सरकारी अध्यापक के नाते उनको कई चीजों में भागीदारीता निभानी पड़ती है, चाहे वोटिंग ड्यूटी हो, सेंसस चेक करने जाना हो, आदि आदि बहुत चीजें होती हैं। ऐसे में एक अध्यापक अपनी रुचि को कैसे बना के रखे जिससे कि वो स्टूडेंट्स तक उन फैसिलिटीज को, उन मुद्दों को पहुंचा सके जिससे स्टूडेंट्स का भला हो रहा है। आपने अपनी रुचि को कैसे बना के रखा है?
1: सर देखिए, बता रहा हूँ कि एक मैंने स्कूल में चलाया था सुपर 30 क्लास। तो सबसे पहले बताना चाहूंगा कि सुपर 30 क्लास बना कैसे। हम स्कूल में उन बच्चों को लिए कि जो बच्चे हमारे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, जो अच्छा काम अन्य चीजें बहुत बेहतर कर रहा है, तो सबसे पहले मैंने सुपर 10 बनाया, फिर सुपर 20 बनाया, फिर सुपर 30 बनाया, सुपर 50 बनाया, अब जाके सुपर 100 है। अब उन बच्चियों को जिसमें हमारे आधे आधे की भागीदारी होती है, हाफ बॉयज रहेंगे हाफ गर्ल्स रहेंगे, अब इन बच्चों को मैं एक्स्ट्रा जो क्लासेज है, जैसे कि स्कूल टाइम के बाद जितने भी हमारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम है,

0: जैसे कि नेशनल मींस का मेरिट स्कॉलरशिप एग्जाम हुआ, चाहे श्रेष्ठा हुआ, पीएमएसएसवी हुआ, नवोदय हुआ, सैनिक में आपका चयन हुआ, चाहे हमारी अन्य भी जो डिफेंस सेक्टर में हमारे जो बच्चे जाना चाहते हैं उनको हम मोटिवेट करते हैं। और पढ़ाने की जो शैली है, पिछले काफी वर्षों से मैं अपने स्कूल में इसको इस ट्रेंड को बदला हूं कि बच्चों केवल सिलेबस पूरा ना किया जाए, सिलेबस के साथ साथ में ये देखा जाए कि बच्चों को आगे चल करके किस तरह का इनको कम्पिटेटिव एग्जाम में फेस करना है। मैं बताना चाहूंगा कि अभी से ही बच्चों के अंदर ये यूपीएससी को लेकर के उत्सुकता बनी हुई है, बच्चियों सभी बच्चों के पास यूपीएससी के अभी नोट्स बनाना चालू कर दिए हैं, तो उनके अंदर एक अभी से ये उनके दिमाग में है कि हमको आगे चल करके हमको यूपीएससी में बैठना है, एसएससी के एग्जाम देना है, रेलवे में बैठना है, और अपने माता पिता का हमको हमारा जो एक कॉलेज की पॉवर्टी लेवल से हम लोग जो गुजर रहे हैं हमको उसको तोड़ना है और हम अपने अपने घर का एक हम जिम्मेदार बनने वाले हैं। तो ये भाव उनको अभी से दिया गया है, जो बच्चे काफी मोटिवेट हुए हैं। कुछ ऐसे पेरेंट्स हमारे यहाँ फोन करते हैं कि सर आपने क्या ऐसा कर दिया है कि रात में हमारी बच्ची जब रखती है तो कहती है कि हमको अभी तैयारी करनी है, इसका हमको कम्पिटेटिव एग्जाम में जो हमारे सर तैयारी करा रहे हैं उसको हमको फेस करना है। तो और इसका रिजल्ट भी बहुत बड़ा बहुत पॉजिटिव आया है। तो लगातार मोटिवेशन, उनके आगामी जीवन के बारे में, उनके सपनों के बारे में जगाना, कैसे उनके सपने बनेंगे, सपने दिखा करके हम उनके कार्यों में बेहतर कर पा रहे हैं सर।
1: और मैंने जो चीज सुना आपके इस अनुभव में कि 26 बच्चों में से 17 बच्चियां हैं, मतलब लड़कियां हैं, तो ये जो दूसरे कक्षाओं में जो लड़कियां पढ़ रही हैं उनके लिए भी एक अपने आप में बहुत बड़ा प्रोत्साहन है, एक उम्मीद है कि भाई हम भी इनके जैसा बन सकते हैं, आत्मनिर्भर बन सकते हैं। एक किशोरावस्था में किसी बच्चे के हाथ में 1000 रुपए आना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी ताकत है। इसके लिए तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत साधुवाद है कि आपने इतने सुंदर तरीके से अपने बच्चों को स्वावलंबी बनाया है, और केवल अपने ही बच्चों को नहीं, आपके बच्चों के द्वारा मैं समझता हूँ बाकी भी जो लोग आज हमको सुन रहे हैं वो भी अपने बच्चों को प्रेरणा देंगे कि स्वावलंबी कैसे बना जा सके।
0: ये जो चीजें हैं बच्चों के अंदर जो डेवलप किया गया है, जो सोचने की क्षमता डेवलप की गई है, मैं हमेशा बच्चों के कहता हूँ कि मैं एक मजा अके तौर पर कहूंगा कि लास्ट ईयर जो बच्चा एक पास हुआ था चंदन कुमार, तो चंदन कुमार पढ़ने में थोड़ा सा वो अन्य बच्चों से थोड़ा सा डलता, वो अपने आप को थोड़ा सा कमजोर मानता था, लेकिन वो बच्चे को मैंने पार्टिसिपेट कराया, वो पास हुआ। तो लड़का जब पास आउट हुआ था तो मिठाई लेकर मेरे पास आया कि सर ऐसा है कि मुझे आज 12000 रुपए निकले हैं और मैं आगे चल करके मैं अपनी कमाई से पढ़ूंगा, मैं अपने घर वालों से एक भी रुपया नहीं मांगूंगा। तो मेरे अंदर उसके अंदर एक भाव आ गया, और यह हमेशा बच्चों के अंदर हम प्रयास कर रहे हैं कि बच्चे ये जाने कि हमको स्वावलंबी बनना, आत्मनिर्भर बनना है, हम अपने माता पिता का कभी बोझ नहीं बनेंगे। तो उनके अंदर ये सोच अभी से डेवलप हो गया। कुछ ऐसे बच्चे सर बताऊंगा कि हमारे यहाँ जो एक्स्ट्रा टाइम है स्कूल के बाद वो जा करके चौराहे पर मूंगफली बेचते हैं सर, सब्जी बेचते हैं सर, हाँ मजदूरी करके हमारे स्कूल में पढ़ने के लिए आते हैं। वो ये बात जानते हैं कि आज हम स्वावलंबी हैं, आप कुछ कर रहे हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो ये दिन एक ऐसा हम इसको कन्वर्ट करेंगे अपने कार्यों के द्वारा, अपने मेहनत के द्वारा, तो कि हम एक मिसाल बनेंगे, अपने माता पिता का एक गौरव बनेंगे। तो वह चीजें उनके सपनों को जगाना, क्योंकि एक टीचर कुछ नहीं कर सकता, केवल बच्चों को सपने दिखा सकता है। तो मैंने वही काम किया कि बच्चों के सपने को बुना जाए, सपने बच्चे देखें और उस सपने के ऊपर वो काम करना चालू करें, और सर कर भी रहे हैं। इसलिए हमारे स्कूल में अटेंडेंस सर बहुत जबरदस्त रहता है, प्रेयर असेंबली में हमारे अटेंडेंस 80 के एबव रहता है प्रेयर असेंबली में, जबकि वो रूरल एरियाज हमारे बच्चे आते हैं सर।
1: ये जो आपने एक दृष्टांत दिया कि बच्चे जो हैं रोजगारी करते हैं और फिर भी पढ़ाई में ध्यान लगाते हैं, अपने माता पिता को उनके व्यवसाय में उनके कारोबार में मदद करते हुए अपनी पढ़ाई को कायम करके रखे हुए हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ा मैं समझता हूँ आदर्श है। हम जो भी श्रोता सुन रहे हैं कि गांव में बच्चे आज भी बहुत मेहनत करते हैं और मेहनत करने के बाद अपने शिक्षा के अधिकार के लिए वो स्कूल में पहुंचते हैं, तो ऐसे में जो भी मदद हम और आप कर सकते हैं हमें जरूर करना चाहिए, उनका मनोबल बढ़ाने में, उन्हें आगे बढ़ाने में, उन्हें सपने दिखाने में। खुर्शीद अहमद जी जैसे जितने भी अध्यापक हैं, शिक्षक हैं, उस समाज को

0: इनका सबसे बड़ा योगदान है। इसलिए खुर्शीद अहमद जी, मुझे ऐसा लगता है कि आपके जैसे शिक्षक भारत देश में होना ही भारत को विश्वगुरु बनाता है। खुर्शीद जी, मेरा अगला सवाल आपसे इस बारे में है कि जैसे आपको अक्सर मैंने देखा है आपके जीवनी को जब मैं देख रहा था कि आप हमेशा से रचनात्मकता में बहुत ज्यादा आपका झुकाव रहा है, बड़े ही रचनात्मक रहे हैं, क्रिएटिविटी, इनोवेशन, रचनात्मकता में आप खुद ही बैठ करके स्टूडेंट्स के साथ मॉडल्स बना रहे हैं और बहुत चीजें आप खुद ही करते हैं, तो ये रचनात्मकता आप अपने अंदर कैसे बनाए रखते हैं? कैसे दूसरे शिक्षकों को आप कहना चाहेंगे कि वो रचनात्मकता अपने अंदर वो कैसे बना के रख सकते हैं?
1: अच्छा सर, ये कहना चाहूंगा कि हर एक टीचर में अपनी अपनी एक काबिलियत है, हर एक टीचर अपने आप में एक अनोखा है, हर टीचर के पास अपना एक पोटेंशियल है। जो हमारे अंदर, मैं टीचर से ही कहना चाहूंगा, जो आपके अंदर है उसका रिफ्लेक्शन आपके बच्चों में आना चाहिए। दूसरी बात सर, जो आपने मॉडल की बात कही, तो जो हमारे साइंस के जो चैप्टर्स हैं, तो मैं प्रत्येक चैप्टर पर समझिए सब मैंने रिसर्च कर रखा है कि पहला चैप्टर को अगर हमको लाइट का चैप्टर पढ़ाना है तो उसके रिफ्लेक्शन को दिखाने के लिए, उसके रिफ्लेक्शन को दिखाने के लिए, एंगल को दिखाने के लिए हमको कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट, कौन कौन से इनोवेशन, कौन क्या हम ऐसा करें कि जो बच्चों को उसके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो उसके लिए मैं सोशल मीडिया के द्वारा भी, अन्य टीचर के माध्यम से भी, और स्वयं मैं क्या करूं कि जो बच्चे को वह चीजें ग्राह हो जाए, बच्चे को वह चीज समझ में आ जाए, तो इसके लिए मैं घर पर भी जो हमारा खाली टाइम होता है, जिसको हम लोग कर लिया जाए कि हम जहां घूमने के लिए कहीं जाते हैं, तो मैं अपने उस समय को बच्चों के लिए टीएलएम यानी टीसी लर्निंग मटेरियल मॉडल्स ये तैयार घर पे करता हूँ और ले जा करके कभी स्कूल में ही तैयार करता हूँ और बच्चों के बीच में उसके परोसने का काम करता हूँ, जिससे बच्चों को वो ज्यादा समझ में आए। क्योंकि किसी चीज को अगर हम टीएलएम के द्वारा या क्यूटीटी के द्वारा किसी बच्चे को कोई चीज हम समझाने का प्रयास करते हैं तो वह उसकी मेमोरी जो होती है लॉन्ग टर्म मेमोरी में चेंज हो जाती है और लंबे समय तक वो चीजें याद रहती है, किसी चीज को जोड़ा जाता है। तो बच्चों का इन्वॉल्वमेंट हमारे लर्निंग में हो, उनका अधिगम ज्यादा से ज्यादा हो, इसके लिए मैं एक्स्ट्रा जो अपना घर का काम, घर का जो मेरा समय है, उन बच्चों के लिए मैं कुछ करने के लिए, कुछ अच्छा करने के लिए प्रयास करता हूँ। और सर,
0: आप कभी बोर नहीं हो जाते हैं इतना प्रयास करते हुए? कभी मायूस नहीं होते हैं कि अरे इस स्टूडेंट ने इतना काम किया लेकिन ये उतना आगे नहीं बढ़ पाया, या कुछ कभी ऐसा महसूस किया आपने?
1: नहीं सर, ये हम कह रहे हैं कि अगर हमको टेस्ट ट्यूब के बारे में कोई हम प्रयोग करा रहे हैं, मान लीजिए हमने कई एसिड और बेस का कोई प्रयोग कराया, तो हो सकता है कि कुछ बच्चे ऐसे हों जो इस चीज को न समझ पाए, लेकिन कम से कम एसिड का नाम तो सुना, वह परखनली तो जाना, उसके नाम को तो जाना, कौन बेस है ये तो जाना है। हर बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है लेकिन झलझलाहट नहीं, क्योंकि हर एक बच्चे का जो लेवल है एक जैसा नहीं है, हर एक बच्चा अपने आप में एक अनोखा बच्चा है, तो हर एक बच्चा सीख सकता है। उस बच्चे को हम कैसे सिखाए, उसका कि हमने जिसके ऊपर जो मेथड का प्रयोग किया था दूसरे बच्चे के ऊपर ना हो, यश के ऊपर मैंने ये प्रयोग करके दिखा, बी वाला हमारा नहीं समझ पा रहा है, तो हमको उस लेवल पे हमको काम करना होगा, चाहे वो ड्रामा हो, चाहे वो हमारा प्रोजेक्ट वर्क हो, चाहे वो आईसीटी हो, चाहे तमाम जो तरह की जो विधियां हो, चाहे एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग हो, वो सब मैं करने का प्रयास करता हूँ सर।
0: और आपके इन्हीं प्रयासों को देखते हुए और समझते हुए, न केवल उत्तर प्रदेश सरकार ने आपको, मतलब अपने राज्य का श्रेष्ठ शिक्षक घोषित किया 2019 में, लेकिन 2022 में पूरे राष्ट्र के उत्तम शिक्षकों में से एक शिक्षक आप बने और आपको भारत की राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी ने 2022 में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया। ये न केवल सभी शिक्षकों के लिए गौरव की बात है, लेकिन स्पेशली जो शिक्षक आपके साथ रहते हैं, आपके विद्यालय में आपके साथ काम करते हैं, उनके लिए भी बहुत बड़ा गौरव का समय रहा होगा। आपको पर्सनली वो समय कैसा लगा जब राष्ट्रपति जी से आप सम्मानित हो रहे थे?
1: बहुत अच्छा लगा सर, ये एक हर टीचर का एक सपना होता है कि हम देश के सर्वोच्च पुरस्कार को हासिल करें, और एक जिम्मेदारी भी महसूस हो रही थी कि हम हमारी जिम्मेदारियां, हर एक पुरस्कार एक जिम्मेदारियों को लेकर आता है, उसके पीछे एक जिम्मेदारियां छुपी रहती है, समाज उससे ज्यादा आपसे और ज्यादा अपेक्षा करता है कि आप समाज के लिए और बेहतर करेंगे। तो मैं भी अपने आप में ये महसूस करता हूँ कि हमारी जिम्मेदारियां जितनी एक दायरे में थी, हमारी जिम्मेदारियां और बढ़ गई हैं।

0: सीमित हो गई हैं और हमको और बेहतर करना चाहिए। तो वो एक पल था जो मैं जीवन में कभी भूल नहीं पाऊंगा और उस जिम्मेदारी को मैं 100% जितना अपना मतलब मैं तो अपना जीवन पूरा लगा रखा है अपने बच्चों के लिए कि मेरा जीवन न्यौछावर है उन बच्चों के लिए, तो वो मैं प्रयास कर रहा हूँ और उसमें मैं सफलता भी मैं पा रहा हूँ क्योंकि समुदाय का भी सहयोग, बच्चों के माता पिता हमसे काफी प्रेरित हैं। और यही नहीं, जब हमारे स्कूलों में 22 गांव के जब बच्चे पढ़ने आ रहे हैं तो ही मेरा एक प्रमाण है सर।
1: और जब आप पूरे भारत मतलब जैसे आपके विद्यालय में ही मैं कहूंगा या आपके एक छोटे से क्लास में ही पूरा भारत आपको देखने को मिलेगा, कोई बच्चा किसी और धर्म से होगा, हर प्रकार के धर्म के बच्चे होंगे, हर प्रकार की भाषा के बच्चे होंगे, हर प्रकार के रीति रिवाज को जानने समझने निभाने वाले बच्चे होंगे, तो एक छोटा सा भारत तो आपके विद्यालय में ही होता है। आपको और आपने एक शिक्षक होने के नाते भारत के बारे में जितनी बातें आप जानते समझते और पढ़ाते हैं इतना शायद ही एक आम व्यक्ति करता होगा। आपको क्या लगता है कि पूरे भारत को भारत बनाने वाली कौन सी एक बात है जो पूरे भारत को जोड़ती है, भारत को भारत बनाती है? भारत में विविधता बहुत है लेकिन
0: हमारे अंदर
1: करने वाली बात कौन सी है?
0: हमारे अंदर डाइवर्सिटी है, बस इंसानियत, ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी इज द एवरीथिंग, मानवता, इंसानियत, बस इसके अलावा और कुछ नहीं। एक शब्द नहीं बोलना चाहूंगा, प्रत्येक व्यक्ति के अंदर इंसानियत होनी चाहिए, उसके अंदर मानवता होनी चाहिए, ह्यूमैनिटी होनी चाहिए, उसके अंदर काइंडनेस होनी चाहिए, उसके अंदर ये होना चाहिए कि मेरे सामने जो बच्चा, मैं ये जो सोचता हूँ कि मेरे सामने जो चटाई पे बच्चा बैठा हुआ है वही मेरा ईश्वर है, क्योंकि उसकी वजह से मेरे घर में रोजी रोटी आती है, उसके वजह से मेरा संदेह जो है गुलजार होता है, उसके वजह से मुझे आबो हवा मिलती है, वो बच्चा ही मेरे लिए मेरे सामने देवतुल्य है। तो ये चीजें होनी चाहिए कि ह्यूमैनिटी, कोई किसी भी रिलीजन का हो, कोई किसी भी मजहब का हो, कोई किसी भी जात पात का हो, ये माने नहीं रखता है, इंसानियत है। इंसानियत से बड़ा कोई मजहब नहीं, इंसानियत से बड़ा कोई इस दुनिया में चीज नहीं। तो हर एक इंसान से इंसान मोहब्बत करे। जब हम लोग मुसाफा करते हाथ मिलाते हैं ना, जब इंसान इंसान से गले मिलता है, इंसान हाथ मिलाता है ना, तो उससे गुनाह झड़ते हैं और ऊपर वाला भी देख करके ना बड़ा अपने आप को खुश होता है कि मैंने इंसान को बनाया, ऐसे मखलूक को बनाया जिसको दुनिया में सबसे ज्यादा अकलमंद मैंने इंसान को बनाया। तो हर एक व्यक्ति के अंदर इंसानियत, और ये इंसानियत है जो हमारी इस मोहब्बत को, इस हमारे भारत वर्ष को, हिंदुस्तान को, हमारे भारत को महान बनाती है।
1: जहाँ आपने विविधता की बात की, भारत की विविधताओं के बारे में लोगों को पूछा जाए तो वो बहुत बहुत समझ रखते हैं, जानते हैं कितनी विविधताएं हैं, लेकिन ये जो आपने बात कही कि जो इंसानियत है वो पूरे भारत को एक करता है, कहीं ना कहीं आज के समाज में आपको लगता है वो इंसानियत थोड़ा सा धूमिल होता जा रहा है, लोग उस पर इतना गौर नहीं कर रहे हैं, या आपको लगता है कि आज भी वो इंसानियत कायम है? क्या लगता है आपको?
0: मामूली लोग हैं जो इंसानियत को दिलों से तोड़ रहे हैं, उनकी संख्या बहुत कम है, लेकिन अभी भी हमारे अंदर जो ताशीर है इस मिट्टी में, इस भारतवर्ष में, जो इखलास है, जो मोहब्बत है, जो भाईचारगी है, वो कहीं नहीं है, उनकी संख्या बहुत कम है। अभी भी हमारे अंदर वो सब चीजें हैं। मैं बताना चाहूंगा कि दीपावली के दिन मैं अपने जाति स्कूल को सजाता हूँ और पूरे ग्रामवासी आकर के स्कूल को अपने अपने घर से एक दिए लाते हैं। उस दिन पूरे गाँव में सबसे बेहतर जो भवन दिखाई देता है वो मेरा स्कूल दिखाई देता है। होली के दिन हम जाकर के उन बच्चियों के साथ होली खेलते हैं, अपने यहाँ गांव में मैं जाकर अपने दोस्तों से मिलता हूँ। ईद के दिन वो मेरे घर आते हैं, शिवैया खाते हैं। तो ये मोहब्बत बहुत जगहों पे है, बहुत उनकी संख्या मामूली है जो एक दिलों से तोड़ने का काम करते हैं, वो चंद लोग हैं, उनकी मुट्ठी भर है, उनकी कुछ नहीं होगा।
1: ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी जो आपने कहा कि जो नकारात्मक तत्व है वो बहुत कम है, सकारात्मक तत्व ज्यादा है, लेकिन शोर जो है नकारात्मक तत्वों का इतना ज्यादा है कि जो संगीत है सकारात्मक तत्वों का वो थोड़ा सा धूमिल पड़ जाता है। तो शायद सकारात्मक तत्वों को या सकारात्मक गतिविधियों के संगीत को और जोर शोर से गाना होगा, उसको और जोर शोर से मनाना, सेलिब्रेट करना होगा, जिससे कि लोगों को लगे कि नहीं, भले कुछ बातें नेगेटिव हैं लेकिन हमारी पॉजिटिविटी जो है वो हमको रियली स्ट्रांग बनाती है। खुशी जी, मुझे आपसे एक और सवाल पूछना था। आप जब थक जाते हैं और

0: आप जब बच्चों के साथ होते हैं या आपके रोजमर्रा के जीवन में घर गृहस्थी स्कूल इन सब से जब आप थक जाते हैं तो आप खुद को आराम या प्रोत्साहन या शक्ति भरने के लिए क्या करते हैं?
1: जितनी किताबें स्कूल में रखी हुई हैं सर उससे कई गुना किताबें मैं घर में रखा हूँ और प्रत्येक क्लास के हमारे बुक्स स्कूल में अवेलेबल घर में भी है, लाइब्रेरी बना रखा हूँ मैंने और किताबों को निकालता हूँ और मुझे अगले दिन क्या करना है, अगले दिन किस चैप्टर कैसे पढ़ाना है उसकी योजनाएं बनाता हूँ, लेसन प्लान बनाता हूँ, उसकी रणनीतियां तय करता हूँ और मुझे उसमें रमने में मजा आता है। ड्राइंग बनाता हूँ अपने आप को खुश करने के लिए, ये सब चीजें मुझे अच्छा लगती है। यानी बच्चों के लिए मुझे सोचना है, बच्चों को कैसे भला हमारा हो, हमारा क्लास कितना स्मार्ट हो, स्कूल हमारा कितना अपडेट हो, इसके लिए हमेशा मैं प्रयास करता हूँ और मैं कहता हूँ कि लगातार कोई मोटिवेट नहीं सकता है क्योंकि उसका भी एक कारण है कि लगातार आदमी मोटिवेशन में नहीं रह सकता है। लेकिन उन बच्चों के चेहरों को याद करके, उन बच्चों के भावनाओं को याद करके, बच्चों के लिए जीवन में उनको आगे कैसे बढ़ाया जाए इनको सोच करके, अपने स्कूल के अतिरिक्त टाइम में अपने घर में उनके लिए योजनाएं बनाना, उनके लिए कुछ तैयार करना, यह मेरा रोजमर्रा का काम है। मैं बताना चाहूंगा कि लास्ट ईयर में यानी पांच साल में लास्ट ईयर मैंने केवल 5 CL लिया था सर। एक इम्प्लाई को एक साल में 13 छुट्टियां मिलती है, 12 छुट्टियां मिलती है, लेकिन पिछले साल मैं केवल 3 या 4 छुट्टी लिया था, 5 साल के बाद मैं लिया था। इस साल मैंने केवल अभी 1 CL केवल लिया है, पूरा CL बचा हुआ है मेरा। इसका वजह ये भी हो सकता है कि मैं घर के बहुत करीब में स्कूल मेरा है, 2 से 3 किलोमीटर पे है, अपना काम नहीं होता आपके स्कूल चले जाना, तो ये भी कारण हो सकता है। लेकिन कम से कम अब ये रहता है कि हम बच्चों को ज्यादा ज्यादा उपलब्ध हों, ज्यादा ज्यादा बच्चों के बीच में रहे जिससे हमारे जो गरीब तबके के बच्चे हैं उनका ज्यादा ज्यादा लाभ हो सके। सर
0: मैं सोचता हूँ कि आज जो भी इन उद्गारों को सुन रहे हैं, आपकी बातों को सुन रहे हैं, चाहे वो शिक्षक हो या नहीं हो, उन्हें अपने देश पे और अपने भविष्य पे जरूर बहुत ज्यादा गर्व और भरोसा होने लगेगा क्योंकि हमारी नींव को गढ़ने वाले जो मूर्तिकार हैं या शिल्पकार हैं वो आपके जैसे लोग हैं जो समझते हैं कि खुद का ध्यान रखना भी बहुत ही जरूरी है अगर आप दूसरों का भला करना चाहते हैं। इसलिए खुद को रचनात्मकता के द्वारा या जैसे आपने कहा कि आप ड्राइंग करते हैं या पढ़ते हैं या रम जाते हैं अपने सकारात्मक चीजों में, ये बहुत बड़ी एक आपने बात कही है। लोग खुद को परेशानियों से अलग करने के लिए कई प्रकार के व्यसनों में चले जाते हैं, कितनी ही गलत संगतियों और गलत कर्मों में फंस जाते हैं, लेकिन जो आपने बात कही कि अपने कर्म में रम जाना और अपने छोटी छोटी विधाओं में रम जाना, इसमें ही व्यक्ति को रिफ्रेशमेंट या कहें एक खुली सांस लेने का अनुभव मिलता है और उससे ही फिर उसमें वो ताजगी आ जाती है कि वो दोबारा और भी बहुत अच्छे काम कर सकते हैं। जो स्टूडेंट्स आपके पास पढ़ते हैं उनके परिवारों में कई लोग हैं जो व्यसनों से जुड़े हुए हैं और व्यसनों के पीछे बहुत ज्यादा पैसा लगा देते हैं। कभी कभी आपने भी पकड़ा होगा स्टूडेंट्स को जो किशोरावस्था में थोड़ा एक्सपेरिमेंटिव होने के चक्कर में या कुछ नया करना है, कुछ ट्राई करना है और इन तरीके की विचारधाराओं के चक्कर में आकर के वो भी व्यसनों का शिकार हो जाते हैं। आप ऐसे में क्या करते हैं जिससे उन बच्चों को इस चक्रव्यूह से निकाला जा सके और दूसरे बच्चों को सतर्क करने के लिए आप क्या करते हैं?
1: सर ये जो किशोरावस्था की होता है इसमें जो शास्त्री है कृष्ण शास्त्री उन्होंने कहा है कि दिस इज द एज ऑफ स्ट्रॉन्ग, स्टेनहॉल ने कहा दिस इज द एज ऑफ स्ट्रॉन्ग, दिस इज एज ऑफ स्ट्रेस, दिस इज द एज ऑफ स्ट्रगल। यानी यह तूफान की अवस्था है, उफान की अवस्था है, संघर्ष की अवस्था है, पुष्कर गुजरने की अवस्था है। तो जब भी मैं क्लास में जाता हूँ तो बच्चों के अंदर ये भाव रखता हूँ कि इस अवस्था में अगर जिस एज में आप हैं जिसको तूफान की अवस्था कहा गया है, इस एज में अगर सकारात्मक चीजों में अपनी ऊर्जा को लगा दिए तो इस कायनात की इस दुनिया की कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको आपको पाने से कोई रोक सकता है। तो अब आपको कैसे सोचना है कि आने वाले समय में आपको जिंदगी जो गुजारनी है, 60 साल की जिंदगी है, तो उसमें 60 साल जिंदगी में आपको खुश रहना है या मामूली से जो चंद भर का जो खुशी है उसमें आपको खुश रहना है, इसमें क्या आप

0: फैसला करना है। मैं जिस बीच में बच्चों से बात रखता हूँ, मैं कहता हूँ कि ये बताओ कि तुम्हारे माता पिता तुमको जो है 20, अगर तुम्हारी एज 20 साल की है तो तुमको माता पिता 20 साल से तुमको जान रहे हैं, और जब तुम पैदा हुए होगे ना तो एक माँ को 22 हड्डी के टूटने का दर्द होता है, इसके बाद भी वो माँ तुमको जना करती है जानते हुए कि मुझे बहुत पेन होगा। तो तुम्हारे जीवन में अगर कोई कुछ समय के लिए आ गया, 2-4 घंटे के लिए, 2-4 दिन के लिए आ गया, तो वह आपके लिए बेहतर है या वह बेहतर है जो आपके लिए 22 साल से 20 साल से आपको परवरिश किया जो जानता है। इसलिए माता पिता का आबरू रखना, उनका ख्याल रखना और उनका जो है सपना पूरा करना, ये आपका उद्जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। तो गलत रास्तों पे न जा करके हमें ऐसे रास्ते को चुनना चाहिए जो हमारे जीवन को मार्ग को प्रशस्त करे, आसान करे, हमारे जीवन में खुशहालियां लाए, रौनक लाए। तो समय समय पर सर उनका मोटिवेशन करना, और जो अगर कोई लड़का इस गलती में पकड़ा गया है तो उसको काउंसलिंग करना, उनको और मतलब मोटिवेट करना, उनके पेरेंट्स को भी समझाना कि इनके ऊपर थोड़ा सा हम लोग वाचिंग करें। तो ये हमारा प्रयास रहता है सर, क्योंकि हम बातों से किसी को हम जीत सकते हैं, बातों से हम किसी को मोटिवेट करते हैं। तो समय समय पर इस तरह के जो हमारे लेक्चर्स हैं बच्चों के बीच में रखे जाते हैं, उनको गलत रास्ते से जाने से लिए रोकने का प्रयास किया जाता है। अब तक इस तरह की कोई घटना धीरे भी अभी आई नहीं है सर।
1: सर ये जो आपने कहा कि जो ये युवावस्था है या ये जो किशोरावस्था है, इसमें स्ट्रगल भी है, इसमें शोर भी है, इसमें लेकिन वो शक्ति भी है कि आप सही दिशा को अगर पकड़ लेते हैं तो आपको कोई नहीं रोक सकता। और दोस्तों जो भी आप सुन रहे हैं, आप में से जो भी युवा हैं, किशोरावस्था में हैं, आपने अगर गौर किया होगा, चाहे भारत की आजादी हो या कोई भी बड़े से बड़ा मूवमेंट हो, आंदोलन हो, उसको चलाने वाले, आगे बढ़ाने वाले यंग लोग ही थे। आपने देखा होगा भारत का सीना गौरव से भरने वाला जो स्पोर्ट्समैन टीम है, चाहे वो ओलंपिक्स हो या एशियन गेम्स हो या क्रिकेट हो या कोई भी स्पोर्ट्समैन हो, वो अपनी युवावस्था में भारत को जितना गौरवान्वित कर सकते हैं वो कभी नहीं कर सकते अगर वो किसी न किसी व्यसन के शिकार होते हैं। तो आज खुर्शीद अहमद जी, जो हमारे भारत के श्रेष्ठतम शिक्षकों में से एक हैं, उनका जो ये संदेश है साथियों, आप जरूर अपने दिल में संजो के रखना। अपने आसपास में अगर आपके कोई ऐसे दोस्त यार बंधु हैं जिनको आप जानते हैं कि वो व्यसनों के शिकार हैं या उससे छूटना चाहते लेकिन छूट नहीं पा रहे हैं, तो कभी भी मदद के लिए अपने आसपास में जो भी मददगार लोग हैं, जो बड़े बुजुर्ग हैं या अनुभवी हैं, उनसे बात करने से हिचकिएगा नहीं, क्योंकि ये व्यसनों से अगर आप निजात पा सकते हैं तो आप इतने आत्मविश्वासी, आत्मनिर्भर बन जाएंगे कि आप कुछ भी कर सकते हैं। चलिए चलते चलते आज के इस एपिसोड को हम विराम देने वाले हैं, लेकिन विराम देने के पहले हम खुर्शीद अहमद जी से एक रैपिड फायर राउंड खेलना चाहेंगे। खुर्शीद जी, आपसे एक एक सवाल पूछा जाएगा जिसका जवाब आपको एक शब्द में या एक वाक्य में देना होगा, तो क्या आप रेडी हैं?
0: जी जी। ऐसा ऐसा।
1: सबसे पहला सवाल, शिक्षा क्या है?
0: जो आपके जीवन को बदले, आपके व्यवहार में परिवर्तन लाए, वही शिक्षा है।
1: और जीवन क्या है?
0: जीवन इसको ऐसे कह सकते हैं कि जीवन वह है जो दूसरे के जीवन दे सके, यानी जो किसी को मायूस न करे, अपने कार्यों से, अपने विचारों से, अपने वाणी से वह किसी को जो है दुख न पहुंचाए, यही हमारा जीवन है।
1: जीवन तब जीवन कहलाएगा जब वो किसी को मायूस न करे, किसी को दुख न दे। बहुत सुंदर।
0: दुख न दे, यस यस, वो जीवन है, अन्यथा वो तो बेकार पड़ा हुआ मुर्दा है, वो जिसके अंदर इंसानियत नहीं, वो मुर्दा है, वो लाइफ नहीं है वो।
1: बहुत सुंदर। इंसानियत कही आपने, इंसानियत क्या है?
0: इंसानियत, इंसानियत तो जो इंसान को इंसान से मिला है, इंसान के अंदर जो दरार पैदा न करे, इंसान मखलूक उसके अंदर वो भाव आए कि जिसके अंदर वो अपने भाई से मिले तो वो वाली चीजें आ जाए, उसके अंदर काइंडनेस हो, जिसके अंदर वो लगे कि सब चीज दुनिया की जितनी चीजें हैं या हमारे लिए भी है, पूरे इंसान के लिए है, मेरा तेरा नहीं, बस सबके लिए, वही इंसानियत है। जहाँ अपने की बात ना हो, अहम की बात ना हो, जैसे साधु जी थे तो गए, मैं कुछ बोलना चाहूँ सर, एक साधु जी थे तो वो मंदिर जा रहे थे, तो रास्ते में एक व्यक्ति मिला।

0: तो पूछा कि ये कहाँ जा रहे हैं, ये क्या लिए हाथ में? हाँ तो ये मैं लड्डू चढ़ाने जा रहा हूँ, ये लड्डू है, ये मेरा है। और जब उधर से लौट के आए तो कहे ये क्या है, ये तो प्रसाद है। अब ये मेरा जो शब्द था वो हट गया। तो यही चीज है इंसानियत, जो मेरा है जो आ रहा अंदर से आवाज वो हट जाना चाहिए इंसानियत में।
1: एक और चीज इसमें मुझे ये जानना था, जैसे आपने कहा कि दरार न पैदा करे और काइंडनेस होना चाहिए जीवन में, ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि उदारता जो है वो दरार को खत्म कर देता है। आपके परिभाषा में शांति क्या है?
0: शांति जहाँ पर आपके अंदर न दुख हो न आपके अंदर चुके हो, दोनों के बीच की स्थिति हो, दोनों के बीच की जो स्थिति हो उसको मैं शांति कहूंगा। जहाँ पर आपको ये लगे कि ये जितनी भी चीजें मैं देख रहा हूँ, जितनी भी चीजें हैं, ये इंसानियत के लिए बना हुआ है, जहाँ दुख सुख कहीं नहीं है वहीं शांति है। जहाँ अगर हम दुख में बहुत ज्यादा डूबे हुए हैं तभी शांति नहीं है। जब बहुत ज्यादा हम जो है सुख में है, अपने आप को भोग विलासिता में अपने आप को व्याप्त किए हुए हैं, तभी भी शांति नहीं है। दोनों अशांत है सर,
1: मतलब बैलेंस हो, संतुलन है तो वही शांति है।

0: ये अगर व्यक्ति समझ जाए कि भाई इसमें दिखावा है या ये रियाकारी है, तो वो अपने आप ही उस काम को और अच्छे से करने का, और जैसे आपने बताया कि इनकॉग्निटो गुप्त रीति करना पड़ेगा कि आप एक हाथ से सेवा करें तो दूसरे हाथ को पता भी नहीं चल पाए कि ये सेवा किया जा रहा है। बहुत सुंदर। अगले चार या पांच सवाल जो है बहुत शॉर्ट है, जिसका जवाब आपको एक शब्द में देना है या आधे वाक्य में देना है। शिक्षक कौन है?
1: शिक्षक अपने कार्य के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा जो हमारे समाज को बदलने का प्रयास करता है, वो है शिक्षक।
0: न केवल कार्य लेकिन व्यवहार के द्वारा भी जो समाज को बदलने का प्रयास करता है।
1: हाँ, इसीलिए मैं दोनों लाइन में दोनों शब्द बोला, कार्य और व्यवहार के द्वारा।
0: बहुत सुंदर। नॉट ओनली टीचिंग बट ऑल्सो प्रीचिंग, मतलब अपने व्यवहार
1: टीचर ही क्लास रूम तक टीचर नहीं है, जब वो रोड पे जाए वहाँ भी टीचर है। उससे समाज मोटिवेट होता है, समाज उससे सीखता है, उसको आदर्श मानता है, उसका आइडियल होता है वो टीचर, वो व्यक्ति टीचर वो टीचर है।
0: बहुत सुंदर। अध्यापन या शिक्षण केवल एक व्यवसाय नहीं है जो आप चार दीवारी के अंदर करते हैं, अध्यापन या शिक्षण जीवन जीने की एक विधा है जो आप स्कूल के अंदर भी करते हैं और स्कूल के बाहर भी करते हैं। बहुत सुंदर। विद्यार्थी कौन है?
1: विद्यार्थी जो किसी भी व्यक्ति से कुछ सीखने के लिए ललायत रहता है या कुछ वो सीखने के लिए आतुर होता है, वह विद्यार्थी एक क्लास का व्यक्ति भी हो सकता है और समाज का एक व्यक्ति हो सकता है, वह छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, वह हमारा स्टूडेंट। यानी हम ये कह रहे हैं दूसरे शब्दों में कि हमारा नेचर भी हमारा टीचर है, क्योंकि नेचर हमको ये सिखाती है कि हमको इक्विटी देना है, समानता देना है। कभी फूल ये नहीं कहता है कि मैं आपके लिए खुशबू दूंगा, फलाह के लिए खुशबू नहीं दूंगा। तो विद्यार्थी वही है कि जो उस सीखने के लिए और आतुर हो, उसके अंदर यह भाव हो कि मैं फला व्यक्ति जो मुझे कुछ बता रहा है।
0: आखिरी सवाल ये होगा कि भारत क्या है?
1: भारत हमारा एक, जहाँ हम हमारी मातृभूमि, जहाँ हम अपने वजूद को पाया, जहाँ हमने अपने इस जीवन के जीना सीखा, वह है भारत। भारत संपूर्ण हमारा जो ये जो लोग है, इसे हाँ हम धरातल पर रहते हैं, वह सब मिलकर भारत को बनाते हैं। भारत केवल एक नहीं है, भारत कोई दो नहीं है, ये यहाँ धरात पर रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति भारत है। और यही भाव सबके अंदर होना चाहिए कि मैं भारत, फला भारत है, फला भारत है। इसलिए अपने जीवन में कुछ ऐसा हम काम करें जिससे हर एक व्यक्ति अपने आप को प्राउड फील करे और उससे अन्य व्यक्ति जी हो उसे मोटिवेट हो, वो है भारत।
0: ये जो आपने बात कही कि मैं भी भारत हूँ, आप भी भारत हैं, ये अपने आप में बहुत बहुत शक्तिशाली वाक्य है दोस्तों। अगर आप सुन रहे हैं, भारत किसी जमीन के टुकड़े का नाम नहीं है, भारत उस जमीन के टुकड़े पर रहने वाले भारतीयता को धारण करने वाले लोगों का नाम भारत है। तो जैसे खुर्शीद अहमद जी ने कहा कि हम सब भारत हैं, इसलिए हम सबकी जिम्मेदारी है, जवाबदारी है कि भारत को श्रेष्ठ बनाना, मतलब खुद को श्रेष्ठ बनाना। अगर मैं और आप अपने पे काम करें और अपने को, मैं अपना ख्याल रखूं, अपने को बहुत श्रेष्ठ बनाऊं, आप अपना ख्याल रखें, अपने को श्रेष्ठ बनाएं और इस यात्रा में एक दूसरे के सहयोगी बने, तो भारत अपने आप ही गौरवान्वित हो जाएगा, भारत अपने आप ही उत्कृष्टतम देश बन जाएगा। खुर्शीद अहमद जी कौन है?
1: खुर्शीद अहमद एक मानव जिसके अंदर वो भाव है कि सब लोग एक हैं, सब समान हैं, सब दुनिया में आए हैं तो एक इंसान बन के आए हैं और इंसानियत को ही निभा के दुनिया से विदा होना है, वो है खुर्शीद। खुर्शीद का मतलब होता है आफ्ताब, राइजिंग सन, उगता हुआ सूरज, और सूरज किसी को अंधकार नहीं देता, उजाला देता है। और वही काम मुझे ईश्वर ने, हमारे समाज ने, हमारे इस विभाग ने दिया है, जो बच्चों के जीवन में उजाला करने का काम मैं कर रहा हूँ, वो है खुर्शीद।
0: तो खुर्शीद का मतलब होता है उगता हुआ सूरज जो सबको उजाला देता है। और विद्या के लिए तो दोस्तों हमने ये सुना ही है, कहा जाता है असतोमा सदगमया, तमसोमा ज्योतिर्गमया,
1: ज्योतिर्गमया,
0: जो हमें तमस या अंधेरे से उजाले की ओर लेके जाता है, वो खुर्शीद न केवल एक खुर्शीद अहमद जी है जिनसे हम बात कर रहे हैं, लेकिन वो खुर्शीद आप भी हैं, वो खुर्शीद मैं भी हूँ, वो खुर्शीद हर वो व्यक्ति है जो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से

0: उलझे हुए व्यक्ति को कोई ना कोई सलूशन या कोई ना कोई मदद पहुंचाता है, वो व्यक्ति भी खुर्शीद है। खुर्शीद अहमद जी ने अपने इस परिभाषा से न केवल मेरा दिन बना दिया दोस्तों, लेकिन मैं समझता हूँ जो भी आज आप सुन रहे हैं आप भी बहुत खुश हो रहे होंगे कि मैं भी खुर्शीद हूँ, आप भी खुर्शीद हैं। और हम सबकी जो जिम्मेवारी है, जो जवाबदारी है, वो ये है कि हम अपने जीवन में, अपने जीवन के द्वारा औरों के जीवन में प्रकाश, उजाला या नूर बरसाते रहे। खुर्शीद अहमद जी, आपसे बात करते हुए बड़ा गर्व फील हुआ। ऐसा अनुभव हुआ कि भारत का जो नींव है उसको गढ़ने वाले जो रचनाकार हैं, आपके जैसे ही होनहार शिक्षक और आपके जैसे ही मार्ग प्रदर्शक लोग हैं, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप भारत के उच्चतम श्रेष्ठ शिक्षकों में से एक हैं और मुझे लगता है आपकी प्रेरणा से बहुत सारे शिक्षक आपके जैसे और बनेंगे। आपका रेडियो मधुबन के स्टूडियो में आने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: सर, मैं भी आपका बहुत आभारी हूँ और आपने एक मंच दिया अपनी बात को रखने के लिए। इसके लिए मैं आपके तरफ से सभी दर्शकों का पुनः अभिवादन मैं स्वीकार करता हूँ, उन्हें नमस्कार करता हूँ, उन्हें प्रणाम करता हूँ। और मैं विशेष करके आपकी इस कार्यक्रम में मुझे आहूत करने के लिए मैम का, आपका मैं हृदय से आभार करता हूँ। सर नमस्कार
0: जी। खुर्शीद जी, हम आपसे फिर से कभी दोबारा बातचीत करना चाहेंगे और अगली बार केवल आपसे ही नहीं, आपके विद्यार्थियों से भी बातचीत करना चाहेंगे। किसी और प्रोग्राम के जरिए डेफिनेटली हम आपसे जुड़ेंगे, लेकिन आज हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके उज्जवल भविष्य के लिए खुर्शीद जी।
1: धन्यवाद सर, धन्यवाद सर।
0: तो दोस्तों, 107.8 FM रेडियो मधुबन पे आप सुन रहे थे अब तक यशस्वी भारत कार्यक्रम, जिसमें उत्तर प्रदेश के सहवा जिले के एक अध्यापक जिनका नाम खुर्शीद अहमद जी है, उन्होंने पूरे राष्ट्र पटल पे अपना नाम अपने काम के जरिए उजागर किया है। वो 2022 के राष्ट्रपति सम्मान से सम्मानित श्रेष्ठ शिक्षकों में से एक है। खुर्शीद अहमद जी ने अपने जीवन के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा, अपने कार्यों के द्वारा अपने बच्चों को न केवल स्वावलंबी बनाया, लेकिन उनके अंदर व्यसनों से बचे रहना, एक दूसरे का सहयोग करना, सबके प्रति कैसे सम्मान की दृष्टि बनाए रखी जा सके और एक अच्छा इंसान कैसे बन सकते हैं, इसके बारे में उन्होंने अपने पूरे जीवन को न्योछावर किया हुआ है। दोस्तों, मैं और आप खुद को बहुत सुरक्षित महसूस करते हैं क्योंकि हमारा भविष्य बड़ा सुरक्षित है। अगर खुर्शीद अहमद जी जैसे शिक्षक हमारे बच्चों को हमारे स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, तो इसलिए दोस्तों आप भी एक खुर्शीद बन सकते हैं, एक उजाले का स्रोत बन सकते हैं, अपने आसपास के लोगों के जीवन में उजाला ला सकते हैं। जी हाँ, और याद रखिएगा 107.8 रेडियो मधुबन आप सुनते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, एक दूसरे के जीवन में उजाला फैलाते रहिएगा। एक बार दोबारा मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा एक नए मेहमान के साथ यशस्वी भारत कार्यक्रम के एक और एपिसोड में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच खुर्शीद जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा।
2: पावसाच्या थेंबात दडलेलं जुनं प्रेम, आठवणींचा ओलावा। कधी कधी विरहातलं मौन सुद्धा गाण्यापेक्षा जास्त बोलतं।
3: अश्विनी ये ना,
2: जीवन म्हणजे चालत राहणं, गाणं, हसणं आणि स्वप्न पाहणं।
4: वाऱ्यावरती गंध पसरला ना ते मनाचे,
2: आईचा आवाज म्हणजे मनाला शांती मिळवण्याचं संगीत। या सगळ्यांची सांगड कुठे बरं घातली जाते? आपल्याच पुणेरी आवाज 107.8 FM वर। आनंदी रहा, आनंद लुटा।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: छोटी छोटी बातों में अपनी एनर्जी को डिप्लीट नहीं करना, क्योंकि हम हीलर्स हैं, हम एंजल हैं, और हमारी एनर्जी का असर हमारे आसपास के लोगों पर एंड ऑफ कोर्स फिर हमारे पास जो हीलिंग के आ रहे हैं उनके ऊपर पड़ने वाला है। आई कैन नॉट अफोर्ड टू वेस्ट माई एनर्जी लाइक दिस। माई एनर्जी इज फॉर अ पर्पज ऑफ हीलिंग थाउजेंड्स ऑफ पीपल। एंड जब हम उस इंटेंशन से अपनी एनर्जी को बचाएंगे, सबसे पहले कौन बच जाएगा? हम खुद। हम काम करेंगे, काम करवाएंगे, डिसिप्लिन करेंगे, डिसिप्लिनरी एक्शन भी लेंगे, लेकिन हिले बिना। इट्स ओनली अ लाइफ स्टाइल चेंज। दीज आर लाइफ स्टाइल चेंजेस। एनर्जी लाइफ है, ये निकल जाए तो लाइफ खत्म हो जाती है।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

किसी से कट जाए हमारा भी सफर, हम पर भी जरा कर दो इनायत की नजर। खुशी से कट जाए हमारा भी सफर, खिसक जरा प्यारे नरक जरा प्यारे, खिसक जरा प्यारे नरक जरा प्यारे, जो किसी

0: अहो ऐकलं का? हो आमचा रेडिओ पुणे रे, हो आमचा रेडिओ पुणे रे।
1: स्वागत है ज्ञान चिंतन में। नमस्कार प्रिय श्रोताओं, आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम ज्ञान चिंतन, जहां हम विचारों की गहराइयों में उतरते हैं, ज्ञान के नए आयाम खोजते हैं और जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर मनन करते हैं। इस कार्यक्रम में हम दर्शन, संस्कृति, विज्ञान, समाज और आध्यात्मिकता से जुड़े विषयों पर गहन चर्चा करते हैं। हमारा उद्देश्य है आपके मन में नए विचारों का संचार करना और आपको चिंतन की एक नई दिशा देना। तो आइए ज्ञान की इस रोशनी में आगे बढ़ें और नए दृष्टिकोणों को समझें। ज्ञान चिंतन, एक नई सोच, एक नई दिशा।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। मैं नीतू जैन हमेशा की तरह आज फिर एक नया टॉपिक लेकर आ रही हूँ, जिसका नाम है मोबाइल का बढ़ता प्रभाव और इसके दुष्परिणाम। आज के डिजिटल युग में मोबाइल फोन एक आवश्यकता बन चुका है, लेकिन यह धीरे धीरे मनुष्य को अपने शिकंजे में ले रहा है। लोग बिना किसी कारण घंटों मोबाइल पर समय बिताते हैं, जिससे उनका शारीरिक, मानसिक और सामाजिक जीवन प्रभावित हो रहा है। दोस्तों, क्या वाकई हम मोबाइल के शिकंजे में फंसते जा रहे हैं? अगर हाँ, तो आइए जानें किन बिंदुओं पर अब हमें अपना ध्यान खींचना चाहिए। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और अन्य प्लेटफॉर्म पर क्या हमारा अनावश्यक समय बीत रहा है? मोबाइल गेम्स बच्चों को और युवाओं को क्या खास तौर पर अपनी गिरफ्त में ले रहे हैं? क्या रात में देर तक मोबाइल चलाने से नींद की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है? आवश्यक वीडियो रील्स में हमारा क्या समय नष्ट हो रहा है? क्या लगातार स्क्रीन पर देखने से आंखों की रोशनी कमजोर हो रही है, सिर दर्द, पीठ दर्द और मोटापा बढ़ रहा है? क्या सोशल मीडिया पर दिखाए गए दिखावटी जीवन को देखकर लोग असंतोष और तनाव महसूस करने लगे हैं? क्या मोबाइल की वजह से लोग अपने परिवार और दोस्तों से दूर होते जा रहे हैं? अगर इन सब प्रश्नों का उत्तर हाँ है, तो दोस्तों चलिए जानें हम अपने आप को मोबाइल के शिकंजे से कैसे बचा सकते हैं। मोबाइल का सीमित उपयोग करें, केवल जरूरी कामों के लिए मोबाइल का इस्तेमाल करें और स्क्रीन टाइम को नियंत्रित करें। हफ्ते में एक दिन या कुछ घंटे मोबाइल से पूरी तरह दूर रहें। अनावश्यक स्क्रॉलिंग से बचें और केवल उपयोगी जानकारी तक सीमित रहें। खेल, योग, व्यायाम, वॉक को अपना दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। सोने से एक घंटे पहले मोबाइल का इस्तेमाल बंद करें, ताकि नींद की गुणवत्ता बेहतर हो। मोबाइल की जगह असली बातचीत को प्राथमिकता दें, परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताएं। पढ़ाई, ऑफिस का काम और व्यक्तिगत विकास पर ध्यान दें। अनावश्यक वीडियो और गेम्स की बजाय ज्ञानवर्धक चीजें देखें। खाने के समय, पढ़ाई के समय और परिवार के साथ रहते समय मोबाइल से दूर रहें। आज के इस चिंतन से यह निष्कर्ष निकलता है कि मोबाइल आज की जरूरत है, लेकिन अगर इसे सही तरीके से इस्तेमाल ना किया जाए तो यह एक गंभीर लत बन जाती है। हमें स्मार्ट तरीके से मोबाइल का उपयोग करना चाहिए, ताकि यह हमारे जीवन को आसान भी बनाए और इसे जटिल और तनावपूर्ण ना बनाए। तो दोस्तों, आज के चिंतन में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नए चिंतन के साथ। बने रहे हमारे साथ पुनेरी आवाज 107.8 FM पर। धन्यवाद।
1: ज्ञान चिंतन के आज के एपिसोड में बस इतना ही। प्रिय श्रोताओं, हमें उम्मीद है कि आज का विषय आपके मन मस्तिष्क में नए विचारों का संचार करने में सफल रहा होगा। ज्ञान और चिंतन की यह यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती, बल्कि यह सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। अगले कार्यक्रम में हम एक और रोचक विषय के साथ लौटेंगे। तब तक अपने विचारों को निखारते रहें और ज्ञान की इस यात्रा को आगे बढ़ाते रहें। फिर मिलेंगे ज्ञान चिंतन में एक नई सोच, एक नई दिशा के साथ। धन्यवाद। नमस्कार।
2: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
3: उन्होंने धोखा दिया, उन्होंने मुझे नीचे खींचा, उनकी वजह से ऑफिस में मेरा नाम खराब हो गया, उनकी वजह से पूरे सर्कल में मेरा नाम खराब हो गया। वो उन्होंने किया, मैंने उनके प्रति कितना गुस्सा, कितनी नफरत, कितना हर्ट, कितनी इरिटेशन क्रिएट की, या मैंने क्षमा कर दिया, ये चॉइस किस

0: हमारे पास है। अगर कोई हमारे साथ गलत करे और बड़ा वाला गलत करे, क्या उनके लिए अच्छा सोचना पॉसिबल है?
1: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: Sunehri Awaaz 107.8 FM, World Renewal Spiritual Trust ka samudayik radio. Khush raho, khushiya baato.
1: Namaskar. Welcome to Awakening with Brahma Kumaris. Welcome, sister.
2: Om Shanti.
1: Om Shanti and welcome to Being Shakti.
2: Thank you so much.
1: Sister, aap keh rahi thi na us din. Haan. Maine pucha tha ki agar main nafrat nahi do uske badle mein ya hurt nahi ho, to aap bilkul khali bhi raho, neutral bhi raho, to kaafi hai kyunki aap apne original self pe to aa hi jaoge.
2: Right.
1: Kyunki aapka original self hai pyar aur peace and all that.
2: Right.
1: तो मैं कल ये देख रहा था कंप्यूटर, उस पर सिमिलर लाइन्स मिली मुझे. सिमिलर मतलब अपनी क्वालिटी को इसने ब्यूटीफुल कहा है. टू बी ब्यूटीफुल मीन्स टू बी योरसेल्फ. यू डोंट नीड टू बी एक्सेप्टेड बाय अदर्स, यू नीड टू एक्सेप्ट योर सेल्फ.
2: सो ब्यूटीफुल.
1: योर के बाद मैं थोड़ा सा गैप देके डैश सेल्फ कर दो. तो मेरा जो सेल्फ है, माई सेल्फ, यू नीड टू एक्सेप्ट योर सेल्फ.
2: एंड वेन यू एक्सेप्ट योर सेल्फ

0: will be beautiful.
1: Yes.
0: है ना?
1: एक और पढ़ूंगा फिर हम लोग बात करते हैं. प्लीज. माई हैप्पीनेस ग्रोज इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू माई एक्सेप्टेंस एंड इन इनवर्स प्रोपोर्शन टू माई एक्सपेक्टेशन.
0: कितने दिन से ये कर रहे हैं कि जितना लोगों से एक्सपेक्टेशन रखते गए डे बाय डे खुशी घटती गई. जितना लोगों को कितनी अच्छी लाइन है, इनवर्स प्रोपोर्शन टू माय एक्सपेक्टेशंस एंड डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू माय एक्सेप्टेंस. अब क्योंकि हम एक्सपेक्टेशंस पे ज्यादा और एक्सेप्टेंस के मोड में कम जीते हैं, फिर हैप्पीनेस की क्वांटिटी कितनी होगी नेचुरली हो गया, इक्वेशन से ही समझ में आ गया. इट इज एन इनवर्स प्रोपोर्शन. जितनी हम अपेक्षाएं रखेंगे हमारी खुशी उतनी ही घटती जाएगी. जितना हम सबको स्वीकार करते जाएंगे, एक्सेप्ट करते जाएंगे, हमारी खुशी उतनी ही बढ़ती जाएगी. और फिर उसी से वो लाइन कनेक्ट हो जाती है, जितना हम एक्सेप्ट करते जाएंगे उतना हम ब्यूटिफुल बनते जाएंगे. वी डोंट नीड टू बी एक्सेप्टेड बाय अदर पीपल. यू नो अदर पीपल शुड एक्सेप्ट मी. उसके लिए हम बहुत कुछ कर रहे हैं और सारा कुछ जो हम कर रहे हैं वो बाह्य लेवल पे है. आज बहुत सारा एक ह्यूज नंबर ऑफ यूथ ग्रुप है, स्कूल के बच्चे हैं जो ऐसी ऐसी चीजें करना शुरू कर देते हैं एक बहुत यंग एज में, सिर्फ ताकि दे विल बी एक्सेप्टेड बाय देयर फ्रेंड्स. वो चीजें वो हैं जो उनकी फैमिली वैल्यूज मैच नहीं करती, जिससे वो चीजें वो हैं जो उनके प्रिंसिपल्स मैच नहीं करते, वो खुद करना नहीं चाहते, उनको पता है वो गलत है उनके लिए, लेकिन आई वॉन्ट टू बी एक्सेप्टेड बाय माई फ्रेंड्स. चाहे वो स्मोकिंग है, ड्रिंकिंग है, रिलेशनशिप्स है, सारी चीजों में हम स्कूल में कॉलेज में हमारे आसपास के लोग वो कर रहे हैं, इसीलिए हमें भी

0: रीति से हम बहुत दूर हो जाते हैं। कई बार हम बाह्य रीति से सहन करते हैं, अंदर नहीं टॉलरेट कर रहे, हम बाहर टॉलरेट करते हैं कि किसी ने कुछ कहा हम चुप रहे, हमने जवाब नहीं दिया, हमने ऊपर से कुछ नहीं कहा, इनफैक्ट हमने ऊपर से प्यार से बात की, उन्होंने गलत व्यवहार किया लेकिन हमने तो ऊपर से अच्छी तरह से व्यवहार किया। लेकिन कई बार जो थोड़ा सा सूक्ष्म होता है चेकिंग, कि कई बार हम ये टॉलरेंस अंदर नहीं, अंडरस्टैंडिंग से नहीं, सिर्फ बाह्य रीति से कर लेते हैं कि बोला नहीं, जवाब नहीं दिया, जो उन्होंने कहा मैंने मान लिया, जो उन्होंने चाहा वो मैंने कर दिया, सब कुछ मैंने टॉलरेट किया उनके साथ। लेकिन वो कई बार ये होता है कि अंदर ही अंदर वो बातें फिर दबती जाती हैं और मन बार बार ये भी कहता है कितना सहन किया, कितना सहन किया, कितना सहन किया, मुझे ही सहन करना है, सहन करना है, सहन करना है। लेकिन वो फिर एक प्रेशर कुकर की तरह अंदर दब जाता है। ये हरेक को चेक करना है, कोई प्रेशर कुकर मेरे अंदर तो नहीं क्रिएट हो रहा है, कहीं भी, घर पे, काम पे, किसी फ्रेंड्स के साथ, मेरे अंदर कोई प्रेशर कुकर नहीं क्रिएट होना चाहिए। क्योंकि अगर क्रिएट हो रहा है तो हमारी डेस्टिनी निश्चित है कि वो एक दिन तो फटेगा। एंड वी ऑल नो कि जब प्रेशर कुकर फटता है तो द सीन इज अ वेरी अगली सीन,
1: वेरी अगली सीन।
0: वो अगली सीन मेरे जीवन में नहीं आना चाहिए कभी भी, क्योंकि वो जब आता है तो कई बार रिश्ते परमानेंटली डैमेज हो जाते हैं। इससे अच्छा है कि जब छोटी छोटी बातें आ रही हैं, देन एंड देयर वी हैव टू वर्क ऑन इट, नॉट अक्यूमुलेट। ये सहन शक्ति नहीं है, क्योंकि कई बार हमें सिखाया जाता है कर लो ना, सहन कर लो, कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लो, कोई बात नहीं। लेकिन ये सहन और एडजस्ट हमें सिखाया गया, वो अंडरस्टैंडिंग के साथ नहीं सिखाया गया। उसका मीनिंग हमें सिर्फ ये दिया गया, चुप रहो,
1: बर्दाश्त करो,
0: बर्दाश्त करो,
1: चाहे कुछ भी हो जाओ,
0: कुछ मत बोलो ऊपर से,
1: जुल्म सहो,
0: जवाब मत दो ऊपर से। ये सहन नहीं था, ये एडजस्ट नहीं था। तो ये हमें अटेंशन रखना पड़ेगा कि टॉलरेंस डजंट मीन कि अंदर सहन करके चुप कर गए, क्योंकि यही सिखाया गया, यही हम करते आए हैं और इसको हमने अच्छा समझा, सही समझा कि मैं चुप रहा ना, न्यू वी टेल आर सेल्फ सी गुड ना, मैं चुप रहा, चुप रहे, लेकिन अंदर से दबा दिया तो वो बात को अंडरस्टैंडिंग से फिनिश नहीं किया। तो एक, वो बात रिपीटेडली याद आती रहेगी, हर बार जब कोई और बात आएगी तो बैक रेफरेंस जरूर होगा, मन में बैक रेफरेंस होगा कि पिछली बार भी ऐसे किया था। तो एवरी टाइम वी विल गो थ्रू ऑल दैट पेन ऑल ओवर अगेन, क्योंकि हर बार हम प्रेजेंट सिचुएशन को, सिर्फ प्रेजेंट सिचुएशन को नहीं एड्रेस करेंगे, हम हर बार पास्ट की सारी बातों को निकालेंगे, क्योंकि हमने उसको समझ से फिनिश नहीं किया था अंदर से, हमने सिर्फ चुप करके अंदर उस बात को
1: सप्रेस
0: दबा दिया था। तो हर बार जब कोई नई बात होगी, कोई इंसिडेंट फिर होगा, वी विल ब्रिंग आउट एवरीथिंग फ्रॉम द क्लोजेट,
1: क्योंकि जितना सप्रेस किया हुआ है सारा मसाला पूरा फुल हो जाता है तो बर्स्ट हो जाता है।
0: लेकिन बर्स्ट भी सपोज दो साल बाद होगा, सपोज चार साल, बर्स्ट भी बहुत जल्दी नहीं होता। हमारी ह्यूमन कैपेसिटी टू एडजस्ट बहुत ज्यादा है, बहुत कैपेसिटी है हमारे अंदर एडजस्ट करने की। लेकिन सिर्फ एडजस्ट की डेफिनेशन, हमने डेफिनेशन ये समझी थी कि चुप रहना, तो वो हम चुप रहे दो साल चार साल, हम सहन करते गए सहन करते गए, उन्होंने जो किया हमने चुप ले लिया। लेकिन हर बार जब कोई बात आई हमने पुरानी सारी बातें बाहर निकाली, तो सोचो मन पर कितने घाव बार बार रिपीट होते होंगे।
1: तो निकालते समय बोलते भी है, उस दिन में मैं चुप रहा, उस दिन चुप रहा,
0: yes.
1: तुम्हारे डैडी के सामने चुप रहा, तुम्हारे मम्मी के सामने चुप रहा, वो तुम्हारे भाई ने सब चुप रहा, फलाने से शादी के टाइम पे तुमने ये सब किया, पूरी लिस्ट आती है बाहर, और अब मैं चुप नहीं रहने वाला।
0: वेरी ट्रू, मतलब दैट इज द डे जब वो प्रेशर कुकर बर्स्ट होता है। तो वो सारे साल भी जो हम चुप रहे, वो एक्चुअली हम पावरफुल नहीं लेकिन डिप्लीट हो रहे थे इतने साल। सप्रेस करना पावर नहीं है, चुप रहना पावर नहीं है।

0: सप्रेशन डिप्लीशन ही करेंगे। अंदर रखा ना, मन में तो रो रहे हैं ऊपर से चुप है, मन में चिल्ला रहे हैं ऊपर से चुप है, मन में गुस्सा कर रहे हैं ऊपर से चुप है, तो वो डिप्लीशन कितनी होगी। और एक इतनी स्ट्रॉन्ग अर्ज रहती है कि हम सुना दें इनको ये सारा कुछ, हम बोल दें इनको ये सारा, ये बहुत स्ट्रॉन्ग अर्ज रहती है मन में कि इफ आई गेट अ चांस आई वॉन्ट टू टेल देम एवरीथिंग, मुझे बताना है उन्होंने मेरे साथ ये किया ये किया ये किया ये किया। तो वो एक अर्ज तो है ही, तो जैसे ही कोई ट्रिगर आएगा एक दिन, और माइंड ने वो अर्ज तो इतने दिनों से क्रिएट की हुई, इतने सालों से क्रिएट की हुई है, तो प्रेशर कुकर तो बर्स्ट होगा ही होगा। और जब वो बर्स्ट होता है तो बहुत सालों का, हम देखो जब घर में प्रेशर कुकर बर्स्ट होता है तो कितने नुकसान होते हैं, किचन की सीलिंग पे भी जाता है,
1: आदमी का मुंह फट जाता है,
0: उनका मुंह फट जाता है, मतलब डैमेज उतना ही होगा हमारे प्रेशर कुकर का भी, कई बार सब कुछ फट जाएगा उससे, कई बार बीमारियां इससे हो जाती हैं,
1: डेथ हो जाती है प्रेशर कुकर के बस,
0: ये अंदर के प्रेशर कुकर से भी हो जाएगी,
1: अंदर के कुकर से तो 100% होती है ना
0: ब्लॉकेजेस, इसी को कहते हैं इमोशनल ब्लॉकेजेस, जहाँ इमोशनल ब्लॉक करके रखी चीजें, ये भी ब्लॉक थी ये भी ब्लॉक थी ये भी ब्लॉक थी ये भी पकड़ा, तो जहाँ इमोशनल इतनी सारी ब्लॉकेजेस होंगी तो फिर शरीर की एनर्जी में ब्लॉकेजेस तो क्रिएट होनी शुरू हो ही जाएंगे। फिर हम शरीर के ब्लॉकेजेस का इलाज कराएंगे लेकिन यहाँ की ब्लॉकेज को नहीं ठीक करेंगे तो इसको सहन शक्ति नहीं कहेंगे हम।
1: यूजुअली डॉक्टर्स कहते हैं बस स्किन में से फट के निकलता है
0: डिजीज,
1: हाँ, ऑल दीज केमिकल्स विच आर क्रिएटेड बाय,
0: बिकॉज़ द सोल डजंट लव इटसेल्फ एनीमोर, द सोल इज इन्फ्लिक्टिंग पेन अपॉन इटसेल्फ इमोशनली, द सोल इज इन्फ्लिक्टिंग पेन अपॉन इटसेल्फ इमोशनली, and the same it will start doing to the body. It's very, इसी दूसरा हमें दर्द नहीं देता है, हम अपने आप को कितना दर्द देते हैं जब हम ऐसी बातों को सप्रेस करके रखते हैं। इसीलिए साइकाइट्री में या डॉक्टर्स कहते हैं इससे अच्छा बोल दो, अंदर नहीं रखो, सुना दो जाके, यू नो, इसीलिए साइकोलॉजिस्ट साइकाइट्रिस्ट कई बार कहते हैं गुस्सा कर दो, गुस्सा करना चुप रहने से लेकिन हमने वो देखा कि वो मेथड यूज करके भी हमारी पावर कम होती गई, हमारे रिश्ते बिगड़ते गए, तो इसका मतलब ना वेंट इट आउट उसमें भी नुकसान है, ना सप्रेशन उसमें भी नुकसान है, लेकिन हर बात जब आएगी
1: लेट गो
0: अंडरस्टैंडिंग से, अंडरस्टैंडिंग से उसको रिजोल्व करना है, मन में पकड़ के नहीं रखना है, ये बार बार अपने को और अपने आसपास सभी को समझाना है ये सहन शक्ति नहीं है, ये सप्रेशन की शक्ति है, मिक्स नहीं करना है दोनों बातों को, चुप रहना है लेकिन मुख ने नहीं चुप रहना है, मन ने चुप रहना है, और मन बोलने से नहीं चुप हो जाएगा, मन को सारी बात समझा के उस दर्द को खत्म करके फिर चुप करना पड़ेगा, ये पावर टू टॉलरेट है। और जो क्वालिटीज हमें यूज जब हम करते हैं, जैसे हमने पिछली बार भी देखा, लव एवरीवन, अपने जीवन का एजेंडा बनाना है कि मुझे सबसे प्यार करना है, मुझे नहीं देखना कि सामने वाला कैसा है क्या कर रहा है, कैसा व्यवहार मेरे से करता है कैसा व्यवहार औरों से करता है, अपना मंत्र मुझे सबसे प्यार करना है, I love everyone because उसमें ही मेरी हीलिंग है, मेरी हीलिंग है, मेरी प्यार की एनर्जी ब्लॉक हो रही है ना, मैं तो हर बार फ्लो नहीं हो रही एनर्जी मेरे थ्रू, मुझे सबसे प्यार करना है, लोग मुझे समझे, वी हैव दिस कॉमन कम्प्लेंट, पीपल डोंट अंडरस्टैंड मी, यू डोंट अंडरस्टैंड मी ओनली एट ऑल,
1: हाथ देखने वाले भी बोलते हैं नोबडी विल अंडरस्टैंड,
0: नोबडी विल अंडरस्टैंड यू,
1: यू आर अ वेरी मिसअंडरस्टूड पर्सन,
0: रियली,
1: और आपकी किस्मत में जो लिखा है ना, आपको मिल नहीं रहा है, पता नहीं क्या हो गया, कोई आपका फैमिली मेंबर आपसे जेलस है, ऑल दीज थिंग्स दीज पीपल से ऑल्सो,
0: पावर टू टॉलरेट हमें सिखाते हैं कि नोबडी नीड्स टू अंडरस्टैंड यू, स्टार्ट योर लाइफ विद द पर्पस, आई विल अंडरस्टैंड अदर पीपल, जब तक हम वेट करते रहेंगे कि लोग मुझे समझे, और मुझे समझे का डेफिनेशन भी हमारा ये है कि लोगों का नजरिया मेरे नजरिए के साथ मैच हो जाए, वो तो होने वाला है ही नहीं, यू डोंट अंडरस्टैंड मी,

0: बजाय हम अपनी लाइन को क्या चेंज करेंगे, लेट मी अंडरस्टैंड देम, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेट मी अंडरस्टैंड पीपल, लेट्स नॉट गो इन द वर्ल्ड सेइंग प्लीज अंडरस्टैंड मी विद द बेगिंग बोल लाइक दिस, लेट मी अंडरस्टैंड पीपल। जितना हम करेंगे, जो मेहनत हम करेंगे उसका फल हमें ही मिलेगा ना। सारा दिन मांगते रहेंगे ऐसे तो अपने जीवन की शक्तियों को कैसे बढ़ाएंगे? मांगने से हम कभी भी एम्पावर्ड नहीं होंगे, हम मेहनत करके कमाएंगे ना। दुनिया में भी कहते हैं भीख क्यों मांग रहे, मेहनत करके कमाओ, तो हम भी क्यों नहीं मेहनत करके कमाते हैं?
1: ये लाइन बहुत अच्छी है।
0: हाँ, हम भीख मांग रहे हैं सारे,
1: इसमें भी मेहनत करो,
0: इसी में भी मेहनत करके कमाते हैं ना। अगर हमें स्टेबिलिटी चाहिए, हम चाहते हैं अदर पीपल शुड अंडरस्टैंड मी, भाई थोड़ी सी मेहनत करते, लेट मी अंडरस्टैंड देम, क्या दर्द है उनको, क्या तकलीफ है, व्हाट डज दैट सोल नीड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हाट आई हैव टू अंडरस्टैंड। वो आत्मा क्या चाहती है, वो आत्मा के कौन सा दर्द है जिसकी वजह से वो इस तरह से व्यवहार कर रही है, वो आत्मा की हीलिंग मैं कैसे कर सकती हूँ, लेट मी अंडरस्टैंड पीपल, तो प्यार की शक्ति बढ़ेगी, अंडरस्टैंडिंग की शक्ति बढ़ेगी। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट एक क्वालिटी, पेशेंस, धैर्यता। आजकल हम थोड़े से फास्ट स्पीड पे चलते हैं, हर चीज हमें चाहिए जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी हो जाए। वो जल्दी जल्दी होने की वजह से भी हम टाइम नहीं देते अपने मन को रुकने का, समझने का, दूसरे को, दूसरे के नजरिए को देखने का समय नहीं है। विच इज गोइंग फास्ट फास्ट, रिएक्टिंग रिएक्टिंग रिएक्ट करते जाना, मेमोरी को यहाँ स्टोर करते जाना और ब्लॉकेज को क्रिएट करते जाना। तो धैर्यता, अपने जीवन को फिर से थोड़ा सा पेशेंस, एवरीथिंग इज हैपनिंग परफेक्ट, हर आत्मा अपना रोल परफेक्ट प्ले कर रही है, ये बार बार बातें जब अपने आप को याद दिलाते जाएंगे तो अपने आप सहन शक्ति
1: बढ़ती जाएगी।
0: नेचुरल है, परिस्थिति से हम गुजर रहे हैं, अगर हम अधैर्य हो जाएंगे, इम्पेशेंट हो जाएंगे, तो हम दूसरे की बात को, व्यवहार को समझेंगे कैसे? हमें थोड़ा सा तो स्लो डाउन करना पड़ेगा, क्योंकि क्या होता है, सीन आफ्टर सीन आता जा रहा है, यहाँ से गुजरे एक सीन, वहां से निकले एक सीन। बहुत इम्पोर्टेंट है हर सीन मुझ आत्मा के ऊपर क्या इम्प्रेशन छोड़ के जा रहा है, एक मार्क तो छोड़ के जा रहा है ना।
1: हर सीन का इम्पैक्ट और वो मार्क हमेशा के लिए रहता है और अगले जन्म तक भी रहता है, तो उसके बाद जन्मों तक रहता है। जैसे आपने कहा ग्रूव
0: बन रहा है ना,
1: और उसका फिर दूसरे जन्म में फिर हम बोलते हैं कि मेरी आदत मुझे कहाँ से आ गई है, फिर बोलते नहीं इसके डैडी से इसको गुस्सा मिल गया, नो उसके फलाने से ऐसा आ गया, नहीं इनकी दोस्तों ने ऐसा कर दिया।
0: देखो एक सिंपल चीज देखते हैं, अभी हम ये शूटिंग कर रहे हैं, हम बड़े पेशेंटली करते हैं इसको, बार बार कैमरा को सेट करते हैं, लाइट कैसी है, ठीक है ना, आवाज तो नहीं कोई बीच में आ रही, डिस्टर्ब तो नहीं हो रहा, अगर कुछ ठीक नहीं हो रहा हम रुकते हैं, हम उसको 10 मिनट लगा के उस लाइट को ठीक करते हैं,
1: आदमी को चुप कराते, गाड़ी अगर आ जाए तो है ना, वेट करते कार का बंद होने का, प्लेन चल जाता है,
0: ये पेशेंस है। ये सब हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें पता है कि अगर एक बार ये रिकॉर्डिंग हो गई, सीडी बन गई, फिर हम इस एपिसोड को कभी ठीक नहीं कर पाएंगे।
1: इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग,
0: ये हम कभी नहीं ठीक कर पाएंगे।
1: एयरक्राफ्ट जा रही है ऊपर से जोर से आवाज,
0: रिकॉर्ड हो गई,
1: और रिकॉर्ड हो गई तो फिर इसको ठीक कैसे कर पाएंगे?
0: हम इसको ठीक नहीं कर पाएंगे,
1: तो वहाँ पॉज करते हैं।
0: ये एपिसोड हर चैनल पे चलता है, फिर ये एपिसोड इंटरनेट, हम सोचते हैं ना ये सब कुछ, ये एपिसोड फिर लोग इंटरनेट पे देखते हैं, फिर ये एपिसोड की डीवीडी भी बन जाती है, हर चीज में वो डिस्टर्बेंस आ जाएगी, इससे अच्छा तो क्या करें,
1: पॉज
0: कर
1: एंड लेट दैट गो।
0: यस, दिस इज पेशेंस। अब ये एपिसोड में अगर डिस्टर्बेंस आ गई तो फिर भी कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ के एपिसोड में ही रोज डिस्टर्बेंस हो रही है और उसी की रिकॉर्डिंग के साथ चलते जा रहे हैं, और जैसे आपने कहा ये वाली रिकॉर्डिंग तो फिर लंबी चलने वाली है, अनेक जन्म जन्म जन्म हमें इसकी भोगनी पड़ेगी। वी विल हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ व्हाट वी आर डूइंग टूडे।
1: वी
0: आर क्रिएटिंग आवर ओन डेस्टिनी ना। तो जब एक फोटो खींचने में इतनी मेहनत करते हैं, अगर फोटो खींचने में कितनी देर लगाते हैं, सबको धीरे

0: फिर स्माइल, नहीं स्माइल नहीं किया, फिर से क्योंकि कोई फोटो खींच गए,
1: बाल कंघी करके आओ, एक कॉलर मैला है, दूसरा पहनो, क्या क्या करते थे,
0: क्योंकि एक फोटो खींच रही है,
1: हमेशा के लिए रहेगी वो,
0: हमेशा के लिए रहेगी ये सीढ़ी तो जन्म जन्मांतर चलने वाली है, फोटो ठीक नहीं आए फेंक देंगे, सीडी पे ठीक नहीं रिकॉर्ड हुआ, आई विल हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ माई रिकॉर्डिंग, अगर मैं इम्पेशेंट होके फास्ट स्पीड पे, इसको भी गुस्सा, इसको ऐसे, इसके ऊपर चिल्ला दिया, इसके ऊपर गलत, इसको धोखा, उसको चीटिंग, आई विल हैव टू फेस दिस, मैं नहीं बच सकता इससे।
1: मेरी डॉक्टर के पास गया था, मेरी हार्ट सर्जन स्पेशलिस्ट के पास, तो उसने स्टेथोस्कोप में मुझे बोला ब्रीथ इन ब्रीथ, फिर बोला जोर से ब्रीथ, जोर से लो, मैंने बोला क्या हो गया, डू यू स्मोक, आई सेड नो आई डोंट स्मोक एट ऑल, मैं तो कोई सिगरेट पिए तो बास है तो भाग जाता हूँ, तो बोले डिड यू एवर स्मोक, बोले हाँ, मैंने 20 साल तक तो पिया मैं, तो बोले कि इतनी जल्दी आसानी से उसके वो नहीं जाते हैं, अभी तक दिखाई दे रहा है वो आपके, एंड 20-25 साल के बाद योर लंग्स माइट कम टू
0: देयर ओरिजिनलिटी,
1: हाँ कि छोड़ के अभी हुआ ना, अभी थोड़ा था जब से आपसे मिला करके, अभी तो छूटी,
0: सी दैट्स पावरफुल थिंग ना, मतलब हमारा हर कर्म का रेपरकशन हमारे साथ कितना लंबा चलने वाला है, इसी तरह हमारा हर रिएक्शन, हमारी हर थॉट, और क्योंकि हम अभी फास्ट स्पीड पे चल रहे हैं ना बहुत, वी जस्ट डोंट सीम टू हैव द टाइम, इतनी फास्ट स्पीड पे चलने से फास्ट रिएक्शंस करते करते इरिटेबिलिटी बढ़ती जा रही है, तो कहीं ऐसा ना हो ना कुछ सालों के बाद हमें भी स्टेथोस्कोप लगाया जाए तो क्या निकल कर आएगा पता नहीं,
1: सेम चीज,
0: यस,
1: निकोटीन के धब्बे भी जैसे के
0: वो तो फिर अगर स्मोकिंग की तो ना, लेकिन व्हाट अबाउट सिर्फ थिंकिंग से ही जो कुछ
1: क्रिएट, उनकी भी तो इमेजेस आते,
0: उन्हीं के तो इमेजेस आएंगे ना इतने ज्यादा, उसका इफेक्ट मन पर और पूरे शरीर पर कितना पड़ेगा, धैर्यता की कितनी जरूरत है इस टाइम, स्लो डाउन लिटिल बिट, डोंट हैव टू टेक आवर लाइफ ऑन द फास्ट फॉरवर्ड मोड, क्यों फास्ट फॉरवर्ड, अचीव करना है बस, जल्दी अपने गोल तक पहुंचना है, गोल तक पहुंचना जीवन का लक्ष्य नहीं है, जीवन का लक्ष्य है उस गोल तक की जर्नी को अपनी वैल्यूज के साथ यूज करते हुए चलना, सिर्फ एक सीन को, एक दिन को देख लेते हैं आज, वन डे टुडे, किसी भी सीन को बहुत जल्दी ना क्रॉस कर लें विद अ रॉन्ग रिएक्शन, ये वो मूवी है जिसमें रीटेक नहीं मिलता है, हर सीन पहली बारी में ही परफेक्ट करना पड़ेगा, नहीं परफेक्ट किया तो रिकॉर्डिंग हो जाएगी, कर्म का फल तो वापस आएगा ही आएगा, और वो कोई भविष्य जन्म में नहीं आएगा, अभी आ रहा है उसका,
1: लाइफ में जर्नी इज मोर इम्पोर्टेंट देन द गोल,
0: जर्नी इज ओनली इम्पोर्टेंट,
1: लाइफ इज अ जर्नी नॉट द
0: गोल, तो आ ही जाएगा, अगर इट्स लाइक हम यहाँ से यहाँ चल के जा रहे हैं, जर्नी इज इम्पोर्टेंट, चलते रहेंगे तो वहां तो पहुंच ही जाएंगे, पहुंच तो जाएंगे ही गोल पे, लेकिन पहुंचने तक की हालत, हर सीन, हर स्टेप, हर कदम जब उठाया उस गोल तक जाने के लिए, उस जर्नी पर हम कैसे हैं, अगर गिरते लटकते दो बार धक्का मारते फिर उस गोल तक पहुंचे तो उस गोल को एंजॉय नहीं करेंगे पहुंचने के बाद, इसलिए आज सारा दिन ये चार क्वालिटीज को हम पकड़ेंगे, लव, आई लव एवरी सोल, लोग मुझे समझे इसका अब इंतजार हम नहीं करेंगे, आई विल अंडरस्टैंड पीपल, मेहनत करके हम अपनी कमाई करेंगे कि वो क्यों ऐसे हैं, आई विल अंडरस्टैंड देम, आई विल एक्सेप्ट देम एज दे आर बिकॉज आई अंडरस्टैंड कि वो आत्मा का वो संस्कार है,
1: बट आई ऑल्सो डोंट हैव एनी अदर चॉइस ऑल्सो ना,
0: ऑफ व्हाट, ऑफ डूइंग इट अनदर वे,
1: इफ आई डोंट अंडरस्टैंड मैं कितनों को ठीक कर लूंगा,
0: मैं किसी को भी नहीं ठीक कर सकता,
1: मैं खुद को तो कर लूँ, खुद को ही नहीं कर पा रहा,
0: यही तो वो जर्नी है,
1: लास्ट टाइम आई टोल्ड यू कि ये अपने आप को ठीक करना इज नॉट एन इजी टास्क, तो आपने बोला कि इतने काम करते हो, इतनी मेहनत करते हो, लेट्स डू द सेम थिंग
0: टू आवरसेल्फ, राइट, तो लेकिन दूसरे के लिए नहीं कर सकते हम ये मेहनत,
1: दूसरे के लिए यही कर सकते कि एक आप ऐसी अच्छी एनर्जी भेजो कि वो आपकी एनर्जी से ट्रांसफॉर्मेशन उसका थोड़ा,
0: उसकी हीलिंग होती है उससे, दूसरे को चेंज करने के लिए अगर हम वाइब्रेशन उसको प्यार की दे दें

0: सबसे बड़ा गिफ्ट हम किसी को नहीं दे सकते।
1: इन जनरली अगर मैं बैठा हूँ और सिर्फ वाइब्रेशन प्यार की दे रहा हूँ, जैसे आपने कहा था ना संत महात्मा भी देते हैं, तब भी अपने ऑरा में अपने नजदीक जो भी आता है उनका भी तो, उनकी भी तो हीलिंग होती है ना।
0: अब जो जो लोग आपसे इंटेंगल होंगे उनको अपने बेनिफिट मिल जाएगा ना,
1: थोड़ा थोड़ा मिल जाएगा,
0: बहुत थोड़ा थोड़ा नहीं मिलता, बहुत बेनिफिट होता है। क्यों हम जाते हैं संत महात्माओं के पास, हमारा बहुत बेनिफिट होता है उसमें। और इसी तरह अगर हम बार बार परमात्मा से कनेक्ट होते रहे, हमारा कितना बेनिफिट होता है उसमें। एनर्जी फील्ड पावरफुल आत्मा की लेना ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। तो क्यों ना हम अपने परिवार में, अपने काम के क्षेत्र पे हम वो पावरफुल आत्मा बन जाएं। आज का हमारा होमवर्क, प्रेशर कुकर अंदर कोई क्रिएट नहीं होना चाहिए। कोई भी चीज सिर्फ चुप करके अंदर नहीं रखनी है, सहन करना है, सप्रेस नहीं करना। ये डिफरेंस को, थिन लाइन को बार बार देखना है। और सप्रेस नहीं करना इसका मतलब ये नहीं है बार बार बोल के शोर मचा के बाहर निकालना है। इट मीन्स बात को समझ के, रिजॉल्व करके बात को अपने अंदर चित पर से फिनिश करना है। घाव नहीं रखना है, हील करके उस बात को खत्म करना है। रिकॉर्डिंग हो रही है, बहुत ध्यान से इस मूवी को रिकॉर्ड करना है। इसका कॉन्सिक्वेंस किसी और को नहीं, हमारे ही सामने आएगा, हमारी खुशी पर और हमारी हेल्थ पर आने वाला है। एंड इस जर्नी ऑफ लाइफ को थोड़ा सा स्लो डाउन करके चलना है।
1: थैंक यू सो मच सिस्टर।
0: ओम शांति।
1: जरूर स्लो डाउन करेंगे।
0: ओम शांति।
1: ओम शांति। थैंक यू।
2: Our happiness grows in direct proportion to our acceptance and in inverse proportion to our expectations. The longer is our list of expectations from people and situations, the more is the chance of our being unhappy and dissatisfied. The way we live our life, what we eat, what we wear, how we speak and behave, sometimes may not be the right way for us. And yet, we do it only to get others' acceptance. We seek acceptance from others because we believe that when others accept us, then we are a nice person. We don't need to be accepted by others. We need to accept ourselves. To be beautiful means to be yourself. When we tolerate in relationships externally, we are silent even if someone behaves badly. We are loving to even those who have mistreated us. Tolerance is when we understand and resolve internally. If the pain gets accumulated, then we are causing damage to our mind and body, and the accumulation will burst someday and damage the relationship. If we suppress the pain, the wound will remain on the soul. Each time something happens, we will remember the past and relive the pain repeatedly. The situation each time will be bigger for us because it will have the added baggage of the past. While doing our karma, we need to remember this is getting recorded on the soul. The impression of the karma and the sanskar created is a permanent recording, the consequence of which we will experience in this

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: अपने आप को आज देखते हैं, हर रोज कुछ बातों को हमने एक ही तरह से रिएक्ट किया और करते करते वो मेरी आदत बन चुकी है। आज एक नया तरीका, अ न्यू वे ऑफ रिस्पोंडिंग, एक ऐसा रिस्पॉन्स जो मुझे खुशी, सेहत और सुंदर रिश्ते देगा, एक ऐसा रिस्पॉन्स जो मेरे लिए कंफर्टेबल एंड रॉयल होगा। आज अपनी किसी एक आदत, अपनी किसी एक रिएक्शन को चूज करते हैं एंड देखें अपने आप को कि आज उसी परिस्थिति में अपने आप को एक नए तरह से रिस्पॉन्ड करते हुए देखें। धीरे धीरे अ न्यू वे ऑफ थिंकिंग, एक नया पैटर्न क्रिएट होना शुरू हो रहा है। दिस इज द पावरफुल बीइंग।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: साहब, सुनो साहब, ओ भाई सुनो। अपने देश निकले थे हम लेके लुटिया डोरी, कौड़ी कौड़ी जोड़ी बन गए लाला आज करोड़ी। मारो नाम शेष करोड़ी, पास हमारे हत्ती घोड़ा पलटन फौज सिपहिया। लेकिन ऐसे कैसे बने हम, बोल दूं बापू?
1: बोल दे बेटा।

0: हाँ? ठीक है ठीक है, प्यार की होए आए, प्यार की होए, हम तो एक ही बात जाने।
1: बोल दो बापू।
0: बोल दे बेटा।

आता हूँ आपको जाने मैं बेकसूर हूँ लेकिन मजबूर हूँ। अरे कठे जाए मेरी बात भी तो सुन। तेरी खातिर देखी है एक राजकुमारी, है एक राजकुमारी, जा घोड़ा ले आ।

0: बदले में राजा से एक एक के हजार लहंगो।
1: क्या शादी भी है व्यापार?
0: हाँ बेटा, एक एक के बड़े हजार। ये कल मुही तू सोड़, तू प्यार से मुंह मोड़, अरे पैसे से नाता जोड़।
1: ठीक है बापू, मानता हूँ मैं आपकी बात। लाइए वो जेवरात,
0: ले
1: ले, बढ़ा दो हाथ।
0: ए घोड़ा लाओ घोड़ा।

0: ठीक है, अरे ठीक है, मारे सारी उम्र के कमाई गई डॉलर है। हाय भैया
1: बोल दो बापू।
2: हाँ बोल दे बेटा।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: सपोज आपने मुझे अभी आकर कहा कि आपका शरीर कमजोर है, एक आपकी बात को इग्नोर कर दो, ठीक है। सेकंड मैं कहूँ कि मैं कुछ नहीं कर सकती उस बारे में, है कमजोर तो है, आई कांट हेल्प, खाना ऐसा है आजकल, पानी ऐसा है, मौसम ऐसा है, तो ये कमजोर है। थर्ड ऑप्शन इज ठीक है, आई स्टार्ट वर्किंग ऑन इट टुडे, एंड अगर मैं आज भी

0: पे काम करना शुरू कर दो, चाहे मैंने 50 साल कोई काम नहीं किया उसके ऊपर एंड वो कमजोर हो चुका है, बिल्कुल कमजोर हो गया, लेकिन आज भी अगर उस पर काम करना शुरू कर दिया, आई एम मूविंग फ्रॉम डिजीज टू हेल्थ, आज अगर काम करना नहीं शुरू किया उस पर, देन इट्स डिक्लाइनिंग फर्दर फर्दर फर्दर। तो आज डिप्रेशन नहीं होगा ये बात सुन के, लेकिन आज अगर ध्यान नहीं रखा और कल अगर कोई बड़ी बात आ गई तो ताकत नहीं होगी उसको फेस करने में, तब डिप्रेशन होने का चांस होता है। आज इस बात को सुनने से नहीं होना चाहिए, आज एक रियलाइजेशन होनी चाहिए।
1: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: आवाज ऐकण्यासाठी कर्ण आतुर झाले. रेडिओ पुणेरी आवाज 107.8 FM. आनंदी रहा, आनंद लुटा.
1: अजी सुनते हो?
2: हाँ सुनी तो रहा हूँ.
1: क्या सुन रहे हो?
2: रेडिओ पुणेरी आवाज.
1: ओ रेडिओ पुणेरी आवाज 107.8 FM.
2: खुश रहो, खुशियाँ बांटो.
3: गाँव की मिट्टी हो या शहर की गलियाँ, हम सबके दिल में भारत है. उत्तर हो या दक्षिण, पूरब हो या पश्चिम, हर संस्कृति, हर भाषा, हर मन में भारत है. तिरंगे के रंगों से निकलते हैं तीन रंग, पर हर प्रदेश के अलग और अनोखे रंग इसी तिरंगे में समाये हैं. उन्हीं में से एक है समुद्र की ठंडक और सुंदर प्रकृति के दृश्य लिए भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा. चलिए जानते हैं गोवा को करीब से. पुणेरी आवाज में 107.8. खुश रहो, खुशियाँ बांटो. गोवा भारतीय प्रायद्वीप के पश्चिम तट पर स्थित है. गोवा राज्य उत्तर में महाराष्ट्र, पूर्व व दक्षिण में कर्नाटक और पश्चिम में अरब सागर से घिरा है. गोवा की राजधानी पणजी है. गोवा का क्षेत्रफल 3,702 किलोमीटर वर्ग है. ये समुद्र तट की ओर एक द्वीप युक्त शहर है, जो मुंबई से 400 किलोमीटर की दूरी पर दक्षिण में मुख्य भूमि में स्थित है. गोवा क्षेत्रफल में भारत का सबसे छोटा और जनसंख्या के हिसाब से दूसरा सबसे छोटा राज्य है. पूरी दुनिया में गोवा अपने खूबसूरत समुद्र के किनारों और मशहूर स्थापत्य कला के लिए जाना जाता है. इसके उत्तर में तेरेखोल नदी बहती है, जो गोवा को महाराष्ट्र से अलग करती है. इसके दक्षिण में कर्नाटक का उत्तर कन्नड़ जिला, पूर्व में पश्चिम घाट और पश्चिम में अरब सागर है. पणजी, मडगांव, बास्को, मापुसा तथा पोंडा यहाँ के प्रमुख शहर हैं.

Back to the

चलिए अब चलते हैं जानने गोवा के इतिहास को। गोवा प्राचीन काल में गोमांचल, गोपकट्टनम, गोपपुरी और गोमांतक आदि कई नामों से विख्यात रहा है। इस प्रदेश की लंबी ऐतिहासिक परंपरा रही है। गोवा पश्चिमी समुद्र तट पर स्थित भूतपूर्व पुर्तगाली बस्ती था, जो 1961 से भारत का अभिन्न अंग बन गया। गोवा का प्राचीन हिंदू शहर, जिसके अवशेष का एक अंश ही बचा हुआ है, उसका निर्माण द्वीप के सुदूर दक्षिण बिंदु पर हुआ था और ये आरंभिक हिंदू दंत कथाओं और इतिहास में प्रसिद्ध था। पुराणों और अभिलेखों में इसका नाम गोवे, गोवपुरी व गोमत के रूप में आता है। मध्यकालीन अरबी भूगोलविद इसे सीतांबूर या संदाबूर के नाम से और पुर्तगाली वेल गोवा के नाम से जानते हैं। दूसरी शताब्दी से 1312 तक गोवा पर कदंब वंश और 1312 से 1367 तक दक्कन के मुस्लिम आक्रमणकारियों का शासन रहा। इसके बाद गोवा पर विजयनगर के हिंदू साम्राज्य का कब्जा हो गया और बाद में बहमानी वंश ने गोवा को जीत लिया, जिन्होंने 1440 में पुराने गोवा की स्थापना की। 1482 के बाद बहमानी राज्य के विभाजन के बाद गोवा बीजपुर के मुस्लिम शासक यूसुफ आदिल खां के अधीन आ गया, जो पुर्तगालियों के भारत आगमन के समय इसके शासक थे। इस शहर पर मार्च 1510 में अल्फांसो द अल्बुकर्क के नेतृत्व में पुर्तगालियों का आक्रमण हुआ। गोवा बिना किसी संघर्ष के पुर्तगालियों के कब्जे में आ गया और अल्फांसो ने एक विजेता की तरह इस शहर में प्रवेश किया। 3 महीने के बाद यूसुफ आदिल खां 60,000 की सेना लेकर वापस लौटे और बंदरगाह के मार्ग पर कब्जा कर लिया और पुर्तगालियों को मई से अगस्त तक अपने जहाजों पर रुकने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद ही मॉनसून की समाप्ति के कारण वे वापस समुद्र में पहुंच सके। नवंबर में अल्फांसो ज्यादा बड़ी सेना के साथ लौटे और उन्होंने शहर पर पुनः कब्जा कर लिया। गोवा पुर्तगालियों का एशिया में पहला क्षेत्रीय कब्जा था। अल्फांसो और उनके उत्तर अधिकारियों ने द्वीप के 30 ग्रामीण समुदाय के संविधान रीति रिवाजों में लगभग सती प्रथा के अलावा किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया। वहां सती प्रथा को उन्होंने समाप्त कर दिया। गोवा पूर्व दिशा में समूचे पुर्तगाली साम्राज्य की राजधानी

गया। इसे लिस्बन के समान नागरिक अधिकार दिए गए और 1575 से 1600 के बीच ये उन्नति के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचा। इसके बाद भारतीय सेना में डच आगमन के साथ गोवा का पतन होने लगा। 1603 और 1639 में डच बेड़े के द्वारा घेर लिया गया, हालांकि इस पर कभी कब्जा नहीं हो सका और 1635 में एक महामारी के कारण तबाह हो गया। 1683 में मुगल सेना ने इसे मराठा आक्रमणकारियों के कब्जे में जाने से बचाया और 1739 में पूरे क्षेत्र पर इन्हीं आक्रमणकारियों का हमला हुआ और नए वायसराय के बेड़े के अनुपेक्षित आगमन के कारण ही बच सका। प्रशासन के मुख्यालय को पहले मर्मगांव और फिर 1759 में पंजिम, जो अब पणजी है, ले जाया गया। गोवा में स्थानीय निवासियों के पुराने गोवा से नए गोवा के प्रवास का मुख्य कारण हैजा नामक महामारी थी। 19वीं सदी में नेपोलियन के पुर्तगाल पर कब्जा के कारण 1809 में अंग्रेजों का अस्थायी अधिकार कांडे डी टोरस नोवास का गवर्नर काल 1855 से 1864, जिन्होंने कई सुधारों की शुरुआत की और शताब्दी के दूसरे अध्वेश में हुए सैनिक विद्रोह जैसी घटनाओं ने यहाँ की बस्तियों को प्रभावित किया। इनमें सबसे महत्वपूर्ण 3 दिसंबर 1895 में हुआ विद्रोह है, जिसने पुर्तगाल को एक अभियान दल भेजने पर मजबूर कर दिया। इस अभियान दल के साथ अल्फांसो हेनरिक्स जूको डी ओपाटो ने मार्च से मई 1896 में गवर्नर के अधिकारों का प्रयोग किया। 1948 और 1939 में भारत के गोवा पर दावे के बाद पुर्तगाल पर गोवा और इस उपमहाद्वीप में उसके अन्य संपत्तियों को छोड़ने का दबाव बढ़ता गया। 1954 के मध्य में गोवा के राष्ट्रवादियों ने दादरा तथा नगर हवेली की बस्तियों पर कब्जा कर लिया और भारत समर्थक प्रशासन की स्थापना की। एक अन्य संकट की घड़ी तब आई जब भारत के सत्याग्रहियों अर्थात अहिंसक प्रदर्शनकारियों ने गोवा में घुसने का प्रयास किया। पहले तो सत्याग्रहियों को वापस भेज दिया गया, लेकिन बाद में जब बहुत ज्यादा संख्या में लोगों ने सीमा पार करने का प्रयत्न किया तो पुर्तगाली अधिकारियों को बल का प्रयोग करना पड़ा और उस समय कई मौतें हुईं। इससे 18 अगस्त 1955 को पुर्तगाल और भारत के बीच राजनीतिक संबंध टूट गए। भारत और पुर्तगाल के बीच तनाव 18 सितंबर 1961 को अपने चरम पर पहुंचा और नौसेना एवं वायुसेना की मदद से भारतीय सेना ने गोवा, दमन और द्वीप पर कब्जा कर लिया। 1962 में संविधान संशोधन द्वारा पुर्तगाली भारत को भारतीय गणराज्य में शामिल कर लिया गया।

आइए अब देखते हैं गोवा को एक भूगोलिक नजर से। 105 किलोमीटर समुद्र तट वाले गोवा में रेतीले तट, मुहाने व अंतरीप हैं। इसके भीतरी हिस्से में निचले पठार और लगभग 1220 मीटर ऊंचे पश्चिमी घाटों का एक हिस्सा है। गोवा की दो प्रमुख नदियाँ मांडोवी व जुआरी के मुहाने में गोवा का द्वीप स्थित है। इस त्रिकोणीय द्वीप का शीर्ष अंतरीप एक चट्टानी मुहान है, जिस पर दो लंगरगाह हैं। यहाँ पर तीन शहर मर्मगांव, मडगांव और पणजी हैं। पुराने गोवा शहर का ज्यादातर हिस्सा अब ध्वस्त हो चुका है, लेकिन गोवा के शेष भारत में विलय के बाद से ही इसकी अच्छी देखरेख की जाती रही है। पुराने गोवा का ही एक उपनगर पणजी भी मांडोवी के बाएं तट पर स्थित है। ये एक सुनियोजित शहर है और भव्य चर्चों, मुख्य पादरी के महल, सचिवालय, बाजार और कोंकण रेल मार्ग पर स्थित रेलवे स्टेशन से लगे एक विशाल बस अड्डे से युक्त है। पुराने गोवा में बाम जीसस का विशाल गिरजाघर, जो 16वीं सदी में निर्मित हुआ था और एक विश्व स्मारक स्थित है, जिसमें सेंट फ्रांसिस जेवियर के अवशेष सुरक्षित रखे गए हैं। यहाँ पर 16वीं शताब्दी में स्थापित धर्मपीठ भी हैं। अब जानते हैं भारत के प्रमुख क्षेत्र यानी कृषि के बारे में। गोवा के कृषि उत्पादों में मुख्य खाद्य फसल चावल है। इसके अतिरिक्त दालें, रागी और अन्य खाद्य फसलें भी उगाई जाती हैं। नारियल, काजू, सुपारी तथा गन्ने जैसी नकदी फसलों के साथ साथ यहाँ अनानास, आम और केला भी होता है। ये फसलें गोवा के जीवन व जीविका के लिए काफी महत्वपूर्ण हैं। सौगान, बांस और काजू यहाँ के महत्वपूर्ण आर्थिक उत्पाद हैं। गोवा में मत्स्याकी का एक प्रमुख स्थान है, क्योंकि गोवा की 90% जनसंख्या मत्स्य उद्योग में लगी है। 1,00,000 लोग लगभग मत्स्य उद्योग में कार्यरत हैं। चलिए अब आपको ले चलते हैं एक अनूठी संस्कृति से अवगत कराने, यानी कि गोवा की संस्कृति। सुरभ्य सागर तट पर बसा गोवा अपनी प्राकृतिक सुंदरता, संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। आजादी से पहले ये पुर्तगीज व फ्रांसीसियों का उपनिवेश रह चुका है। इस वजह से आज भी यहाँ का रहन सहन, भाषा व खान पान पर पश्चिमी संस्कृति का पूरा प्रभाव दिखाई देता है। 1542 में यहाँ सेंट फ्रांसिस जेवियर का आगमन हुआ। उन्होंने यहाँ रहकर ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किया। गोवा में 80% लोग ईसाई हैं। गोवा में समुद्री भोजन लोकप्रिय है। यहाँ मछली से बने व्यंजन प्रसिद्ध हैं। गोवा में व्यापक रूप से नारियल और नारियल तेल, मिर्च, मसाले, खाद्य सिरका के साथ खाना पकाने में इस्तेमाल किए जाते हैं। मिठाई के रूप में यहाँ मिठाइयों के बजाय ज्यादातर चॉकलेट, केक, पेस्ट्री जैसे यूरोपीय व्यंजन प्रचलित हैं। भारत में जहाँ क्रिकेट सबसे लोकप्रिय खेल है, वहीं गोवा का सबसे लोकप्रिय खेल फुटबॉल है। गोवा में कई लोकप्रिय फुटबॉल क्लब भी स्थित हैं। फुटबॉल के अलावा गोवा के बहुत से खिलाड़ी हॉकी में भी दिलचस्पी रखते हैं। बात करें भाषा की, तो गोवा की मुख्य भाषाएं कोंकणी और मराठी है। कोंकणी गोवा की राजभाषा है। गोवा में सबसे ज्यादा कोंकणी ही बोली जाती है। कोंकणी गोवा, महाराष्ट्र के दक्षिण भाग, कर्नाटक के उत्तरी भाग, केरल के कुछ क्षेत्रों में भी बोली जाती है। भाषाई तौर पर ये आर्य भाषा परिवार से संबंधित है और मराठी से इसका काफी निकट संबंध है। इसके अलावा यहाँ मराठी, कन्नड़, उर्दू और हिंदी भी बोली जाती है। गोवा के कुछ पारंपरिक नृत्य हैं देखनी, पुगड़ी, फोरी दिनों और दशावतारा तथा मांडू और दुलपोत यहाँ के लोकप्रिय संगीत शैली है।

गोवा एक छोटा राज्य जरूर है, पर यहाँ देशी और विदेशी पर्यटकों का आना जाना बहुत संख्या में होता है। तो चलिए आपको भ्रमण करवाते हैं सुंदर गोवा का। गोवा को पर्यटकों का स्वर्ग कहा जाता है। गोवा की मनमोहक सुंदरता और गोवा के मंदिरों, गिरजाघरों और पुराने निवास संस्थान की वास्तुकलात्मक भव्यता गोवा को दुनिया भर में आने वाले पर्यटकों का एक आकर्षक केंद्र बनाती है। गोवा की प्राकृतिक सुंदरता के अलावा यहाँ के प्रसिद्ध तट और सूर्य की धूप पर्यटकों को गोवा की ओर खींचती है। यहाँ का शांति प्रिय वातावरण, अतिथि सत्कार, दोस्ताना व्यवहार के कारण लोग अधिक आकर्षित होते हैं। गोवा में इतने अधिक समुद्र तट हैं कि पर्यटकों को गोवा के सभी तटों को देखने में एक महीने से भी अधिक वक्त लग जाता है। गोवा के इन समुद्र तटों पर आप समुद्र की लहरों पर वाटर सर्फिंग, पैरासेलिंग, वाटर स्कीइंग, स्कूबा डाइविंग और वाटर स्कूटर आदि का लुत्फ उठा सकते हैं। यहाँ के कुछ प्रमुख तट हैं: अंगूठा तट, अरम्बोल तट, अंजुना तट, बागा तट, बोगमोला तट, कोलवा तट आदि। देखने के लिए यहाँ वन्य जीवन अभयारण्य भी है, जैसे कि सलीम अली पक्षी अभयारण्य, भगवान महावीर वन्य जीवन अभयारण्य और अन्य। अगर आप धार्मिक स्थल जाना चाहते हैं, तो गोवा में आपके लिए बहुत कुछ है, जैसे कि मंगेश संस्थान मंदिर, महालसा देवी मंदिर, नागेश मंदिर, शांता दुर्ग मंदिर जो कि एक बहुत ही भव्य और प्राचीन मंदिर है। इसके अतिरिक्त यहाँ श्री मल्लिका अर्जुन मंदिर, दामोदर मंदिर आदि भी स्थित हैं। गोवा के किलों का भी बहुत महत्व है। यहाँ भागवत का किला है जो पुर्तगालियों ने शत्रुओं से रक्षा अर्थ वारदेज तालुका में मांडोवी नदी जहाँ समुद्र से संगम बनाती है वहाँ बनवाया था। इसके अलावा यहाँ कामसुक का किला है जो बागाटोर समुद्र तट पर स्थित है। और भी कई किले गोवा की शान बढ़ाते यहाँ मौजूद हैं। गोवा आकर अगर आपने यहाँ के प्राचीन और विशाल गिरजाघरों के दर्शन नहीं किए तो आपका सफर अधूरा है। 16वीं शताब्दी में पुराने गोवा में गिरजाघर निर्मित हुए। आज भी ये गिरजाघर पणजी पूर्णा मुख्य मार्ग के किनारे शान से खड़े हैं। इसी स्थान पर एक और पुर्तगाल के महान कवि तुषत कामोइश का विशाल पुतला खड़ा है, तो इसकी दूसरी ओर महात्मा गांधी की भव्य प्रतिमा है। पुराने गोवा में सर्वाधिक विशाल और आकर्षक गिरजाघर है, जैसे कि कैथेड्रल गिरजाघर, संत फ्रांसिस आसीसी गिरजाघर आदि। गोवा में क्रिसमस और नया साल बहुत खूब मनाने, इसीलिए यहाँ नया साल मनाने के लिए जगह जगह से लोग आते हैं और इस समय यहाँ की रौनक देखने लायक ही होती है। इसके अलावा गोवा में गणेश चतुर्थी, गुड़ी पड़वा, दिवाली, दशहरा, होली, रक्षाबंधन, रामनवमी और कृष्ण जन्माष्टमी भी बहुत धूमधाम से मनाए जाते हैं। गोवा सचमुच एक अनोखा स्थान है जहाँ जितने बड़े समुद्र तट हैं, उतना ही ज्यादा अपनापन भी। प्रकृति के साथ अपने अनूठे अंदाज के लिए गोवा हमेशा से जाना जाता है। इसी के साथ हमारा और आपका ये सफर यहीं पूरा हुआ। 29 राज्य, एक राष्ट्र, एक कहानी। जय हिंद। पुनेरी आवाज में 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM पर। मैं स्मिता जयकर, खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: नो स्मोकिंग जोन जैसे बन गए हर जगह, वैसे नो एंगर जोन। इधर गुस्सा नहीं कर सकते, आया है तो बाहर जाओ, कर क्या। यहाँ नहीं कर सकते, यहाँ नहीं कर सकते, क्यों।

0: बनाई क्यों नहीं कर सकते सबके बीच, क्योंकि कर आप रहे हैं, नुकसान हमारा हो रहा है। इसी तरह गुस्सा कर आप रहे हैं सारे वातावरण में और सब लोगों का नुकसान हो रहा है, तो आप जाइए वहाँ वो कमरा है उधर गुस्सा करिए वापस आइए।
1: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: हम भी भूल गए कि हम मन के, बुद्धि के, संस्कारों के, इन कर्म इंद्रियों के हम मालिक हैं, हम राजा हैं, हम भूल गए। आज हम कहते हैं मुंह से निकल गया, हाथ उठ गया, आंखों से देख लिया, किसी का बुरा बोल दिया। मन तो सारा दिन चलता है, वो तो कभी सोचा, वो तो उसके बारे में तो। कर्म इंद्रियों के भी गुलाम, ये तो सूक्ष्म इंद्रियां, इसको हम कहते हैं सटल ऑर्गन्स, मन, बुद्धि, संस्कार। लेकिन फिजिकल सेंस ऑर्गन्स, ये पांचों कर्म इंद्रियां, ये भी आज हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो आत्मा आउट ऑफ कंट्रोल ओवर इट्स ओन ऑर्गन्स, ट्राइंग टू कंट्रोल एवरीबडी एल्स। इट्स लाइक ड्राइविंग ऑन द रोड, अपनी गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल, लेकिन चाहते हैं कि बाकी सबकी गाड़ी मेरे हिसाब से चले। रिजल्ट क्या होगा? एक्सीडेंट के अलावा और तो कुछ हो ही नहीं सकता ना। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बाकी सब गाड़ियों में भी जो बैठे हैं ना, उनकी भी अपनी गाड़ी पे कंट्रोल नहीं है, उनकी भी अपनी गाड़ी पे कंट्रोल नहीं है। वो भी ये चाहते हैं कि हमारी गाड़ी उनके हिसाब से चले। जस्ट विजुअलाइज दिस सीन ऑन द रोड, जस्ट ओनली सी कि पांच गाड़ियां एक सड़क पर हैं, पांचों के ड्राइवर्स का अपनी अपनी गाड़ी पर कंट्रोल खत्म हो चुका है। एंड पांचों चाहते हैं कि जो बाकी चार हैं गाड़ियां, वो उनके कंट्रोल से चले।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: सफर आरजे सनी के साथ रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 एफएम पर।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 एफएम। खाबों का सफर इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, खाबों का सफर इस कार्यक्रम में हम लोग ओल्ड फिल्मी गीत आपको सुनाते हैं और काफी प्यारे प्यारे गीत आप सुनते हैं और आपका जो प्यार है मैसेज के जरिए हम सभी तक पहुंचता है तो हमारी खुशी दुगनी हो जाती है। तो आइए आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए आज फिर से हम लोग नैना और मैं आपके साथ हूं और नैना के पास बहुत सारे अच्छे अच्छे कलेक्शन है के अक्षर वाला। तो आइए आज हम लोग के अक्षर के बहुत ही खूबसूरत गाने सुनेंगे। तो आप सभी की तरफ से नैना का बहुत बहुत स्वागत है।
2: थैंक यू।
1: नैना कैसे फील कर रहे हैं आप?
2: और अच्छा फील कर रही हूँ, फिर से मौका मिला।
1: चलिए आप मौका लेते रहिए और चौका मारते रहिए अपने गानों का।

0: भी अच्छा लगता है और हमारे श्रोताओं को भी काफी अच्छा लगता है। काफी लोगों ने मैसेज करके बताया कि नैना की आवाज बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा गाती हैं। तो चलिए, हमें भी अच्छा लगता है कि आप बहुत ही अच्छा गाते हैं। तो आइए, आज के इस कार्यक्रम के शुरुआत में मैं चाहूंगा कि हमारे सभी श्रोताओं को कौन सा एक गीत आप सुनाने वाले हैं जो के अक्षर से शुरू होता है।
1: आज मैं पहला गीत लेके आई हूँ रफी साहब का, कह दो कोई ना करे यहाँ प्यार।
0: ओके ओके, लेकिन लोग तो प्यार कर रहे हैं।
1: वो गीत के ऐसे फिल्म के हिसाब से शब्द है।
0: जी जी जी जी, और बताइए इसके भाव क्या है, और एक थोड़ा सा गुनगुना दीजिए हमारे श्रोताओं को ताकि गीत का भाव पता चले।
1: जी, इस गीत का सिचुएशन बहुत ही गंभीर है, गमगीन है। इसमें उस प्रेमी के दिल का दुख है जो कि प्रेम में असफल हो गया है, अनसक्सेसफुल हो गया है। वो जिसे चाहता था उसे लेने के लिए किसी और की बारात आ गई है, यानी उसकी प्रिया की शादी आज किसी और से होने वाली है। ये लव स्टोरी का आज एक अनसक्सेसफुल दी एंड होने वाला है, तो उसी गम में वो सबको कह रहा है कि मत करो प्यार।
0: चलिए बताइए इस गीत को थोड़ा सा गुनगुना के हमारे श्रोताओं को।
1: जी,

चलिए श्रोताओं, बहुत ही खूबसूरत गीत है, लेकिन सैड सॉन्ग है इसलिए थोड़ा सा फील हो रहा है मुझे भी, लेकिन बहुत ही खूबसूरत गीत है ये। भरत व्यास का लिखा है, मोहम्मद रफी साहब ने इसे अपनी खूबसूरत आवाज से गाया है और वसंत देसाई साहब ने इसे संगीत से संवारा था। फिल्म थी गूंज उठी शहनाई, 1959 में ये फिल्म रिलीज हुई थी और विजय भट्टा द्वारा ये फिल्म निर्देशित किया गया था। राजकुमार, अनिता गुहा, इन सभी ने काम किया था। चलिए, उस समय जब ये फिल्म रिलीज हुई थी तो रिलीज होने के साथ साथ इस फिल्म ने 18 मिलियन इंडियन रुपीस का इन्होंने बिजनेस किया था, तो आप समझ सकते हैं कि उस समय अगर इतना अच्छा कमाई किया हो तो आज का बहुत ही बड़ा बजट वाला, बड़ा बिजनेस करने वाली ये फिल्म थी। आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और बहुत ही खूबसूरत गाना आपने सुना मोहम्मद रफी की आवाज में। चलिए आगे बढ़ते हैं नैना, अब अगला गाना कौन सा है आपके पिटारे में?
1: अगला गाना है कहना है कहना है आज तुमसे ये पहली बार। ये गीत मुझे बहुत बहुत पसंद है और हमारी जनरेशन के यानी कि यंग जनरेशन के लोगों को भी बहुत पसंद है, हो भी क्यों ना, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा ब्लॉकबस्टर सॉन्ग रहा है। मैं समझती हूँ कि ये एक एवरग्रीन सॉन्ग है क्योंकि इसका जो कॉम्पोजिशन है वो लाजवाब है। इसमें जो म्यूजिक दिया गया है वो बेहतरीन म्यूजिक दिया गया है और ऊपर से एवरग्रीन किशोर दा ने इसे अपनी आवाज दी है। इसकी जो मूवी थी सुपर हिट हुई थी पड़ोसन, मैंने भी देखी है। इसमें एक सीधा साधा युवक अपने दोस्त की मदद से एक फैशनेबल मॉडर्न युवती के सामने अपने प्यार का इजहार कर रहा है और खास बात यह है कि वो इसे खुद गा नहीं रहा है बल्कि ये उसके दोस्त यानी खुद किशोर कुमार गा रहे हैं और वो केवल लिपसिंग कर रहा है।
0: तो नैना, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया। गीतकार राजेंद्र कृष्ण का लिखा, किशोर दा का गाया हुआ, राहुल देव बर्मन का बहुत ही खूबसूरत संगीत है और पड़ोसन 1968 में रिलीज हुई थी और ये फिल्म जो है अपने आप में बहुत ही खास था और लोगों ने इसे बहुत ही एंजॉय किया और बहुत ही क्या बोलते हैं कॉमेडी फिल्म थी। इस कॉमेडी फिल्म में किशोर दा ने चार चांद लगा दिया अपने एक्टिंग के जरिए, अपने गानों के जरिए। तो मैं चाहूंगा कि इसको एक बार आप गुनगुना दीजिए।
1: जी

0: नमस्कार, बहुत ही खूबसूरत गीत आपने अभी सुना। किशोर दा, सायरा बानो, सुनील दत्त और ओम प्रकाश पर पिक्चराइज किया गया था ये गाना, और पड़ोसन 1968 का ये गाना था जो आपने अभी सुना। ज्योति सुरू के निर्देशन में ये फिल्म बनी थी और बहुत हिट थी। लोगों ने इसे उस समय काफी पसंद किया और लोगों ने इस गाने को, इनके गाने, इनके एक्शन, इसमें कॉमेडी जो थी वो भी बहुत ही मजेदार थी। आशा करता हूं आपने देखा होगा तो आपको याद आ गया होगा। तो चलिए, आपकी इसी तरह चेहरे पे खुशी की फुहार बनी रहे, आगे बढ़ते हैं और थोड़ी आपकी खुशी बढ़ा देते हैं। नैना, कैसे हैं आप?
1: बहुत अच्छी हूँ।
0: तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और कौन सा गीत है आपके पास अभी?
1: अगला गीत है लता जी का, खाई है ये हमने कसम। ये बहुत ही मधुर गीत है। इसमें एक प्रेमी और प्रेमिका जीवन भर साथ रहने की कसम खा रहे हैं।
0: बहुत ही अच्छा गीत आपने याद कराया है। तलाश 1969 में एक फिल्म आई थी। ये एक बहुत ही अच्छा फिल्म है जिसमें एक महत्वाकांक्षी युवक अपनी विधवा माँ के साथ रहता है। वो जहाँ काम करता है जल्दी वहाँ भागीदार बन जाता है। तो इस तरह का ये कहानी इसमें बताया गया है। और जो गीत आपने अभी याद कराया नैना, बहुत ही सुंदर गीत है और क्लासिकल सॉन्ग है। मजरू सुल्तानपुरी साहब ने इसे लिखा था, लता मंगेशकर ने आवाज दी थी, सचिन देव बर्मन का संगीत। तो चलिए नैना, थोड़ा सा गुनगुना दीजिए हमारे श्रोताओं के लिए आप।

बहुत ही खूबसूरत गीत आपने सुना, आशा करता हूँ आप सभी को अच्छा लग रहा है। शर्मिला टैगोर, हेलन और राजेंद्र कुमार पर पिक्चराइज किया गया था ये खूबसूरत गीत आपने सुना, तलाश फिल्म का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और मुझे लगता है कि इतने खूबसूरत गाने जो 50s और 60s में बने थे, उस फिल्मों के गाने जो है, उस समय जो संगीत था, जो कलाकार थे गाने वाले, उनके अंदर एक कशिश थी। कोई भी गाना आप सुनते हो वो अपने आप में आपको आकर्षित कर लेता है, और इस गीत को पर्टिकुलर जब आप सुने तो मुझे लगता

0: है कि आप यहाँ नहीं होंगे जहाँ पर है अभी। कहीं ना कहीं आप गुम हो जाते हो, आशा करता हूँ आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा। तो चलिए आपको एक नया एहसास और कराते हैं, आगे बढ़ते हैं। नैना, अब आगे कौन सा गीत की तरफ आपका इशारा है?
1: अगला गीत है ख्यालों में किसी के इस तरह आया नहीं करते, बहुत मधुर गीत है।
0: जी जी जी।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: नमस्कार, आपने बहुत ही खूबसूरत गीत सुना, आशा करता हूँ सभी को अच्छा लग रहा है। बावरे 1950 में ये फिल्म रिलीज हुई थी। इस फिल्म का ये गीत था जो अभी आपने सुना, केदार शर्मा का लिखा हुआ, मुकेश और गीता दत्त का गाया हुआ, रोशन साहब का संगीत से सजा ये गीत था जो बहुत ही खूबसूरत गीत था। बावरे 9 इस फिल्म की स्टोरी इस तरह से है, एक प्रेमी जो है अपने प्रेयसी को छोड़कर काम की तलाश में विदेश जाता है और विदेश जाने के बाद आपको पता है वहां पर वो किसी और लड़की से शादी कर लेता है। तो ये क्लाइमेक्स इस फिल्म में बताया गया है। तो इस फिल्म के कलाकार हैं राज कपूर और गीता बाली। तो चलिए, आशा करता हूँ आप सभी को बड़ा अच्छा लग रहा होगा। आइए आगे बढ़ते हैं खूबसूरत गानों का सिलसिला ख्वाबों के सफर में। नैना, अब आगे कौन सा गीत है आपके पास?
2: अगला गीत है खेलो ना मेरे दिल से।
1: अच्छा अच्छा
2: ये लता जी का काफी सैड सॉन्ग है और इसका कॉम्पोजिशन काफी कठिन है, अक्सर बेसरा होने के चांसेस हो जाते हैं इसमें।
1: जी जी जी,
2: बहुत ही अच्छा गाया है लता जी ने, मेलोडी क्वीन तो वो है ही। इस गीत में एक प्रेमिका जिसके प्रेमी ने उसे चीट किया है, धोखा दिया है, वो उससे शिकायत कर रही है।

0: नमस्कार, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है ख्वाबों का सफर इस कार्यक्रम में। बहुत ही खूबसूरत गाने आप सुन रहे हैं और एक से बढ़कर एक गीत आज के इस एपिसोड में नैना के कलेक्शन में है। नैना, अब बताइए आगे कौन सा गीत की तरफ आपका इशारा है?
1: अगला गीत तो ऐसा है कि जिसके बारे में मुझे ज्यादा कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है। खोया खोया चांद, रफी साहब का ये बहुत ही पॉपुलर गीत है और इस गीत की खासियत है कि उन्होंने इसे काफी नशीले अंदाज में गाया है, इसमें जान डाल दी है।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीति आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो। बहुत ही खूबसूरत गीत आपने अभी सुना, शैलेंद्र साहब का लिखा, मोहम्मद रफी का गाया हुआ, सचिन देव बर्मन का संगीत, फिल्म थी काला बाजार। जी हाँ, काला बाजार 1960 में ये फिल्म रिलीज हुई थी और ये बहुत ही खूबसूरत फिल्म थी। खास देवानंद पर पिक्चराइज किया गया था और उनका जो चलने का अंदाज है इस गाने में बड़ा ही खूबसूरत है। नैना मुझे भी शुरुआत में जैसे कि खोया खोया शांत है, उसकी जो आलाप है वो बड़ा मजेदार लगता है, सुनकर ऐसा लगता है कि हम भी साथ में गाए। तो चलिए, बहुत ही अच्छा गीत आपने गुनगुनाया, याद दिलाया और सुनाया। आगे बढ़ते हैं, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीति आवाज 107.8 FM पर खाबो का सफर।
1: अगला गीत भी एक और सुपर हिट मार्वल सॉन्ग है, रफी साहब का ही। ये गाना कुछ ऐसा है कि इसे सुनकर पुराने गाने ना पसंद करने वाले भी ये कह उठेंगे कि

0: सच में मोहम्मद रफी साहब की गायकी लाजवाब है, बेजोड़ है, उनके जैसा कोई गा ही नहीं सकता। इस गाने की सिचुएशन कुछ ऐसी है कि एक प्रेमी है जो कि ये जानता है कि वो जिससे प्रेम करता है वो भी उसे पसंद करती है, मगर मुश्किल ये है कि वो ना कर देती है, बार बार इनकार कर देती है। तो ऐसी हालत में उसकी समझ में नहीं आ रहा है कि वो जिए या मरे, क्योंकि उनके बिना जीना भी मुश्किल है और मरना भी मुश्किल है, यानी कि बंदा बीच मझधार में फंस गया है।
1: मुझे लगता है कि ये आप प्रोफेसर 1962 का फिल्म की बात कर रहे हैं।
0: जी
1: जी, बहुत ही खूबसूरत ये फिल्म थी। शैलेंद्र साहब का लिखा ये गीत है, मोहम्मद रफी साहब का गाया, शंकर जयकिशन का संगीत बद्ध ये गीत जिसका जिक्र आप कर रहे हैं। और यहाँ पर जैसे कि आपने बताया वैसे ही कहानी थोड़ा सा ट्रेजेडी वाला है। एक प्रीतम नाम का व्यक्ति लड़का है जो अपनी माँ के ऑपरेशन के लिए पैसे की सख्त जरूरत होती है। दो लड़कियों के लिए एक बुजुर्ग प्रोफेसर के रूप में गीत रचते हैं और उनकी चाची की हट है कि उन्हें कोई युवा पुरुष सिखाएगा नहीं। अब बात यहाँ थोड़ा सा कश्मकश वाली आती है और इनको पैसे की जरूरत है और ये संगीत के माध्यम से पैसे इकट्ठा करना चाहता, लेकिन वहां पर उनकी चाची जो है लड़के को संगीत सिखाना नहीं देती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। शम्मी कपूर, ललिता पवार और टुनटुन पर पिक्चराइज किया गया ये खूबसूरत फिल्म है जिसका गाना अभी हम चाहेंगे कि थोड़ा सा गुनगुना के बताइए।
0: जी,

0: मोहिनी, आज हम और तुम दोनों मिलकर रसराज की रंग भरी सुराई में तूफान उठा दें। इससे इतना रस छलक पड़े कि उस जमाने की प्यास बुझ जाए जिसमें हम और तुम जी रहे हैं।
1: हाँ रचो जितने गीत रचना चाहते हो, जब तक रचते रहोगे मैं उन्हें सुर में गूंज कर नाचती रहूंगी। देखें पहले शब्द थकते हैं या भाव।
2: कारी कारी कारी अंधियारे की रात, एक दिन की बात, जब सघन गगन से घन न न न न गरज उठी, सावन की घटा घूंघट में छपा कर, चपल चपल बिजली की छटा, किकनार कर के सिंगार, किकनार तीखी तलवार, या थी वो कटार कर के सिंगार, चली उस पार जहाँ थे उसके किसन मुरार, चमक झुम झुम, रमक झुम झुम, चमक झुम झुम।

सना ना साना ना पावन चले झना ना झना ना झांझर बोले अमृत घोले दिल न डोले कामिनिया चले हौले हौले नया न झुके पग न रुके बेला मिलन की न टले अचरा ढले दीपक जले पिया मिलन गोरी चले छुम छुम छुम छमक छमक झुम झुम झुम छमक झमक छुम छुम छुम छमक छमक।

गिरे बरसात उठे घन घोर घटा करे शोर पपिया पी है कहाँ मेरा पी है कहाँ कहे गोरी के प्राणों का प्राण पपिया सन में लगन लगी मन में अगन जगी बंद किए दोना नैन उभारे प्यार पुकारे तो प्रीत किनारे चली है वो सांसों की डोर सहारे।

नदियाँ पहाड़ कर पार, गोरी नार आई प्रीतम के द्वार, अभिसार करने भैयों में बांध अपने प्रीतम की, साध लगी प्राणों में अमृत सा प्यार भरने।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: जब हम अपने आप को परमिशन देते हैं ना गुस्सा करने की, तो हम दिन में दो चार बार कर देते हैं। अब जितनी बार हम करेंगे वो संस्कार क्या होता जाएगा, वो संस्कार पक्का होता जाएगा। जैसे सपोज किसी को स्मोकिंग की आदत है तो वो कहते हैं दिन में सिर्फ दो, लेकिन अगर अब उन्होंने कहा 3 दिन बिल्कुल नहीं, तो वो 3 दिन में उन्होंने उस आदत को कमजोर करना शुरू किया। तो कोई भी आदत को खत्म करने का एक ही तरीका है सिर्फ, कि उसको कर्म में आने नहीं देना। जितनी बार वो आएगी वो सिर्फ क्या होती जाएगी, स्ट्रेंथन होती जाएगी।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: आज मैं आत्मा ड्राइवर ये गाड़ी मुझे चलानी है कि मेरी आंखें मेरे हिसाब से चले, मेरा मुख मेरे हिसाब से बोले, मेरा हाथ वो ही करे जो सही है कर्म और मन वो ही सोचे जो सही है। दैट वुड बी दैट माई कार इज इन माई कंट्रोल। सो लाइक दिस फाइव पीपल आर स्टेइंग इन द हाउस, पांच आत्माएं ड्राइवर और उनकी अपनी अपनी एक गाड़ी। अगर हर आत्मा का अपनी गाड़ी पे कंट्रोल होता तो जर्नी कैसी होती उस रोड के ऊपर? ब्यूटीफुल। हर एक ने प्यार से निकल जाना, हर एक ने एक स्टीयरिंग व्हील घुमाना है, थोड़ा सा दूसरा आ भी रहा होगा तो उसने ऐसे टर्न करना है, उसने घूम जाना, एक्सीडेंट कभी होता ही ना। द पावर टू मोल्ड, द पावर टू एडजस्ट, द पावर टू टर्न हियर, द पावर टू ब्रेक स्टॉप, सब कुछ हो जाता अगर ये गाड़ी मेरे कंट्रोल में होती तो। और अगर पांचों की होती तो वो जीवन, वो घर स्वर्ग होता, राइट? अब अगर सपोज चार की भी नहीं है, एक भी अपने करना शुरू करते हैं, सी, तो कितनी सारी चीजें बचेंगी अगर एक आत्मा अपने ऊपर संयम ले आए। दिस इज द पावर दैट वी हैव। लेकिन अगर पांचों ने अपना ध्यान नहीं रखा, अपनी उनकी ब्रेक्स चलती नहीं, उनका स्टीयरिंग व्हील उनके कंट्रोल में नहीं, लेकिन वो चाहते हैं कि वो बाकी सब गाड़ियां मेरे हिसाब से चलें, तो एक क्षण भी बिना एक्सीडेंट के नहीं चलेगा उस घर के अंदर। दिस इज द रियलिटी ऑफ आवर लाइफ टुडे।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.1।

0102 बोरियत की एरर, नएपन की कमांड रिजेक्टेड। अब हर चीज हर जगह तो नहीं मिलती, कुछ नयापन चाहिए तो सुनिए पूरे री आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: अपने आप को देखें एंड प्रिपेयर माई सेल्फ फॉर टुडे। आज सारा दिन में बातें आएंगी, लोग कुछ कुछ ऐसा करेंगे या कहेंगे विच विल नॉट बी अकॉर्डिंग टू द वे आई वॉन्ट देम टू बी। आज सारा दिन अवेयरनेस एंड चेकिंग, कौन ज्यादा पावरफुल है, बातें, सिचुएशंस और मी, किसका प्रभाव किस पर पड़ता है। आज सारा दिन सिर्फ चेकिंग, बात आई बात गई, मुझ पर उसका कितना प्रभाव पड़ा। दिस इज माय चेकिंग फॉर टुडे।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: अपने आप को देखें एंड प्रिपेयर माइसेल्फ फॉर टुडे। आज सारा दिन में बातें आएंगी, लोग कुछ कुछ ऐसा करेंगे या कहेंगे which will not be according to the way I want them to be. Aaj sara din, awareness and checking. Kaun zyada powerful hai? Baatein, situations or me? Kiska prabhav kis par padta hai? आज सारा दिन सिर्फ चेकिंग, बात आई बात गई, मुझ पर उसका कितना प्रभाव पड़ा। दिस इज माय चेकिंग फॉर टुडे।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

साथ आकर पाना छोड़ो, ललचा के चुप जाना छोड़ो, पास आओ तड़पाना छोड़ो, ललचा के चुप जाना छोड़ो, यूं नहीं।

Para todos.

जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है जिंदगी उसी के आगे सिर झुकाती है। नमस्कार, मैं हूँ अमोल। आप सभी रेडियो पुनेरी आवाज सुनने वालों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: खुशी को निरंतर बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के प्रेरणादायी विचार।
1: जैसे गुस्सा एक एनर्जी है, खुशी भी एक एनर्जी है। जैसे कोई मुझे गुस्सा नहीं दिला सकता, वैसे कोई मुझे खुशी भी नहीं दिला सकता। ये एक एनर्जी है जो मेरे अंदर है, और बाहर की कोई भी फिजिकल चीज, एक कार, एक बंगलो, एक डेजिग्नेशन, वेरी बिग सैलरी फिगर या एक व्यक्ति, वो मेरे अंदर उस एनर्जी को नहीं क्रिएट कर सकता है। दैट एनर्जी कैन ओनली बी क्रिएटेड बाय मी। बट व्हाट आई डू इज कि उस चीज को लेकर आई कैन क्रिएट दैट एनर्जी। ये लैपटॉप है, तो लैपटॉप मेरे अंदर हैप्पीनेस नहीं क्रिएट कर सकता। ये एक फिजिकल चीज है, ये एक एनर्जी है। ये फिजिकल चीज उस एनर्जी को नहीं क्रिएट करता, बट द थॉट दैट आई क्रिएट, नाउ आई हैव अ लैपटॉप, यू नो, ये थॉट जो क्रिएट कर ली, ये थॉट वो पॉजिटिव एनर्जी को क्रिएट कर देता है। तो सबसे पहली रियलाइजेशन ये है कि कोई भी बाह्य चीज या व्यक्ति उस फीलिंग को नहीं क्रिएट कर रहा है, मेरी अपनी थॉट्स, क्योंकि हमने चेन में देखा कि थॉट गिव्स राइज टू फीलिंग, नथिंग एल्स। कोई भी और चीज वो फीलिंग नहीं क्रिएट कर सकती है। तो नाउ इट्स इन माई हैंड कि लैपटॉप लाने के बाद मैं उस अच्छी फीलिंग को क्रिएट करूं, या बिना लैपटॉप के भी उसको क्रिएट कर लूं, या वेट करती रहूं, एक साल सेव करती रहूं कि जिस दिन लैपटॉप आएगा तब वो अच्छी वाली फीलिंग क्रिएट करूं। यू नो, इट्स इन माय हैंड कि मैं कितना देर खुश रहना चाहती हूं। डू आई वांट देन, नाउ व्हाट हैज हैपेंड, हैप्पीनेस वी हैव मेड इट वेरी टेम्पररी, कि ये होगा तो खुशी। दैट्स बिकॉज जब वो चीज होती है हम अपने आप को उस तरह की अच्छी थॉट्स देते हैं, अच्छी फीलिंग आती है। लेकिन जब हमें समझ में आ जाता है कि ये मेरी अपनी क्रिएशन है, एंड आई कैन क्रिएट इट व्हेन, वेयर एवर एंड फॉर हाउ एवर लॉन्ग आई वॉन्ट, सो देन इट्स माई चॉइस। सो नाउ इट्स योर चॉइस, आप जितनी देर खुश रहना चाहते हैं क्रिएट इट।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: अरे मनु आओ आओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। आज आगे की कहानी जो सुनानी ज्योतिबा फूले जी की, सुननी है ना कहानी?
1: हाँ हाँ बिल्कुल सुननी।

0: लेकिन आज आप सीधा कहानी सुनाने की बात कर रहे हैं। लगता है आज मुझसे ज्यादा जल्दी आपको है ज्योतिबा फूले जी के बारे में आगे की कहानी सुनाने की।
1: हाँ, आज मेरा एक छोटा सा नन्हा दोस्त जो आने वाला है, वो मैं कहानी सुनाने के बाद मुझे अपने नन्हे दोस्त शुभम से भी मिलना है।
0: शुभम? कौन शुभम?
1: बताऊंगा, सब बताऊंगा। पहले कहानी तो सुन ले।
0: हाँ हाँ बिल्कुल, ज्योतिबा फूले जी की आगे की कहानी सुनने के लिए मैं तो कब से इंतजार कर रही हूँ। आखिर उन्होंने उस समय अपनी पत्नी सावित्री बाई फूले जी को पढ़ाया जो था, जबकि पूरा का पूरा समाज उनके विरोध में था।
1: हाँ, ऐसे ही श्रेष्ठ विचारों के धनी थे ज्योतिबा फूले। चलो तो मैं सुनाता हूँ आगे की कहानी। ज्योतिबा फूले की संत महात्माओं की जीवनियाँ पढ़ने में बड़ी रुचि थी।
0: अच्छा।
1: उन्हें ज्ञान हुआ कि जब भगवान के सामने सब नर नारी समान है तो उनमें ऊंच नीच का भेद क्यों होना चाहिए। महिलाओं की दशा सुधारने और उनकी शिक्षा के लिए ज्योतिबा ने 1854 में एक स्कूल खोला।
0: अच्छा।
1: इस काम के लिए देश में ये पहला विद्यालय था। लड़कियों को पढ़ाने के लिए अध्यापिका नहीं मिली।
0: अच्छा।
1: तो उन्होंने कुछ दिन खुद ही काम करके अपनी पत्नी सावित्री बाई फूले को इस योग्य बना दिया।
0: अरे वाह।
1: उच्च वर्ग के लोगों ने आरंभ से ही उनके काम में बाधा डालने की चेष्टा की, किंतु जब फूले आगे बढ़ते ही गए तो उनके पिता पर दबाव डालकर पति पत्नी को घर से निकलवा दिया।
0: अरे।
1: इससे कुछ समय के लिए उनका काम रुका जरूर, पर जल्दी ही उन्होंने एक के बाद एक बालिकाओं के 3 स्कूल खोल दिए।
0: क्या बात है।
1: और अछूतों के उद्धार के लिए ज्योतिबा फूले ने उनके अछूत बच्चों को अपने घर पर पाला।
0: अच्छा।
1: और अपने घर के पानी की टंकी उनके लिए खोल दी। परिणाम स्वरूप उन्हें जाति से बहिष्कृत कर दिया गया।
0: अरे।
1: कुछ समय तक एक मिशन स्कूल में अध्यापक का काम मिलने से ज्योतिबा का परिचय पश्चिम के विचारों से भी हुआ।
0: ओके।
1: पर ईसाई धर्म ने उन्हें कभी आकृष्ट नहीं किया। 1853 में पति पत्नी ने अपने मकान में प्रौढ़ों के लिए, बुजुर्गों के लिए रात्रि पाठशाला खोली।
0: अरे वाह।
1: इन सब कामों से उनकी बढ़ती ख्याति देखकर विरोधियों ने एक बार तो 2 हत्यारों को उन्हें मारने के लिए तैयार किया था।
0: अरे लेकिन फिर क्या हुआ?
1: पर वे ज्योतिबा की समाज सेवा देखकर उनके शिष्य बन गए।
0: अच्छा, ये तो कमाल की बात है।
1: दलितों और निर्बल वर्ग को न्याय दिलाने के लिए ज्योतिबा ने सत्य शोधक समाज स्थापित किया। उनकी समाज सेवा देखकर 1888 ईस्वी में मुंबई की एक विशाल सभा में उन्हें महात्मा की उपाधि दी गई।
0: अच्छा।
1: वे बाल विवाह विरोधी और विधवा विवाह के समर्थक थे। वे लोकमान्य के प्रशंसकों में से थे। जब 1873 में महात्मा फूले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी, उसी साल उनकी पुस्तक गुलामगिरी का भी प्रकाशन हुआ।
0: अच्छा।
1: दोनों ही घटनाओं ने पश्चिम और दक्षिण भारत के भावी इतिहास और चिंतन को बहुत प्रभावित किया। महात्मा फूले की किताब गुलामगिरी बहुत कम पृष्ठों की एक किताब है।
0: अच्छा।
1: लेकिन इसमें बताए गए विचारों के आधार पर पश्चिमी और दक्षिणी भारत में बहुत सारे आंदोलन चले। उत्तर भारत में चल रही दलित अस्मिता की लड़ाई के बहुत सारे सूत्र गुलामगिरी में ढूंढे जा सकते हैं। आधुनिक भारत महात्मा फूले जैसे क्रांतिकारी विचारक का बड़ा आभारी है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने।
1: ज्योतिबा फूले और सावित्री बाई फूले के कोई संतान

0: नहीं थे, इसलिए उन्होंने एक विधवा के बच्चे को गोद ले लिया था। ये बच्चा बड़ा होकर एक डॉक्टर बना और इसने भी अपने माता पिता के समाज सेवा के कार्य को आगे बढ़ाया।
1: अच्छा,
0: मानवता की भलाई के लिए किए गए ज्योतिबा के निस्वार्थ कार्यों के कारण मई 1888 में उस समय के एक और महान समाज सुधारक राव बहादुर विठल राव कृष्णाजी वंदेकर ने उन्हें महात्मा की उपाधि प्रदान की थी।
1: अच्छा,
0: जुलाई 1888 में उन्हें लकवे का अटैक आ गया, जिसकी वजह से उनका सारा शरीर कमजोर होता जा रहा था, लेकिन उनका जोश और मन कभी कमजोर नहीं हुआ था। 27 नवंबर 1890 को उन्होंने अपने सभी हितेशियों को बुलाया और कहा कि अब मेरे जाने का वक्त आ गया है, मैंने जीवन में जिन जिन कार्यों को हाथ में लिया है उसे पूरा किया है, मेरी पत्नी सावित्री ने हर दम परछाई की तरह मेरा साथ दिया है और मेरा पुत्र यशवंत अभी छोटा है और मैं इन दोनों को आपके हवाले करता हूँ। इतना कहते ही उनकी आंखों से आंसू आ गए और उनकी पत्नी ने उन्हें संभाला।
1: अच्छा,
0: 28 नवंबर 1890 को ज्योतिबा फूले ने देह त्याग दिया और एक महान समाज सेवी इस दुनिया से विदा हो गया। अपने जीवन काल में उन्होंने कई पुस्तकें भी लिखी, जैसे कि तृतीय रत्न, छत्रपति शिवाजी, ब्राह्मणों का चातुर्य, किसान का कोड़ा, अछूतों की कैफियत।
1: अच्छा, इतनी सारी किताबें।
0: महात्मा ज्योतिबा और उनके संगठन के संघर्ष के कारण सरकार ने एग्रीकल्चर एक्ट पास किया।
1: अच्छा,
0: धर्म समाज और परंपराओं के सत्य को सामने लाने हेतु उन्होंने और भी अनेक पुस्तकाएं लिखी हैं।
1: महात्मा ज्योतिबा फूले की कहानी सुनकर सच में दिल गर्वित तो हुआ ही, साथ में सच्चाई के लिए लड़ाई करने के लिए और हिम्मत मिल गई।
0: वो वहाँ देख रही हो मनु?
1: हाँ, वो एक बच्चा एक महिला के साथ जो बैठा है।
0: उनके साथ वो जो बच्चा है उसका नाम शुभम है, 5वीं कक्षा में पढ़ता है।
1: अच्छा, तो ये है आपका दोस्त शुभम, बहुत ही प्यारा लग रहा है वैसे तो।
0: हाँ, वो अक्सर यहाँ आता है अपनी दाई माँ के साथ, लेकिन पता है शुभम थोड़ा चिढ़ा हुआ सा रहता है, अपने माता पिता की बात सुनता ही नहीं।
1: आपको कैसे पता? क्या उसके माता पिता भी यहाँ आते हैं?
0: नहीं, शुभम की दाई माँ किसी से बात करती है तो ये सब बोलते सुना है मैंने, और शुभम का कुछ मुरझाया हुआ सा चेहरा, उसकी चिड़चिड़ाहट को विदाई देती उसकी प्यारी सी मुस्कान, उसकी प्यारी साथी उसकी बॉल के साथ ही दिखाई देती है।
1: ओह, पर इतना प्यारा बच्चा ऐसा क्यों करता है? मुझे लगता है थोड़ा शैतान होगा।
0: नहीं मनु, शुभम के माता पिता दोनों काम पर जाते हैं, कभी कक्षा में पड़ी टीचर से डांट और कभी दोस्त से हुआ झगड़ा, वो किसी से नहीं कह पाता। माता पिता उसे सब लेकर देते हैं, कपड़े, खिलौने, यहाँ तक कि फोन भी, लेकिन ये सब माँ बाप के साथ बिताए समय उनसे बांटी गई बातों की जगह तो नहीं ले सकते ना।
1: तो क्या ये सब शुभम के माता पिता को नजर नहीं आता?
0: शुभम के माता पिता को लगता है वो बिगड़ गया है, जिद्दी हो गया है, इसलिए उसे चुप कराने के लिए डांट या मार का सहारा लेते हैं। लेकिन पता है मनु, अक्सर चिड़चिड़ाहट प्यार की कमी का प्रतीक होती है। हमारे आसपास भी कई शुभम हैं, कुछ छोटे और कुछ उम्र में बड़े भी।

0: में जो जूते पर फूले जी के पास थे और आज भी हमें उन्हें संरक्षित करने की बहुत जरूरत है। आज जो विशेष बात मैंने चुनी है वो ये है कि ज्योतिबा फूले जी ने सभी को समान दृष्टि से देखा, न किसी को अछूत, न किसी को छोटा, न कम, न नीचे, न ऊपर, बल्कि सब समान, सभी मनुष्य एक जैसे हैं, चाहे महिला हो या पुरुष। और मुझे ये लगता है कि अगर आज के समय में भी हम किसी को कमजोर, अपने से कम, छोटा, नीच या ऐसा समझते हैं कि वो हमारे बराबर बैठने का हकदार नहीं है या किसी से बुरी तरीके से बर्ताव करते हैं सिर्फ उसकी जाति के कारण या वो जो कार्य करता है उसके कारण, तो मुझे लगता है हम ज्योतिबा फूले जी की वैल्यूज का अपमान कर रहे हैं। दोस्तों, अगर हम ज्योतिबा फूले जी को फॉलो करते हैं, अगर हमारे अंदर उनके लिए प्रेम है, तो उनके सिद्धांतों से भी हमें प्रेम करना होगा और सभी को एक समान दृष्टि से हमें देखना है, क्योंकि वो कहते हैं ना, कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता। हम सभी बराबर हैं, हम सभी दोस्त हैं, हम सभी भारतीय हैं। जय हिंद, जय भारत। आप सुन रहे हैं रेडियो पुणे की आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: ऐतिहासिक, सामाजिक व सांस्कृतिक माहिती देणारे आपले झक्कास रेडिओ स्टेशन पुणेरी आवाज ऐकत रहा 107.8 FM। आनंदी रहा आणि आनंद लुटा।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: मेजोरिटी पीपल सिर्फ अगर अपने जीवन और अपने मन की एक्सरे करनी है उस क्षण चेक करें जब सुबह उठते हैं। अगर सुबह उठते फर्स्ट थॉट आती है कि मुझे थोड़ा और सोना है, इसका मतलब मेरी जो 6 घंटे के 8 घंटे की नींद थी मेरी उसमें रेस्ट और रिचार्ज

0: एक्सचेंज नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? शरीर सो रहा था लेकिन मन अभी भी कंटिन्यूसली चल रहा था। मन की बात का समाधान नहीं मिला उसको। अब हमारा मन अगर उसको उसकी बात का समाधान नहीं मिलता है तो वो 5 दिन नहीं 5 साल चल सकता है उस प्रॉब्लम के साथ, 50 साल चल सकता है उस प्रॉब्लम के साथ। और अगर फिर भी समाधान नहीं मिला तो आत्मा शरीर छोड़ेगी, दूसरा शरीर लेगी और वो ही सोच और संस्कार अपने साथ लेकर जाएगी।
1: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: उस्तादी दिखाओगे या कव्वाली शुरू करोगे?
1: अरे कव्वाली सुनाता हूँ, सुनो छोकरे लोग, आज ऐसा जम के बजाओ कि मेरी जोरू का तंबू हदर जाए।
0: और बहनों ऐसा गाओ कि मेरे मियाँ का झोपड़ा उड़ जाए।
1: बजाओ रे।

0: अरे पगली, अगर मैं तेरे को हंसाया तो फैमिली प्लानिंग वाले रोएंगे ना। तू जानती है तू कौन है?
1: क्या हूँ?
0: चिकनी मट्टी का लोटा है तू,
1: कच्चे बांबू का छोटा है तू,
0: पूरी टुन टुन की अम्मा है तू।

Buneri Awaz 107.8 FM World Renewal Spiritual Trust ka samudayik radio. खुश रहो, खुशियां बांटो.

0: ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज फिर आप सबका स्वागत। जैसे ही बात हम स्पिरिचुअलिटी की करते हैं या अध्यात्म की करते हैं, लगता है कि किसी और के बारे में बात की जाने वाली है, लेकिन जैसे ही बात अपने जीवन की हो रही होती है तब हम सुनना चाहते हैं। तो एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं इस नई श्रृंखला में जिसमें हम बात जिंदगी की कर रहे हैं। और जहां अध्यात्म हुआ, जहां स्पिरिचुअलिटी हुई, वो सचमुच बात मेरी ही तो हो रही होती है। अगर आपको याद हो, पिछली कड़ी में हमने बात की थी खुशी की। सब कुछ होते हुए भी कभी ऐसा लगता है कि हम खुश नहीं हैं। और एक बात जिस पर छूटी थी वो बात, जो कड़ी हमारी खत्म हुई थी, वो थी कि हम सबका ध्यान रखते हैं लेकिन खुद यानी इस बॉडी या इस पर्सनैलिटी का नहीं, बल्कि जो मैं हूं द बीइंग, उसका ध्यान नहीं रखते हैं। कैसे रखना है वो ध्यान और उसी से जुड़ी और कई सारी बातें इस पूरी श्रृंखला में हम करने वाले हैं। आज की कड़ी को शुरू करते हैं। हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य, हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति
0: सिस्टर शिवानी। अगर पिछली कड़ी पर नजर डालते हैं, बहुत कुछ हमने एक नए अंदाज से देखने की कोशिश की और जो बात आई थी कि सब कुछ हो रहा होता है, सबका ध्यान हम रखना चाहते हैं, कहीं आपने कहा कि हम ध्यान अपना नहीं रख पाते हैं। ध्यान अपना इन द सेंस खाना खाना है, फिजिकली ड्रेस अच्छी पहननी है, आई शुड लुक गुड, परफेक्टली फाइन, सब कुछ है वो रखते हैं, लेकिन
1: चेयर शुड बी कम्फर्टेबल,
0: ओह यस, माय कार शुड बी, एयर कंडीशनिंग शुड बी परफेक्ट, यू नो, मुझे पसीने नहीं आने चाहिए, अनकम्फर्टेबलनेस नहीं होनी चाहिए, लेकिन
1: विच इज वेरी गुड, सी व्हाट अ ब्यूटीफुल सेंटेंस, अनकम्फर्टेबल नहीं होना चाहिए मीन्स कम्फर्टेबल होना चाहिए। शरीर के लिए कितना ध्यान रखते कम्फर्टेबल होना चाहिए आप?
0: मन के बारे में हम भूल ही जाते हैं, क्योंकि मन के बारे में ध्यान रखना हमें आता ही नहीं शायद। एक यहाँ पे मैं आपसे बात पूछना चाहती हूँ। आपने कहा कि हम ध्यान नहीं रखते कि हम खुश कितना है, लेकिन हम सब कुछ जो कर रहे हैं उसमें तो मुझे खुशी मिल रही है, फिर ध्यान कैसे नहीं रखते? मेरा बच्चा जब खाना खा लेता है या मेरा बॉस मुझसे खुश हो जाता है, मैंने एक अच्छी सी अचीव कर ली अपनी कोई चीज, मुझे बहुत खुशी मिलती है। मेरे पेरेंट्स, अगर मैं कुछ ऐसी चीज करके उनको देती हूँ और वो खुश होते हैं, आई फील वेरी गुड, यू नो, दिस गिव्स मी हैप्पीनेस, तो फिर कहाँ ध्यान नहीं रखा? मैंने जो सारी चीजें की, अपने वाइफ के लिए किया या अपने बच्चे के लिए किया, मुझे इसी में तो खुशी मिल रही है, तो फिर मेरे को क्यों है कि मैं, आपने कहा कि हम ध्यान नहीं रखते, हम ध्यान तो रख रहे हैं।
1: आई डोंट नो, वी हैव टू, एवरी वन हैज टू आस्क देमसेल्फ। जो हैप्पीनेस इंडेक्स की हम बात कर रहे हैं कि मेरी स्टेट ऑफ माइंड कैसी है, यू और मी और एनी वन एल्स हैज नो राइट टू से कि हर एक का इंडेक्स क्या है, लेकिन जब हम लोगों से बात करते हैं, सबसे मिलते हैं, तब यही कहीं ना कहीं सबसे रिस्पॉन्स आ रहा है कि वो जो होना चाहिए वो नहीं
0: तो बात है
1: ना, वो नहीं आ रहा। सो लेट्स नॉट मेक अ जनरलाइज स्टेटमेंट, लेकिन लेट एवरी वन जस्ट चेक फॉर देमसेल्फ, क्योंकि हो सकता है कि आई एम

0: क्योंकि आप खुश नहीं हो, बट एक्चुअली आप बहुत खुश हो, विच इज एब्सोल्युटली फाइन, क्योंकि ये आपको किसी और से मिलने वाला पैरामीटर नहीं है. दिस इज वन थिंग जो सिर्फ आप और सिर्फ आप अंदर जानते हैं. कई बार स्पेशली आप जिस प्रोफेशन में है, लेट्स से आपका रोल है सारा दिन स्माइल करना, यू नो, ऑलवेज बी सो ब्यूटिफुल एनर्जेटिक, नॉट जस्ट ब्यूटिफुल लेकिन एनर्जेटिक ऑन द फेस हैज टू बी ऑलवेज बहुत वेलकमिंग, बहुत. लेकिन हो सकता है आप अंदर आज खुश नहीं हो. इज दैट पॉसिबल और नॉट पॉसिबल?
1: मैक्सिमम टाइम्स इज
0: तो. लेकिन इस वास्तविकता को कि आप अंदर कैसा फील कर रहे हो सिर्फ आप जानते हो. क्योंकि आज जो एक बहुत कॉमन बात भी निकल कर आती कि मैं इतना कर रहा हूँ, इतना कर रहा हूँ, क्योंकि हम अपनी कैपेसिटी से कई गुना ज्यादा आज करने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी हम खुश नहीं है. एंड फिर हम साथ साथ ये भी कहते हैं वो भी खुश नहीं है मेरे से.
1: एक्चुअली हमने सब कुछ किया. देख एक्चुअली मेरी खुशी तब खत्म हुई कि मैंने कुछ किया उनके लिए. सपोज मैंने बच्चों के लिए कुछ ऐसी चीज बनाई जो मैं चाहती हूँ, जो आई नो कि मैं बहुत अच्छा बनाऊंगी और उन्हें अच्छा लगेगा. चाहे मैंने पिज्जा बनाया सपोज, और मैंने बनाया, उन्होंने खाया और उन्हें अच्छा नहीं लगा, तो मैंने बड़ा खुश होकर बनाया था लेकिन वो खुश नहीं हुए, तो मैं भी खुश नहीं हुई. फिर मुझे और फिर मुझे गुस्सा चढ़ना शुरू होता है.
0: आपने खुश होकर नहीं बनाया था, आपने बनाया था ये सोचकर कि जब वो खाएंगे तब वो खुश होंगे, वो खुश होंगे तो मैं खुश होंगी. इट्स अ डिफरेंस.
1: देखिए मैं बनाते वक्त ये सोच के खुश थी.
0: हाँ, ये सोच के खुश थे कि वो खुश होंगे तो दिस विल गिव मी हैप्पीनेस. सो इट वाज अ प्रेपरेशन फॉर दैट स्टेट ऑफ हैप्पीनेस. कि जब मैं आपके लिए, यू नो, हम क्या होता है, हम एक पिक्चर ऑलरेडी क्रिएट करना शुरू कर देते हैं फ्यूचर की, कि एक घंटे के बाद ये होगा, ये मैं बनाऊंगी, वहां लेकर जाऊंगी, वो देखें. दैट इज व्हाट इट्स अ स्टिम्युलेंट व्हिच इज गिविंग मी हैप्पीनेस. कि वो सीन जो मुझे खुशी देने वाला है, मैंने उस सीन को पहले से क्रिएट कर लिया. यू नो, लेट्स से कि मैं आपको कुछ खिलाऊंगी, आप बहुत खुश होंगे, तो वो मुझे खुशी मिलेगी. लेकिन बनाते बनाते मैं वो सीन ऑलरेडी क्रिएट कर लेती हूँ. दिस इटसेल्फ शोज द पावर ऑफ द माइंड. कि सिचुएशन अभी हुई भी नहीं है, वो पिज्जा अभी बना भी नहीं है, लेकिन वो जो मैं सीन क्रिएट कर लेती हूँ वो ऑलरेडी मुझे वो देना शुरू कर देता है. लेकिन साथ साथ मेरा माइंड ये भी प्रिपेयर होता जा रहा है, ऐसे वो खुश होंगे फिर मैं खुश होंगी, ऐसे वो खुश होंगे फिर मैं खुश होंगी. अब सपोज जो रियलिटी हुई वो उस इमेज के साथ मैच नहीं की. आपने जो इमेज यहाँ डेटा फीड कर दिया था वो ये था कि बच्चे खुश होंगे देन आई विल बी हैप्पी, बट आपने कहा बच्चे खुश नहीं हुए. तो फिर रिजल्ट क्या होगा?
1: गुस्सा. यू नो बिकॉज देयर इज सो मच ऑफ वन लेट डाउन की फीलिंग, टू फ्रस्ट्रेशन, एंड थ्री यू नो मतलब एक ऐसा मतलब फीलिंग ऑफ यू नो नॉट बीइंग वेरी हैप्पी एक्चुअली.
0: तो आपने अपने माइंड को पहले कंडीशन किया ना, माइंड की इतनी तैयारी की थी कि ऐसे वो खाएंगे फिर उनको अच्छा लगेगा, फिर वो मेरी प्रेस करेंगे, फिर वो खुश होंगे, फिर मैं, तो माइंड को पूरा क्या प्रोग्रामिंग किया. दिस इज ऑल्सो प्रोग्रामिंग ऑफ द माइंड. माइंड को पूरा प्रोग्राम किया कि ये इंस्ट्रक्शन होगी, फिर ये होगी, फिर ये होगी, रिजल्ट होगा हैप्पीनेस. तो जो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम कोडिंग की हमने माइंड की वो क्या की, कि डेटा ये होगा बच्चे खुश होंगे, रिजल्ट ये होगा मैं खुश होंगी. जब डेटा चेंज हो गया कि बच्चे खुश नहीं हुए तो रिजल्ट भी तो चेंज हो जाएगा.
1: लेकिन उसके लिए मैं तैयार नहीं थी. और ये प्रोग्रामिंग मैंने कब की तुम्हें पता
0: है? प्रोग्रामिंग पिज्जा बनाते टाइम.
1: हाँ,
0: अभी तो कहा बनाते टाइम सी वी आर डूइंग द प्रोग्रामिंग. माइंड थोड़ी बना रहा है, मैं बना रही हूँ, लेकिन मन तो वो एंटिसिपेट कर रहा है ऑलरेडी, उस सीन को क्रिएट कर रहा है. सो ये कोडिंग चल रही है मेरी, लेकिन कोडिंग में इंस्ट्रक्शंस बहुत क्लियर हैं. ये अगर मैं कोडिंग थोड़ी सी डिफरेंट कर दूं,
1: और मैं कहूँ कि अगर वो खुश ना भी हो तो कोई बात नहीं.
0: नहीं, डोंट लाइक द कोडिंग.
1: आई वॉन्ट देम टू बी हैप्पी.
0: ये हो अगर मैं ये कोडिंग करूँ कि मैं ऑलरेडी खुश हूँ, मैं बनाते हुए भी खुश हूँ, उनको खिलाते हुए भी खुश हूँ. अगर उनको वो बहुत ज्यादा पसंद नहीं आया, दैट्स जस्ट अ क्वेश्चन ऑफ टेस्ट, दैट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ हैप्पीनेस. मिक्स कर दिया ना मैंने दोनों चीजों को.
1: मेरी क्रेडिबिलिटी कहीं ना कहीं आ गया.
0: हाँ, तो ईगो पर तो वो टच हुआ, लेकिन क्वेश्चन ऑफ टेस्ट है कि हो सकता है उनको वो पसंद नहीं आया. लेकिन जब मैंने रिएक्ट कर दिया उस बात को कि मैंने इतनी मेहनत की, तुम्हारे लिए बनाया, तुमको पसंद है, तब वो पिज्जा तो रह गया साइड पे, लेकिन तब जो सीन क्रिएट हो जाएगा बाद में सारा. तो बनाने क्या चले थे? खुशी बनाने चले थे और हो गई कुछ और. तो ये जो कोडिंग हम माइंड की करते हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट है. कि सारा दिन जो एक एक थॉट हम क्रिएट करते हैं इस पर रिजल्ट फिर बहुत डिपेंडेंट होता है. अभी हमारी कोडिंग ऐसे ही हुई है कि ये होगा तो मैं खुश हूँ.

0: ये मेरे से अच्छी तरह से बात करेंगे तो मैं खुश होंगी, उनका फोन आएगा तो मैं खुश होंगी।
1: आई वॉन्ट टू डू थिंग्स फॉर अदर्स यू नो, लाइक सो मेनी टाइम्स वी फील दैट वे, आई वॉन्ट टू डू दिस फॉर माई हस्बैंड, आई वॉन्ट टू डू दिस फॉर माई मॉम, मतलब वट एवर
0: टू मेक देम हैप्पी।
1: यस,
0: बिकॉज व्हेन दे आर हैप्पी
1: आई एम
0: हैप्पी, राइट। सो मैं आपके लिए ये करूंगी ये करूंगी, एंड जो करने वाली हमारी लिस्ट होती है कई बार छोटी छोटी चीजें होती है, लेकिन कई बार बहुत बड़ी बड़ी भी चीजें होती हैं, दे कुड मीन बिग सैक्रिफाइसेस इन माय पर्सनल डिसीजंस। हाँ, लेकिन दे आर ऑल बीइंग डन विद दिस पर्पस कि मैं करूंगी आप खुश होंगे, आप खुश होंगे तो मैं खुश होंगी। अब ये इक्वेशन ठीक है कि आप खुश होंगे तो मैं खुश होंगी, लेकिन बाय चांस अगर दूसरा वाला नहीं खुश हुआ, सामने वाला कोई अपने ही टेंशन में है, कोई अपनी चिंता में है, आप अपने हस्बैंड के लिए बहुत अच्छा कोई गिफ्ट लेकर आ गए, राइट। जस्ट डे बिफोर यस्टरडे इट हैपेंड विद माय नेबर, उसके पास व्हीकल नहीं था, वो दो बस चेंज करके बहुत मेहनत से अपने हस्बैंड के लिए एक शर्ट लेने गई बर्थडे के लिए, ठीक है। लेकिन वो जो शर्ट लेकर आई, बहुत एफर्ट किया, मैंने एक्चुअली सॉ हर डूइंग ऑल दैट, लेकिन जो वो शर्ट लेकर आई तो उसके हस्बैंड को नहीं पसंद आई, ही सेड मैं रात को पहनकर सो जाऊंगी।
1: आई नो इट्स अ हार्ड थिंग,
0: यू सी द व्हाट शी गोस थ्रू आफ्टर दैट, तो शर्ट तो रह गई साइड पे, बट द पेन एंड द क्वेश्चन इज कि दैट शर्ट दैट पिज्जा दैट ऑब्जेक्ट दैट एक्टिविटी
1: बट द अदर शुड बी एक्चुअली लिटिल बिट मोर यू नो कंसिडरेट।
0: हाँ, मतलब हमें दूसरों को बोलना चाहिए प्लीज मेरे से अच्छी तरह से बात करो, अगेन डिपेंडेंसी है ना ये, आप खुश हो जाओ प्लीज, क्योंकि अगर जब आप खुश हो गए तब मैं खुश होंगे, एंड देयर फोर ऑल्सो द ऑपोजिट कि जब आप उदास हो गए या नाराज हो गए या अपसेट हो गए तो मैं भी हो जाऊंगी। सो समवेयर मैंने ये इक्वेशन क्रिएट कर ली है कि जब लोग मेरे आसपास जो खुश होंगे तब मैं खुश होंगी, तब मेरा वो प्रोसेस सारा स्टार्ट हो गया।
1: तो मतलब आसपास सब लोग दुखी रहे और मैं खुश हो जाऊं, ये संभव है?
0: वी डोंट नो, वी विल एक्सप्लोर ड्यूरिंग दिस होल जर्नी, दिस इज व्हाट इट इज ऑल अबाउट, क्योंकि नॉट दैट इट इज बीइंग सेल्फिश, इट्स लाइक सेइंग अगर मेरे आसपास सब बीमार हो तो मैं ठीक रहूं।
1: हाँ, ऑफकोर्स
0: ऑफकोर्स, उसमें ऑफकोर्स हो गया फिर। अभी तो हम कह रहे थे कि जब आसपास हमारे सब बीमार होंगे तो मुझे भी कैसे होना चाहिए,
1: बीमार तो मैं अपने आप ही हो जाती हूँ।
0: एक्चुअली बिल्कुल ऑपोजिट होना चाहिए कि जब मेरे आसपास लोग बीमार हैं और वो भी वो लोग जो मेरे एकदम क्लोज सर्कल में आते हैं, तो उनका ध्यान रखने के लिए भी मुझे पहले किसका ध्यान रखना पड़ता, अपना। फिजिकल लेवल पर भी सेम इक्वेशन अप्लाई करती, इमोशनल लेवल पर भी वही इक्वेशन अप्लाई करती है कि औरों को खुश करने के लिए सिर्फ एक्टिविटी पर नहीं ध्यान रखा जा सकता, कि ये करूंगी ये करूंगी ये करूंगी तो वो खुश हो जाएंगे, नहीं। मूल मंत्र है मैं खुश रहूंगी
1: तो वो खुश होंगे,
0: खुश होंगे।
1: अरे कितनी बार तो हम कहते हैं कि तुम तो मुझे खुश देख ही नहीं सकते हो, यू नो सो मेनी टाइम्स वी टेल अदर्स कि यू कांट सी मी हैप्पी, द मोमेंट आई एम हैप्पी यू क्रिएट समथिंग माई हैप्पीनेस गो।
0: क्योंकि अगेन कितना डीप रूटेड बिलीफ है ना कि दूसरे के स्टेट ऑफ माइंड और बिहेवियर के ऊपर मेरा स्टेट ऑफ माइंड डिपेंडेंट है। सपोज अब मैं बहुत अच्छे मूड में आई सुबह, लेकिन आपका मूड ठीक नहीं है और अब मैं भी डिस्टर्ब हो गई, और फिर मैं उसका ब्लेम आपके ऊपर डालूं कि आपको तो बस अच्छा ही नहीं लगता कि मैं खुश हूं, आपने ऐसे इतनी रूडली बात कर दी कि मेरा मूड भी खराब हुआ। आपका मूड ठीक नहीं है, वो आपकी स्टेट ऑफ बीइंग है, मैं अपना अपने ऊपर वो नहीं रख पाई कंट्रोल, ये तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। व्हाट राइट डू आई हैव टू से टू अनदर पर्सन कि आपकी वजह से मैं डिस्टर्ब हो गई, दिस इज ऑल हैपनिंग, एंड उसकी वजह से बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स और बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि मेरी इक्वेशन इन लाइफ सेट नहीं है। हमने सोचा बाहर से जो एनर्जी आएगी, चाहे वो ऑब्जेक्ट से आएगी, चाहे वो लोगों से आएगी, चाहे मेरे कोई काम से आएगी, वो जो एनर्जी बाहर से आएगी वो मेरे अंदर की एनर्जी क्रिएट करेगी। इसलिए आप अपनी वोकैबुलरी को अगर किसी भी दिन थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे, मैं ये करूंगी
1: तो खुश
0: होगा, ये होगा तो मैं खुश होंगी, बच्चे के 90% मार्क्स आएंगे तो मैं खुश होंगी, उसकी जॉब हो जाएगी, उसकी शादी हो जाएगी, मतलब कुछ बाहर होगा तब मैं खुश होंगी, तब मैं खुश होंगी। सो द इक्वेशन इज आउटसाइड इन, आउटसाइड का प्रोडक्ट इनसाइड के एनर्जी क्रिएट करेगा।
1: पर ये ऐसा ही तो होता है शिवानी बहन, बिल्कुल कि होता है ना ऐसे, मतलब खुशी मुझे मिलती है।

0: ने आपको, वो आप घर में हो बहुत खुश हो, लेकिन आपके बॉस ने आपको फोन कर दिया और कहा कि आज जो आपने सारा काम ऑफिस में किया था उसमें ये गलती है।
1: बस खुशी की।
0: अब पिता तो वही है ना, बच्चे भी वही है, वो अभी भी खुश है। वेयर इज योर हैप्पीनेस गॉन?
1: तुम तो दूसरी सिचुएशन होगी ना, इस सिचुएशन में तुम्हें खुश थी ना,
0: इस सिचुएशन में मुझे सिचुएशन को टाइम तो नहीं लगा ना आके आपकी खुशी को वाइप आउट करने के लिए।
1: तो हर सिचुएशन अपने साथ कैसे खुशी लेकर आते, गम लेकर आते।
0: तो नाउ मेरी लाइफ किस पर डिपेंडेंट है?
1: सिचुएशंस
0: पर। सिचुएशंस में भी लोगों पर, लोगों के मूड पर, लोगों के टेम्परमेंट पर। मेरा टेम्परमेंट डिपेंडेंट है, मेरी स्टेट ऑफ माइंड लोगों पर डिपेंडेंट है। हाउ हेल्दी इज दिस फॉर मी? मेरी फिजिकल हेल्थ, लेट्स कीप ऑन कंपेयरिंग इट बिकॉज तभी समझ में आता है। मेरी फिजिकल हेल्थ बाहर के मौसम, बाहर के इन्फेक्शन, बाहर के बैक्टीरिया पे डिपेंडेंट है।
1: तो मेरा रेजिस्टेंस पावर खत्म है।
0: एग्जैक्टली,
1: यू नो, बिकॉज ये तो होता ही है, जब मेरी रेजिस्टेंस पावर खत्म होती है बॉडी की, तो मुझे सारे इन्फेक्शन हो जाते हैं, मुझे सारा बैक्टीरिया अटैक करता है, सारे वायरस आ जाते हैं।
0: That's the answer. Bacteria तो ऑलरेडी है, इन्फेक्शन तो ऑलरेडी है, लेकिन अगर मैं अपने फिजिकल बॉडी का ध्यान रखती हूँ, अपना इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग रखती हूँ, तो वो मुझ पर अटैक नहीं करता है। लेकिन जैसे ही मेरा इम्यूनिटी सिस्टम क्रैश किया, तो छोटा छोटा वायरस भी, थोड़ा सा मौसम का चेंज मेरे ऊपर,
1: एकदम से सर्दी जुकाम बुखार, ये
0: हियर इट इज, आई बिकम इधर, आई एम स्ट्रांग और आई बिकम वल्नरेबल। तो स्ट्रांग हूँ तो मेरे ऊपर किसी का प्रभाव नहीं आता, मौसम भले बदले, बाहर तूफान हो, बर्फ पड़े, आई नो हाउ टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। लेकिन मैं अपना ध्यान नहीं रखू और सिर्फ बोलती रहूँ मौसम ही ठीक नहीं है, सर्दी इतनी हो गई है या गर्मी इतनी हो गई है, तो बीमार तो पड़ना ही है, तो फिर बीमार रहिए, नो प्रॉब्लम, इट्स अ चॉइस। क्या बीमार रहना चाहते हैं या हेल्दी रहना चाहते हैं, दोनों चॉइस हमारे पास है।
1: हाँ, वेरी ट्रू, लेकिन हमारे पास तो इतनी शक्ति नहीं है ना, यू नो, व्हेन यू सेड कि इधर यू बिकम पावरफुल और यू रिमेन वल्नरेबल, सो बिकॉज आई डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, यू नो, लाइक आई फील दैट दिस इज, आई डोंट हैव द पावर, यू नो, कि मेरे को वो सिचुएशंस अफेक्ट ना करें या मेरी खुशी को ना, यू नो, उस पर ना कुठाराघात करें, तो इसीलिए वो मैं वल्नरेबल हूँ। मैं, आई कैन अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग, एक्चुअली वी ऑल अंडरस्टैंडिंग कि फ्रॉम वेयर इट इज कमिंग, कि वी एक्चुअली आर वल्नरेबल, यू नो, चाहे वो फिजिकल है या मेंटल या खुशी की बात है। हम कर क्या सकते हैं?
0: जैसे हम अपने शरीर का ध्यान रखते हैं,
1: वैसे ही
0: हमें अपने मन का भी ध्यान रखना है। ये उस टाइम नहीं होगा जब परिस्थिति आएगी। आप अपने शरीर के अंदर ताकत तब नहीं भरते जिस क्षण मौसम बदलता है, लेकिन आप एवरीडे डेली बेसिस पर अपने शरीर का ध्यान रखते हैं, तो बाहर कितना भी परिवर्तन आए, बाहर का परिवर्तन अंदर परिवर्तन नहीं क्रिएट कर देता। जैसे शरीर, फिर भी शरीर के अंदर पावर है कि वो बाहर के परिवर्तन के साथ अडेप्ट करके
1: अपना इम्यून सिस्टम, अपना,
0: अगर बाहर से इन्फेक्शन आ रही है लेकिन शरीर के अंदर भी वो
1: एंटीबायोटिक्स, हाँ, वो जो
0: उसको फाइट करेंगे और फिनिश कर देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, आप अपना नॉर्मल काम कर रहे हैं। इसी तरह अगर जैसे शरीर का ध्यान इतना रखते हैं, तो ये सारी चीजें कब आती कब चली जाती पता भी नहीं चलता। अगर मन का भी उसी तरह से ध्यान रखेंगे, हर रोज इसकी सफाई करते रहेंगे, इसको नरिशमेंट देंगे, इसकी एक्सरसाइज करेंगे, तो कब क्या बाहर होता जाएगा, आएगा, चला जाएगा, हम उस सीन को क्रॉस करते जाएंगे। फिर आप वो वाला नहीं सेंटेंस बोलेंगे कि अभी अभी अच्छा फिर अभी अभी खराब, दिस इज हाउ द इंडेक्स इज गोइंग, दिस इज हाउ द इंडेक्स इज गोइंग एक्चुअली, कि जैसी सिचुएशन वैसे मेरी हैप्पीनेस, कभी ऊपर कभी नीचे। क्यों? क्योंकि इट इज डिपेंडेंट ऑन समथिंग आउटसाइड। अपने आप में इसके अंदर कोई पावर नहीं है। आप अच्छा बोलो तो मैं खुश, आप नहीं बोलो तो मैं नहीं खुश। तो मैं सारा दिन क्या करती रहती हूँ, आपको प्लीज करने की कोशिश करती रहती हूँ, ताकि आप मेरे से अच्छा बोलते रहेंगे, क्योंकि एवरीथिंग आई एम डूइंग इज फॉर हैप्पीनेस। एक्चुअली एवरीथिंग दैट आई एम डूइंग इज फॉर हैप्पीनेस, लेकिन प्रोबेबली वेयर आई एम डूइंग इट इज समवेयर, यू नो। तो फिर क्या होता, अभी अभी अच्छा था और अभी अभी उसको खराब होने में टाइम नहीं लगता। तो अगर हम अपनी स्टेट ऑफ माइंड का भी उस तरह से ध्यान रखते जाएंगे, इसलिए हमने उस दिन भी कहा कि ध्यान रखना, तब बैक्टीरिया भले आएगा, कोई कुछ बहुत बुरा कह देगा, कोई नाराज हो जाएगा, बच्चे हमारे से संतुष्ट नहीं होंगे, बॉस फायर कर देगा, ये सब बैक्टीरिया ही तो

0: जो बाहर से आता है, ये परिवर्तन ही तो है जो सारा बाहर से आ रहा है। आज बच्चे बहुत अच्छी तरह से बात कर रहे हैं, कल सडनली रिएक्ट कर गए, कुछ रूडली बोल दिया, कुछ हो गया। परिवर्तन है ना, मौसम में बदलाव आया है, लेकिन मेरे अंदर पावर नहीं है उस बदलाव को फेस करने की। तो जैसे ही वो
1: बदलाव क्या हुआ, मतलब मौसम के बारिश और व्यवहार की जो बारिश है उसमें बहुत फर्क है, क्योंकि मौसम की बारिश के लिए मैं छाता लेके जा सकती हूँ, मैं रेनकोट पहन सकती हूँ,
0: प्रोटेक्शन कर रहे हैं ना,
1: घर से बाहर ना निकलूं।
0: जो छाता नहीं लेके जाता
1: वो पेड़ के नीचे खड़ा हो जाएगा, कुछ न कुछ
0: पेड़ के थ्रू भी उसको लाइटिंग हिट की। तो सो जो नहीं प्रोटेक्ट करेगा वो तो सफर करेगा ना, चाहे फिजिकल हो चाहे इमोशनल। अभी हम बोल रहे हैं कि फिजिकल तो बहुत इजी है, क्यों? क्योंकि हमारे लिए फिजिकल प्रोटेक्शन बहुत इजी लगती है। सेम थिंग कैन हैपन विद इमोशनल प्रोटेक्शन। इमोशनल प्रोटेक्शन भी जब हम अपनी करेंगे तब भी यही लगेगा, तो क्या हुआ उन्होंने रूडली बात कर दी। तो
1: रीच एवर एट द स्टेज कि किसी ने मेरे साथ गंदे तरीके से बात की, मेरी बेइज्जती कर दी, मेरे इंसल्ट कर दी, मुझे रिजेक्ट कर दिया, वो मुझे हर्ट नहीं होगा?
0: डोंट यू थिंक यू आर ऑलरेडी वर्किंग ऑन योर सेल्फ? जस्ट हैव टू टेक केयर। एक दिन ध्यान रख के देखना है कि कैन आई डू दैट, या क्या मैं इतना कमजोर हूं कि हरेक के व्यवहार को अपने ऊपर हावी होने देता हूं। क्योंकि इन टूडेज टाइम इट इज रिस्की, इट इज रिस्की अगर हम अपना कंट्रोल सारा बाहर दे देंगे, क्योंकि चैलेंजेस बहुत हैं।
1: यस, वी ऑलवेज से ना, यू नेवर नो दूसरे व्यक्ति कैसे रिएक्ट करने।
0: एग्जैक्टली, नाउ दैट्स द पॉइंट। सबके व्यवहार आज बहुत अनप्रडिक्टेबल हो गए हैं। मतलब बाहर तो क्यों जाना, अपने घर के अंदर भी अगर हम देखें तो सडनली ये बैठे बैठे अभी गुस्सा क्यों कर रहे हैं, इनको क्या हो गया? क्योंकि हर एक के अंदर बहुत कुछ चल रहा है और वो कई बार एकदम से। तो लोगों के जो रिस्पॉन्सेज हैं, रिएक्शंस हैं, वो बहुत अनप्रडिक्टेबल हो गए हैं। अब मेरा रिस्पॉन्स आपकी रिस्पॉन्स पे क्योंकि डिपेंडेंट है, तो आप जब अनप्रडिक्टेबल होते हो तो मेरा क्या हल होगा?
1: और इनफैक्ट मैंने तैयारी नहीं की हुई होती।
0: मौसम को देखो, मौसम हमें पता है अब गर्मी है तो गर्मी ही रहेगी, फिर ये आएगा, फिर विंटर आएगा, तो इट्स इजी टू मैनेज। जिस दिन मौसम अनप्रडिक्टेबल हो जाए कि अभी अभी गर्मी है, आधे घंटे में बारिश होने लग गई, उसके आधे घंटे में सपोज बहुत ठंड हो गई, तो विल वी बी प्रिपेयर्ड? नो, वी विल से ये क्या, और आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दिस काइंड ऑफ वेदर, यू नो, वी विल से आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दिस, वी नॉट प्रिपेयर्ड। तो वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस अनप्रडिक्टेबल बिहेवियर्स फ्रॉम पीपल। और उसके लिए और भी इम्पोर्टेंट अब हो गया है कि मुझे अपना ध्यान रखना पड़ेगा पहले, बिकॉज येस थिंग्स आर, क्योंकि हरेक के जीवन में चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं, हरेक ने अपने स्टेट ऑफ माइंड का कंट्रोल सिचुएशन पर दिया हुआ है। जितनी सिचुएशन रैपिडली चेंज होती जा रही है, स्टेट ऑफ माइंड चेंज होता जा रहा है, और जितना उनका चेंज होता जा रहा है मेरा चेंज होता जा रहा है। आप सोचो इसकी क्या हालत होती होगी। सारा दिन ये मन सिचुएशंस को भी फेस करता, लोगों के भी रिस्पॉन्सेस को फेस करता, फिर जितना आपका अनप्रडिक्टेबल उतना फिर मेरा भी अनप्रडिक्टेबल, फिर मेरा अनप्रडिक्टेबल, तो फिर आप कैसे रिस्पॉन्ड करोगे?
1: वो इतना अगेन यू नो, और सच बात तो ये है कि कई बार हमारा रिस्पॉन्स भी बहुत अनप्रडिक्टेबल होता है।
0: आप बच्चे के साथ देखो अपना, ठीक है, बच्चा अपने कोई यू नो टीनेज फेज में है, उसके स्कूल में कुछ आज हुआ, कोई बात हो गई, उसने नहीं बताया आपको आकर, लेकिन उसके माइंड में कुछ चल रहा है। अब आपने तो थोड़ा सा कुछ कहा, जो आप हर रोज ही कहते हो वो बहुत प्यार से सुन लेते हैं, लेकिन आज सडनली उसने रिएक्ट कर दिया, दैट इज देयर अनप्रडिक्टेबिलिटी। लेकिन आप अगर अपना ध्यान रख लेते उस टाइम, तो सिचुएशन वहां की वहां ठीक हो जाएगी 5 मिनट के अंदर। लेकिन वो अनप्रडिक्टेबल ऐसे बात की मेरे से, ये कोई बात करने का तरीका, तुमको हुआ क्या है, तो मेरा भी रिस्पॉन्स उसके ऊपर, तुम तो हो ही ऐसे गए हो, बिगड़ गए हो, ये हमारा फ्रेंड सर्कल ही खराब, यू नो, वी कैन जस्ट गो टू सेइंग एनीथिंग टू देम। अब एक तो वो ऑलरेडी डिस्टर्ब है अंदर से, फिर उसको पता है उसने गलत तरह से व्यवहार किया, उसका गिल्ट, फिर आपका गुस्सा ऊपर से, तो उसका नेक्स्ट रिस्पॉन्स कैसा होगा? सो यूर हैंडलिंग ईच अदर्स रिस्पॉन्सेज की बजाय अगर हम अपने रिस्पॉन्स की तरफ ध्यान दे, अपने रिस्पॉन्स को हैंडल करें, तो सामने वाले को हैंडल करना,
1: लेकिन दूसरे को सुधारना नहीं है, मतलब उसे समझाना तो पड़ेगा। आपने ये कह तो दिया कि उसका अपना गिल्ट, बट वी नेवर फील कि वो गिल्ट फील कर रहा है।
0: यू हैव टू वन स्टॉप एंड आस्क। जब भी आप, चलो दूसरे को छोड़ो, अपना देखो, जब आप गुस्सा करोगे किसी पर, बच्चे पर, हस्बैंड पर या किसी पर, उसके बाद आपको कितना अच्छा फील होता है उसके बाद, तो आप ऑलरेडी अपने उस

0: उसमें गुजर रहे हो कि मुझे नहीं करना चाहिए था अननेसेसरली पूरा घर का वातावरण कर, तो वो गिल्ट ही तो है ना, और उस गिल्ट में फिर सामने वाले ने
1: कुछ गलत
0: गुस्सा भी कह दिया, फिर ऊपर से ब्लेम भी डाल दिया आपके ऊपर. हाउ फार आर वी एबल टू हैंडल ऑल दिस? एंड ऑल दिस वी से इसलिए हुआ क्योंकि उसने ठीक से बात नहीं की, तो पूरे सिनारियों का ब्लेम भी हम तुरंत उसके ऊपर डाल देते हैं. भले उसने ठीक से बात नहीं की, लेकिन आफ्टर दैट द बॉल वॉज इन माई कोर्ट. ठीक है, उसने किस तरह से बॉल मारी, लेकिन आफ्टर दैट द बॉल वॉज इन माई कोर्ट. नाउ आई हैड द पावर. अगर मैंने उसको ठीक से हैंडल कर लिया होता, सिचुएशन वुड हैव बीन समथिंग एल्स ऑल टूगेदर.
1: वट नीड्स टू बी डन देन?
0: स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ माई सेल्फ. यस, एंड दैट्स वट वी वॉन्ट टू सी हाउ टू डू. कि जो हमने फोकस चेंज कर दिया था, जो आपने लास्ट टाइम भी कहा कि सिचुएशन पे ध्यान देना है, ये करना है, ये करना है, तो मेरा अपना खुशी और ये सब तो मेरी प्रायोरिटी लिस्ट पर नहीं आ रही. तो ये सब ध्यान देते देते दूसरों का जो इश्यूज उठ रहे हैं सारे, ये इसलिए हो रहे हैं क्योंकि मैंने इसको लास्ट प्रायोरिटी पर रखा कि मैं खुश नहीं हूँ, कोई बात नहीं, मुझे काम तो करने दो.
1: Show must go on even if I'm not happy.
0: Yeah, yes. The show is going on, but then look at the quality of the show. So somewhere I will have to stop and say, first I have to be happy, then take care of the show. Pehle I have to be healthy, phir baki jo ye drama enact hota hai hamare jeevan mein sara din, it's just a drama. Every scene I am enacting, quality dekho kya hoti ja rahi hai, aur phir bhi usko घसीटते जा रहे हैं. एक दिन भी रुक कर हमारे माइंड में ये थॉट नहीं चलता कभी कि ये क्या होता है हमारे घर में रोज. क्यों हम हर रोज एक दूसरे के साथ इस तरह से करते हैं? इज देयर अ वे आउट? क्या कोई और तरीका है जीवन जीने का, या दिस इज द वे?
1: Wonderful. Somewhere we need to actually do this analysis within, और ये देखने की जरूरत है कि हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ खड़े हैं. सुधा शिवानी, बहुत सी बातें अभी बाकी हैं, लेकिन एक अवेयरनेस, एक पहला जो पॉज है वो लेने का वक्त आ गया है कि हम खड़े होकर ये देखें कि हम कहाँ खड़े हैं. और जैसा आपने कहा कि ये बहुत जरूरी है, हर सिचुएशन में ये देखें कि हम चाह क्या रहे थे. हमने हर सिचुएशन, हर काम इसलिए किया कि हम खुशी चाहिए थी, या इट विल गिव मी हैप्पीनेस, यू नो, इट विल गिव अदर्स हैप्पीनेस, इट विल गिव मी हैप्पीनेस. सो अगेन माय डिपेंडेंसी, माय लाइक खुशी लेने की जो डिपेंडेंसी थी वो सब पे पहुंचती जा रही थी, और वहीं जो है वो बार बार कभी हाँ कभी ना कभी ऐसा चलता जा रहा था. अगेन करना क्या है ये वक्त बताएगा, आने वाली कड़ियां बताएंगी, लेकिन आज की इस बातचीत के लिए एटलीस्ट एक पॉज हमें लेने के लिए प्रेरित करने के लिए थैंक यू सो मच.
0: शांति.
1: कोई बात, कोई सवाल आपके मन में होता है, आपका हम स्वागत करते हैं. ये एक ऐसा मंच है जिस पर खुली बात होती है, तो या तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं या फिर फोन भी कर सकते हैं. हमारे फोन नंबर है 01244-266-7000, 99993-44555, 99993-44666, 9873-666-555. हमारा ईमेल आईडी है omshanti@bkmail.org. अब एक नहीं दामा कुमार, इसमें हैप्पीनेस इंडेक्स चेक हो रहा है इन दिनों, तो आप भी सफर में हमारे साथ रहिएगा. कौन सी ऐसी बातें हैं, किन बातों का ध्यान रखने के बाद हम खुशी का अनुभव कर सकते हैं, आने वाली कड़ियों में जानेंगे. अभी विदा लेते हैं. ओम शांति.

0: रेडियो पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।
1: कायदा कायदा, हर चीज में कायदा, आखिर इसका फायदा। कायदा तोड़ के सोचो, एक दिन चांद निकलता नीचे से और मैदान पे रखा होता।

0: अच्छा सोचो, सूरज का रंग नीला होता
1: होता
0: और पेड़ों का रंग लाल
1: लाल,
0: पंछी रहते पानी में
1: वाह,
0: और मच्छी गगन विशाल
1: वाह वाह वाह।

सोचो, जरा सोच के देखो, खेत में उगती टॉफी, पेड़ पे फलते लड्डू पेड़े और नल खोलो तो

0: आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: एक वाक्य ने मेरे थॉट्स को डिस्टर्ब किया, फीलिंग्स को डिस्टर्ब किया, मेरे शब्द डिस्टर्ब हुए, मैंने शायद वो चीजें बोल दी आपने जो बोलनी नहीं चाहिए थी, फिर आपका बिहेवियर डिस्टर्ब्ड हुआ, फिर रिलेशनशिप एनर्जी एक्सचेंज डिस्टर्ब हुआ एक घंटे के लिए। लेकिन मुझे अपने आप को ये चेक करना है कि ये जो मैं सोच रही हूँ, इज इट कम्फर्टेबल फॉर मी। एक चीज हमने मिस आउट की कि ये सारी थॉट्स एंड फीलिंग्स जो हमने क्रिएट की उसका इफेक्ट हमारे शरीर पे भी पड़ा। व्हेन वी हैव अंडरस्टूड कि एवरी थॉट दैट वी क्रिएट, जस्ट द अदर डे एक डॉक्टर ने हमें एक्सप्लेन किया, एक साइकाट्रिस्ट है, तो उन्होंने कहा ब्रेन के अंदर 10,000 करोड़ सेल्स है, जस्ट द ब्रेन, ओके 10,000 करोड़ सेल्स। एंड फिर उन्होंने कहा ये 10,000 करोड़ सेल्स आर ईच

0: cell is connected to at least 10,000 more cells in the body. 10,000 crore cells in the brain into 10,000. This is the human network. So many switches connected to so many switches. अब जब इतने switches से connected होते हैं, तो एक में भी अगर कुछ ऊपर नीचे होगा, तो उसका effect कितना लंबा जाएगा? तो जब brain में 10,000 crore cells connected to 10,000 cells, each cell connected to 10,000 cells in the body, and हर thought जो हम create कर रहे हैं, उसका brain पर असर पड़ रहा है. ब्रेन से फिर वो केमिकल सिक्रेट होते हैं, फिर उसका असर शरीर पे पड़ता है और हमने कितनी आराम से एक घंटा डिस्टर्ब रहे. अब हम अगर इस इक्वेशन को सिर्फ चेक करें तो एक घंटे में कितना इम्पैक्ट आया होगा हमारे शरीर के ऊपर. उस समय याद नहीं रहता ना, क्योंकि हमें शायद नॉलेज नहीं है, अवेयर नहीं है, या हम अपने आप को अलाउ करते हैं वैसे करना.
1: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM. खुश रहो, खुशियां बांटो.

मनोबल तक, आस्था से अस्तित्व तक। पुणे री आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: में कान में झुमका, नाक में बत्ती, हाथ में जलती अगरबत्ती।
1: अरे नहीं यार, मगरबत्ती। अरे बोला ना अगरबत्ती, मगरबत्ती, अगरबत्ती, मगरबत्ती, अगरबत्ती, मगरबत्ती, अगरबत्ती।

आ ई की आ गई चिट्ठी, चिट्ठी में से निकला मैं चिट्ठी में।

0: नमस्कार एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्म कुमारीज। इस पूरे सफर में जो हम तय कर रहे हैं, एक नई जिंदगी हमारे सामने आ रही है, कुछ नई मान्यताएं आ रही हैं और हम ये समझ रहे हैं कि मैं कौन हूं। मैं जो कि एक प्यार करने वाली, खुश रहने वाली, एक पीस लविंग आत्मा हूं। कौन हूं मैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इतना कुछ हमने जाना है कि कैसे अपनी जो पुरानी गलत धारणाएं हैं उन्हें चेंज करके, एक पॉजिटिव थॉट का संचार करके, उसे पैदा करके हम अपनी डेस्टिनी को बदल सकते हैं। लेकिन फिर भी मुश्किलें आ रही हैं। प्रैक्टिकल लाइफ में जब हम जाते हैं तो इतना आसान नहीं होता, तो आज हम ये तलाशते हैं कि कैसे उन्हें आसान किया जा सकता है। और हमारे साथ है ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। शिवानी, आज जो पहली बात मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि काफी कुछ क्लियर हो गया है, लोगों को भी क्लियर होगा, मुझे भी, कि मैं एक प्यार करने वाला, एक पीस लविंग व्यक्ति हूं, या अंदर मैं जो खुद हूं वो ऐसा हूं, लेकिन कहीं ना कहीं बाहरी वातावरण ने, एनवायरमेंट ने मुझे चेंज किया और मैं वही चीजें बाहर तलाशने लग गया। ये बात तो समझ में आई, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में जब मैं गई तो वो मुझे लगा कि वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रही मैं। बार बार कंटिन्यूस रिमाइंडर जो था वो इतना आसान नहीं था, और प्रैक्टिकल लाइफ में जो जो बातें मुझे तंग करती थी, कितना समझाने के बाद भी अभी भी तंग कर रही है। ट्रस्ट तो चलिए ठीक है, फिर भी बात है, एंगर और हैप्पीनेस, ये अभी भी मेरी कई कई चीजों से जुड़ी हुई है। तो क्या कुछ ऐसे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स हैं जिन्हें मैं अपने, क्योंकि अगर प्रैक्टिकल लाइफ की बात कर रहे हैं तो उन प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को लाइफ में इम्प्लीमेंट करके मैं कर सकती हूँ।
1: बहुत छोटी छोटी बातें होती हैं जिनका हमें ध्यान रखना होता है, जिनसे पूरा सोचने का तरीका परिवर्तन हो जाएगा। एक जैसे सिंपल चीज आपने कही कि हमें समझ में आ गया कि गुस्सा नहीं करना है, लेकिन फिर भी गुस्सा आ जाता है। सबसे पहली चीज कि अपने आप को अगर आपने समझा दिया कि ये काम की चीज नहीं है, आप बार बार अपने आप को रिमाइंड कर देंगे, हमेशा जब आप कर भी देते हैं, आउट ऑफ कंट्रोल चले भी जाते हैं, आफ्टर दैट डेफिनेटली पॉज फॉर अ मिनट, यू नो, इट्स अ वेरी सिंपल ट्रिक, बट इफ वी डोंट डू इट दैट टाइम वी विल जस्ट कीप ऑन, यू नो, दैट संस्कार विल अगेन गेट री इन्फोर्स्ड। तो अगर गुस्सा आ भी जाए, सिट बैक विद योर सेल्फ देन एंड देयर। कई बार हम कहते हैं ना, जैसे रात को बैठकर अपने सारा दिन की रूटीन देखकर उसमें से आपने क्या लिया, क्या छोड़ा, दैट्स ओके, बट आई फील समटाइम्स उसी टाइम करना ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि उसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर उसी टाइम पड़ेगा बहुत ज्यादा। तो जैसे ही आपने अपना टेम्पर खो दिया किसी के ऊपर, सिट बैक, इवेल्यूएट द सीन कि क्या सीन हुआ था, एंड जस्ट सिट बैक एंड लुक एट इट नाउ एज एन ऑब्जर्वर। अभी तक हम उस सिचुएशन का हिस्सा थे, तब जब हम हिस्सा होते हैं तो परिस्थिति कुछ और दिखाई देती है, और जब हम परिस्थिति से हटकर साक्षी होकर देखते हैं, आप देखिए एक एक्सीडेंट हो जाता है, जो दो लोगों के बीच एक्सीडेंट होता है उनका दृष्टिकोण बिल्कुल डिफरेंट है। उनको एक्चुअली पता भी नहीं चला किसकी गलती थी, कौन रॉन्ग, क्योंकि वो अचानक हो जाता है। लेकिन जो साइड पे, रोड पे लोग चल रहे हैं, जो उसमें इन्वॉल्व नहीं है, वो सिर्फ दूर से देख रहे हैं, उनको एग्जैक्ट सिचुएशन पता होती है कि एक्चुअली किसकी गलती थी, कौन कहां से आया, कैसा हुआ। तो दैट ऑब्जर्वर इज इन अ बेटर पोजिशन टू टेल कि एक्चुअली व्हाट हैड हैपेंड, वी आर नॉट हु आर इन्वॉल्व्ड इन द सिचुएशन। तो यही सारा दिन में भी होता है, यू नो, अगर हमारा किसी के साथ कुछ हो भी गया, तब हम उस राइट फ्रेम ऑफ माइंड में नहीं थे। अब हम थोड़ा सा साक्षी हो जाएं, ऑब्जर्व करें कि एक्चुअली क्या हुआ था, एंड बहुत इम्पोर्टेंट है, ट्राई करें अपने आप को दूसरे की पोजीशन में रखने की कोशिश करें, जिसको हम एम्पथी कहते हैं। जो हम कहते भी हैं, हाँ मैंने उनके दृष्टिकोण से सोचा, लेकिन फिर भी मुझे लगता मैं राइट हूँ, यू नो, दैट्स बिकॉज मैंने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि मैं राइट हूँ,
0: मैं राइट हूँ।
1: वॉट वी नॉर्मली ट्राई टू डू इज, आई एम नॉट सेइंग आई एम रॉन्ग, बट आई एम नॉट सेइंग यू आर रॉन्ग ईदर। यू सी, अगर हम डिस्कशन कर रहे हैं, लेकिन डिस्कशन के दौरान हमने पहले ये मान लिया है मैं राइट हूँ, आप तो रॉन्ग हो, लेकिन फिर भी हम डिस्कशन कर रहे हैं, तो उस डिस्कशन का बहुत ज्यादा कोई फायदा नहीं होगा। हम ये मानकर चलें कि आप जो कह रहे हैं वो आपके दृष्टिकोण से बिल्कुल राइट है, इसलिए आप कह रहे हैं।

0: ये कहना दूसरा रॉन्ग है, ये डिस्कशन को फिनिश कर देता है। अब बात करने का कोई बहुत ज्यादा लाभ नहीं होगा। सबसे पहले ये सोचिए कि वो जिस सीट पर बैठा है वो अपनी तरफ से राइट ही कर रहा होगा, भले मेरे लिए वो रॉन्ग है लेकिन उसके लिए वो राइट है। कोई भी व्यक्ति जान पूछ के गलत नहीं करता है, ये 100% है, कोई भी नहीं करता। द वर्स्ट थिंग दैट यू कैन थिंक ऑफ, बट उस समय उस व्यक्ति ने उस बात को सही समझकर ही किया था। तो अगर मैं ये समझ लूं कि आप जो कर रहे हैं वो राइट है, पहली बात मेरा आपकी तरफ जो दृष्टिकोण है वो चेंज हो जाता है। आई स्टिल हैव माई रिस्पेक्ट, आई मे नॉट अग्री विद वॉट यू आर डूइंग बट आई हैव नॉट लॉस्ट रिस्पेक्ट। लेकिन वेन आई स्टार्ट थिंकिंग यू आर रॉन्ग, आई लूज माई रिस्पेक्ट, कि यू नो आई डोंट रिस्पेक्ट, आई डोंट ट्रस्ट, आई हैव लॉस्ट एवरीथिंग। तो यू आर राइट, नाउ आई गो इन टू योर पोजिशन एंड रियली गेट अप एंड गो इन टू योर पोजिशन, यू नो बिल्कुल आपकी तरह सोचने की कोशिश करो और ढूंढो कि कहां कौन सी चीज आपको राइट लग रही है। और जैसे ही आपकी तरह सोचने की कोशिश करूंगी ना, मुझे लगेगा कि राइट, आप अपनी तरफ से राइट ही थे। लेकिन समवेयर हम दोनों के बीच वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है और वो शायद रहेगा टिल वी टॉक इट आउट, बट आप राइट हैं एंड नाउ आई स्टार्ट माई डायलॉग विद यू। बट वॉट विल बिकम ईजी इज टू एक्सेप्ट यू, मुझे आपको एक्सेप्ट करना बहुत इजी हो जाएगा।
1: आई थिंक उससे पहले मुझे लगता है ये एक्सेप्ट करना कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रह सकता है।
0: डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रह सकता है, नहीं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हमेशा होगा।
1: हाँ, होता है,
0: बिकॉज द ब्यूटी ऑफ दिस वर्ल्ड इज दैट वी आर ऑल डिफरेंट। अगर हम सब एक जैसे हो जाएं तो व्हाट वुड द वर्ल्ड बी लाइक? इमेजिन एवरीवन थिंकिंग द सेम, टॉकिंग द सेम, बिहेविंग द सेम। दिस दुनिया की ब्यूटी ही इस चीज में है कि वी आर ऑल डिफरेंट एंड लुक एट इट। लेकिन सारा दिन हम इस ब्यूटी को खत्म करने की कोशिश करते हैं क्योंकि हम हमेशा दूसरों को अपने तरह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे जो ठीक लग रहा है आप भी वैसा करना शुरू कर दीजिए, मतलब आप मेरे जैसे बनते जाइए। You know, I'm trying to make you like me. That's not beautiful. You are beautiful because you are you. And this world is beautiful because of that. So we accept that everyone is unique, everyone is different, but everyone is right in what they're saying. Let's try and understand them. So acceptance, ये सबसे important चीज है। किसी को भी respect करने की, किसी को भी trust करने की, वो जो है, जैसा है, पहले उसको accept कर लीजिए। जब आप एक्सेप्ट कर लेंगे, आप देखिए एक माँ एक बच्चे को सबसे बड़ा मोटिवेटर होती है उसे चेंज करने के लिए, क्योंकि एक माँ एक बच्चे को एक्सेप्ट करती है। शी हैज अनकंडीशनल लव, और किसी भी रिलेशनशिप में शायद अनकंडीशनल लव नहीं आता। वन अनकंडीशनल लव इज नाउ गॉड एंड मी, दैट इज अनकंडीशनल लव एंड दैट्स व्हाई द पावर ऑफ गॉड इज समथिंग विच कैन ट्रांसफॉर्म वन इजिली। हम सरेंडर करें अभी और हम अभी चेंज हो जाएंगे, बिकॉज देर इज अनकंडीशनल लव। उसे पता है, हमें ये पता है कि वो हमारे अच्छे के लिए ही कर रहा है या कह रहा है, जो भी हो रहा है। तो सिमिलरली द मदर एंड द चाइल्ड, वेरी अनकंडीशनल। कैन आई हैव दैट विद अदर पीपल? अनकंडीशनल लव। कैन आई एक्सेप्ट देम द वे दे आर? हमारी ऑर्गेनाइजेशन ब्रह्मा कुमारीज के जो फाउंडर रहे प्रजापिता ब्रह्मा बाबा, इतनी बड़ी संस्था थी, यू नो, जब शुरू शुरू में इतने सब लोग आए, अलग अलग परिवार से, अलग अलग संस्कार, हर चीज अलग, जब आए हर एक में कोई कमजोरियां, कोई विशेषताएं, सब कुछ लेकर आए, लेकिन उन सबको इकट्ठा कर दिया, उन सबको एकजुट करके जो संगठन बना, उसकी सबसे बड़ी कारण ये थी कि ब्रह्मा बाबा ने हरेक को एक्सेप्ट कर दिया कि पहले आप जो हो, जैसे हो, बहुत अच्छे हो एंड नॉट फ्लैटरी, दैट्स ऑल्सो वेरी लिटिल बैलेंस दैट हैज टू बी मेंटेन। और वो क्या करते थे कि उस व्यक्ति को पहले उसकी विशेषता बताते थे। कई बार हमें खुद अपनी विशेषता नहीं पता होती, तो उसकी विशेषता बताते थे, आपके अंदर ये है, आपके अंदर ये है जेन्युइन, एंड फिर धीरे से बता देते थे अगर ये सब चीजों के साथ आप ये वाली भी एक चीज करो तो, एंड दैट पर्सन वुड बी लाइक एनीथिंग फॉर यू,
1: यू नो, यू रियली मेड मी
0: फील गुड, बिकॉज यू हैव एक्सेप्टेड मी द वे आई एम, सो आई एम लाइकिंग माई सेल्फ नाउ बिकॉज यू आर लाइकिंग मी। You know, sometimes it happens that I start liking myself after that, and then I want to make myself better. So acceptance ek bahut easy ho jata hai ek energy transaction ko smooth karne mein. Nahi to blockage hai. If I reject you,
1: I think acceptance apne aap ko bhi hona chahiye.
0: Acceptance sabse pehle apne aap.
1: Somewhere, you know, like we don't accept
0: right
1: ourselves. The moment we'll accept ourselves, also we will.
0: But then that doesn't. mean accepting that I am absolutely perfect the way I am.
1: No.
0: But acceptance that yes, I have all these strengths and thodi si kamzoriyan bhi hain, which I will change. Lekin hum acceptance ko jo dusra ek roop de denge wo hai, I don't need to change. I am just perfect. So wo self-realization nahi hai. So first stage hogi, koshish kijiye. And really prayas karenge to bahut zyada mushkil nahi hai. Ki wo jo hai, jaise hai. Aur har ek ke andar visheshta dekhiye. Because everybody is blessed with that. Everybody. But we forget all the 99 strengths. And we look at that one weakness. Inke andar ye aadat hai. Inke andar ye aadat hai. Aur jitna hum us aadat ko, you know, highlight karte rahenge baar baar, wo aadat aur bhi zyada pakki ho jayegi. Aur jitna hum unki visheshtaon ko highlight karenge, visheshtaen aur pakki hote jayenge. To accept kijiye. And second very simple thing will be to let go. You know, don't hold on to situations.
1: Situations
0: and people also. Yeah, let go of situations ke past mein kuch hua hai. It's okay. You know, let it go. Kyunki jitna hum usko pakad ke rakhenge, wo aur bhi zyada, you know, hume takleef hi dene wala hai. Jaise humne us din baat ki ke 40,000 thoughts hum create karte hain, usme se 85 to 90% thought waste category mein jate hain, which are thoughts of either the past or the future. बहुत ज्यादा बीती हुई बातों के बारे में बार बार चिंतन करना, उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन क्यों किया, वो ऐसा ना करता तो ऐसा करता, मैंने ऐसा जवाब क्यों दिया, मैं ऐसा ना, एनर्जी बीइंग कंज्यूम्ड एब्सोल्युटली, यू नो, ड्रेनिंग मी आउट. ठीक है, हो गया, फुल स्टॉप. यू नो, जस्ट फुल स्टॉप. और अगर नहीं हो तो भी अपने आप को, अगर ये चेन ऑफ थॉट्स चल रही है, यू कैन एक्चुअली से टू योरसेल्फ, आई एम वेस्टिंग एनर्जी, फुल स्टॉप. एक बार, दो बार, तीन बार, अपना ही माइंड है. हम औरों को इतने अच्छे तरह से बताते हैं और लोग हमारी बात मान लेते हैं, तो हमारा अपना मन हमारी बात क्यों नहीं मानेगा.
1: यहाँ मैं ये जानना चाहती हूँ कि हमारा अपना दिमाग हमारी बात कौन मांगे, हम कौन है.
0: दिमाग अलग चीज है,
1: हमारा मन,
0: मन अलग चीज है. इट्स द माइंड एंड द ब्रेन.
1: दिमाग
0: ब्रेन है तो दैट्स फिजिकल. तो दिमाग नहीं मान रहा है कुछ भी, मन मानता है उस बात को और फिर वो सिग्नल ब्रेन की तरफ ट्रांसमिट करता.
1: किसकी बात मान रहा है,
0: किसकी बात मानता है. व्हाट डू थिंक, हु इज द वन हु इज डूइंग दिस वर्क.
1: Yeah, that's what I want to ask. Like, you know,
0: because who am I? Yeah, who am I? Because हम सारा दिन इतनी जो बात करते हैं, I, mind, energy, consciousness. लेकिन somewhere we have forgotten कि what is it? कि वो है कौन. आज अगर हम अपना परिचय दें, we'll talk about our name, our position, our status, our family, designation. लेकिन ये सारी चीजें तो वो हैं जो हमने प्राप्त किए. नाम भी हमें किसी और ने दिया. It was an identification label. और कुछ भी नहीं है.
1: आई मीन्स लाइक माई सोल, माई आत्मा.
0: इट इज, आई मीन्स द एनर्जी विच इज द मास्टर ऑफ दिस बॉडी. इट्स नॉट माई सोल.
1: ओके,
0: आई से माई हैंड इज पेनिंग. आई नेवर से आई द हैंड इज पेनिंग. मेरा सर आज बहुत दर्द हो रहा है. मेरा मेरा सर, मेरे हाथ, मेरे पांव, आज मेरा पूरा शरीर ही टूट रहा है. माई बॉडी, माई बॉडी इज एकिंग टूडे. माई बॉडी. सो देर इज समथिंग
1: हु ओन्स इट.
0: And that's why it's saying it's my body. I never say I the body.
1: No, so, but this I is the energy.
0: It's that energy.
1: So where is that energy?
0: वो शक्ति है. It's like tube light. Tube plus light. Physical glass tube plus electrical energy. Human being. Human body. ये जो मिट्टी का बना है, इसलिए वो humus word से आता है. And being. That energy. That consciousness. जीव आत्मा. जीव ये शरीर, आत्मा उसको चलाने वाली है. ये हाथ है, ये अपने आप कुछ नहीं कर सकता. आई चूज, इधर रखू, इधर रखू, किसी को मारू, किसी को प्यार दू, किसी को आशीर्वाद दू. इट्स द सेम हैंड, बट इट कांट डू एनीथिंग ऑन इट्स ओन. तो नाउ आई आस्क माई सेल्फ कि एम आई दिस हैंड, फ्लैश, ब्लड, बोन्स, और एम आई द पावर हु चूजेस वॉट टू डू विद दिस हैंड.
1: And where is that power? It's flowing within us?
0: It's energy which is concentrated here. It's absolute energy. It has to have a seat. The seat of the soul. Wo kahan hai wo sthan? Jahan se baith kar main us pure shareer ko chalaunga. Jaise ek bahut bada kamra hai, usme bahut sari electrical equipment hai. To jo controller hai, wo pure kamre mein bhag kar nahi hai.

0: संस्कार होते हैं, कुछ संस्कार हमें पेरेंट्स से मिलते हैं, जेनेटिक हेरिडिटरी, हमारा कुछ बहुत ज्यादा उसमें चॉइस नहीं है, वी गेट इट. कुछ संस्कार हम अपने पूर्व जन्म से कैरी फॉरवर्ड करते हैं, बिकॉज इट इज एनर्जी, डजंट गेट क्रिएटेड, डजंट गेट डिस्ट्रॉयड. एक कॉस्ट्यूम छोड़ा शरीर, दूसरा कॉस्ट्यूम लिया, इस शरीर में किए हुए कर्म और उसके संस्कार कैरी फॉरवर्ड हुआ,
1: सारे हो जाते हैं.
0: और इम्प्रेशन रहेगा, उसमें से कुछ मर्ज्ड रहते हैं, कुछ इमर्ज हो जाते हैं, लेकिन रिकॉर्डिंग सारी है आपकी सीडी के ऊपर, सारी रिकॉर्डिंग है. एब्सोल्युटली, हर रिकॉर्डिंग है. तीसरे प्रकार के संस्कार होते हैं जो हमारे वायुमंडल से बनते हैं, किस स्कूल में, किस वातावरण में हम पले, एज द कंपनी, यू नो. चौथे प्रकार के संस्कार है विल पावर. अब जो हम बात कर रहे हैं कि विल पावर से हम अपने संस्कार को चेंज कर सकते हैं. जो फर्स्ट थ्री थे बहुत ज्यादा कंट्रोल नहीं है, पेरेंट्स से मिले, पास्ट बर्थ से कैरी फॉरवर्ड किया, एनवायरमेंट से मिल गए, तो अब जो फीलिंग ऑफ विक्टिमाइजेशन है वो इन तीनों की वजह से आ रही है. ये मेरी आदत है जी, मैं नहीं बदल सकता, मैं नहीं बदल सकता. अगर आज संकल्प करें दृढ़ता से, वो चेंज हो जाएगा. फोर्थ, क्योंकि संस्कार ही संस्कार को काटता है.
1: अच्छा,
0: जैसे लोहा लोहे को काटता है, विल पावर से क्रिएट किया हुआ संस्कार हमारे इन तीनों, पहले तीनों प्रकारों के संस्कार को काट सकता है. इट्स वेरी, बहुत शक्तिशाली है ये. एंड पांचवें प्रकार के संस्कार है मुझ आत्मा के अपने ओरिजिनल संस्कार. व्हाट इज माय ओरिजिनल नेचर? व्हेन आई टुक द फर्स्ट कॉस्ट्यूम, व्हाट्स द ओरिजिनल प्रॉपर्टी ऑफ दिस एनर्जी? यू नो, प्रॉपर्टीज विल कीप
1: चेंजिंग. दैट मस्ट बी सेम एक्चुअली फॉर
0: एवरीवन. दैट इज द ब्यूटी.
1: Yes,
0: it's the same for everyone. तो जब मुझे पता चलता है,
1: pure without anything else, we must be similar.
0: Absolutely. तो हर आत्मा के जो original संस्कार है वो है peace, love, happiness, purity, power, willpower, knowledge, bliss, शांति. ये मुझ आत्मा का अपना संस्कार है, इसलिए हमने उस दिन कहा शांति कहीं चाहिए नहीं. ये तो मेरी अपनी नेचर है. सिर्फ ये है कि उसके ऊपर इतनी सारी लेयर्स जो हो गई है, तो वो मर्ज्ड हो गई है. तो शांति, सुख, प्रेम, पवित्रता, आनंद, खुशी, शक्ति, ये मुझ आत्मा के ओरिजिनल संस्कार है. जब हमें अपनी ये पहचान मिल जाती है कि मैं आत्मा हूँ ही शांत स्वरूप, मैं क्रोध स्वरूप आत्मा नहीं हूँ. इट्स लाइक द साड़ी इज व्हाइट, बट इफ आई गो इन द ट्रेन फॉर टू डेज, हो सकता है उतरने के बाद इसके ऊपर थोड़े से दाग लगे हो, लेकिन नॉलेज है कि इसका ओरिजिनल कलर व्हाइट है. अब उस पर थोड़ा सा दाग लगा है, आउट. यू नो, अगर चार लोग सेम व्हाइट साड़ी पहनकर गए और नीचे उतरे, हर एक का दाग तो अलग अलग होगा. सिमिलरली व्हेन वी बिगैन दिस जर्नी वी वर ऑल द सेम, वेरी प्योर, लेकिन हर एक की जर्नी अलग अलग रही, तो हर एक पे दाग आज अलग अलग अलग है. लेकिन जब मैं आपसे मिलूं, अगर मुझे ये अवेयरनेस रहे कि यू आर अ ब्यूटिफुल बींग, आप भी एक प्योर पवित्र शांत स्वरूप आत्मा हो, मैं आपको वो व्हाइट कलर में देखूं, आपके दाग को नहीं देखूं, तो आपको एक्सेप्ट करना, आपको रिस्पेक्ट करना, आपको ट्रस्ट करना, देयर इज नो एफर्ट.
1: इनफैक्ट ब्यूटीफुल. एंड उससे पहले सबसे बड़ी बात, क्योंकि अपने आप भी तो एक्सेप्ट करूं कि मैं भी उतनी प्योर.
0: सबसे इम्पोर्टेंट, तो जब हम अपने को कर लेंगे ना, तो दूसरे को करना तो बहुत इजी है, बहुत इजी है.
1: क्योंकि खुद के लिए इतना प्योर सोच पाना, यू नो, लाइक कि आई एम सो प्योर एंड सो नाइस, आई एम सो गुड,
0: एंड इट्स द ट्रूथ. And that's why I like these things. I like peace. I like love. I like happiness. Because this is what I'm made of. This is my nature. It's just that ये जो छोटे छोटे दाग ऊपर से लग गए हैं, मैंने इसको क्यों अपना original संस्कार समझा?
1: So somewhere deep within, you know, जब हमें ये एहसास हो जाए कि I'm pure like white, I'm pure like, you know, इतना ये हूँ, तो फिर मेरे अंदर जो अंधेरा था वो भी खत्म हो जाएगा, रोशनी मुझे मिल,
0: नॉलेज मिल गई ना, नॉलेज इज लाइट. जैसे ये नॉलेज मिल गई, और इसीलिए सोल कॉन्शियसनेस, मतलब जैसे आत्मा शब्द आपको भी तो पता है, आपने आज पहली बार नहीं सुना, लेकिन हमने स्पिरिचुअलिटी को अपनी प्रैक्टिकल लाइफ से थोड़ा सा अलग कर दिया था, कि जब हम सत्संग में जाएं, हवन कर रहे हैं, तो आत्मा, हाँ जी, आत्मा आत्मा. ऑफिस में गए तो आत्मा क्या? आत्मा का तो कोई रोल नहीं है उसके अंदर. देयर आई एम द सीनियर मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर और वट एवर. सो देन इट्स नॉट प्रैक्टिकल. सो वॉट वी लर्न विद राजयोग मेडिटेशन इज स्पिरिचुअलिटी इज फॉर प्रैक्टिकल लाइफ. आप आत्मा हैं तो आप ऑफिस में भी आत्मा ही हैं, आप अपने घर में भी आत्मा ही हैं.
1: दैट एनर्जी विच इज

0: I'm constantly there.
1: Meditation ki first stage hai soul consciousness, awareness, who am I?
0: Wonderful, Shivani, but right now, like, hamare paas ab baat nahi hai, lekin bahut, matlab, it's so much of, with so much of clarity, actually, mujhe realize ho gaya hai, ab ye kitna maintain rahega, ye dekhte hain, lekin yes, you know, like, sahi baat hai ki main jab tak yahan baithi hu main atma ko maan sakti hu ki lekin bahar nikalte kya main ye manungi ki ye jis power ki jis energy ki baat kar rahi hu yahi sab kuch govern kar rahi hai you know meri har cheez ka main jo hu wo ye hai ye atma hai and again another misconception or concept like whatever is meditation very difficult or like it's not for me you know I can't do meditation I also at times feel that so this is one aspect which we will talk in the next episode ki kya meditation mushkil hai ya aasani se apni life mein dala ja sakta hai aur meditation kyun zaruri hai is awareness ko badhane ke liye bahut bahut shukriya is puri baat cheet ke liye aaj ek naye main ko talash rahe hain wo main jo ki already hai itna pure itna pyara itna pavitra लेकिन कहीं हम भूल चुके थे तो उससे धूल साफ करके वो सफेद रंग वो प्योरिटी फिर नजर आ रही है तो इसी प्योरिटी को मेंटेन करेंगे अगर आपके पास भी कोई सवाल है कोई ऐसी बात है जो आप इस प्रोग्राम में शामिल करना चाहते हैं तो हम आपका स्वागत करते हैं आप फोन पर संपर्क कर सकते हैं फोन नंबर है 9873666555 और अगर आप चाहें तो हमें ईमेल भी कर सकते हैं ईमेल आईडी है omshantistudio@gmail.com तो इसी के साथ आप दीजिए इजाजत लेकिन याद रखिए अपने मूल को स्वीकारने का और उसे भूलना नहीं है किसी भी एस्पेक्ट में जब हम जिंदगी जी रहे हैं अगली कड़ी में क्या मेडिटेशन आसानी से किया जा सकता है और क्यों कर लिया जाए तो अच्छा रहेगा इसके बारे में जानेंगे लेकिन फिलहाल दीजिए इजाजत नमस्कार।

0: अब मेरी मोमबत्ती बना ले मुझे पत्ती, मैं हो गया माशरती तेरे बिना।
1: रिश्तों में सरलता और प्यार बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
2: एंगर इज अ वेपन जिसको हमने हर परिस्थिति में यूज करना शुरू कर दिया है। व्हाट वी आर नॉट रियलाइजिंग दैट वेपन डजंट वर्क, इट्स नॉट प्रोवाइडिंग एनी रिजल्ट, लेकिन फिर भी हम उसी शस्त्र को बार बार यूज करे जा रहे हैं और उससे चोट दूसरे को नहीं लगती उतनी ज्यादा, वो भूल जाएगा। बॉडी के अंदर भी उसका इफेक्ट होता है, माइंड पर भी होता है। तो अगर हम ये याद रख लें कि ये एक हथियार है मेरे हाथ में जिससे मैं दूसरों को मारने की कोशिश कर रहा हूं, उसका किसी और पर कोई अच्छा इफेक्ट नहीं होने वाला है, वो सिर्फ मेरा ही नुकसान करे जा रहा है, तो हम उसको धीरे धीरे ऑटोमेटिकली खत्म कर देंगे। बहुत ईजी है खत्म करना, इट्स जस्ट दिस अंडरस्टैंडिंग ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। कि दूसरा, सबसे पहला निवारण यही होगा कि दूसरा मुझे गुस्सा नहीं दिला सकता, ये खुद मेरे हाथ में। तो आधा तो इसी से खत्म हो जाता है, क्योंकि अभी तक हमेशा कोई और मुझे गुस्सा दिला रहा। ये अंडरस्टैंडिंग ही अपने आप, क्योंकि मैं खुद से गुस्सा नहीं करना चाहूंगी जब मुझे समझ में आ गया कि उसका इतना डैमेज है, लेकिन मैं खुद से नहीं कर रही ना, आप मुझे दिला रहे हैं, तो देन आई फील कि नथिंग इज इन माय कंट्रोल। सो दैट इटसेल्फ चेंजेस सो मच ऑफ द पर्सपेक्टिव देखने का।
1: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

बाबा से किसी का पेट भरता नहीं। हम जो सलाम कर कभी भी बाबा रहता नहीं।

की बातों से किसी का पेट भरता नहीं। हम जो सलाम करे कभी का भरता नहीं। अरे मेरी ऊंची ऊंची बातों से किसी का पेट भरता नहीं। अरे हम जो सलाम करे कभी।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: लाइफ का जो स्टाइल है उसको लाइफस्टाइल कहते हैं। लाइफस्टाइल इज नॉट ओनली अबाउट व्हाट वी आर ईटिंग, ड्रिंकिंग, वेयरिंग। लाइफस्टाइल इज अबाउट व्हाट वी आर थिंकिंग, स्पीकिंग, बिहेविंग। दैट्स माय लाइफस्टाइल।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

मित्रों नमस्कार, आप सुनने जा रहे हैं कार्यक्रम वतन का राग। अनेक महापुरुषों की तपोभूमि का साक्षी भारतवर्ष और उसके उत्कर्ष को राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त ने इस ओजस्वी और प्रेरणादायी गीत के माध्यम से व्यक्त किया है। पौराणिक चरित्रों के शौर्य क्रीड़ा से लेकर बुद्ध और महावीर जैसे ऐतिहासिक महापुरुषों की गौरव गाथा तक भारत भूमि की महानता का चित्रण श्री मैथिली शरण गुप्त ने इस गीत में किया है। भारतवर्ष के धार्मिक, ऐतिहासिक और प्राकृतिक महात्म्य के साथ संस्कृति और परंपराओं की महानता का समावेश इतने अद्भुत ढंग से किया है कि हम इस भारत भूमि में जन्म लेकर अपने आप को भाग्यशाली मानकर गौरवान्वित हो जाते हैं।

भारत की आजादी की लंबी लड़ाई में राम प्रसाद बिस्मिल जैसे जाबाजों का योगदान अविस्मरणीय है। उन्होंने खुद को भारत माता के लिए कुर्बान तो किया, बल्कि अपने इनकलाबी गीतों से ऐसी अलख जगाई कि आजादी के दीवानों को अंग्रेजी हुकूमत की गोलियां भी नहीं रोक पाई। सरफरोशी की तमन्ना के लिए विख्यात बिस्मिल के ऐसे कई तराने हैं जिनका असर दिल की गहराइयों को छू जाता है। बिस्मिल का ये तराना भी उसी जज्बे का पैगाम है जिसके असर से सारा हिंदुस्तान बसंती रंग में रंग गया था।

0: दोस्तों, ये था रामप्रसाद बिस्मिल का कलाम।
1: ये वतन का
0: अगला गीत श्री रघुवीर शरण द्वारा रचित अवधी रचना है। एक राहगीर बटोही को संबोधित करते हुए इस गीत में अपने देश की माटी की गंध के साथ भारत देश का बखान किया है और साथ ही उन महापुरुषों को भी स्थान दिया है जिनके सद्विचारों से देश का निर्माण हुआ। कवि ने अपने देश की काया सीमा का विवरण देते हुए शस्य श्यामला कृषि भूमि, कामिनी विरह और कोयल की कूक से गुंजित मनोहारी वातावरण का ललित चित्रण करते हुए देश के प्रति अगाध लगाव का प्रमाण दिया है।

0: ये था रघुवीर शरण का लिखा हुआ गीत। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग। गायक कलाकार थे तापसी नागराज, श्रीधर, मृदुल, अभिषेक, अजीत और राहुल। संगीत परिकल्पना तापसी नागराज और संगीत निर्देशन श्रीधर नागराज। आलेख डॉक्टर योगेंद्र श्रीवास्तव का और वाचक स्वर मुरलीधर नागराज। कार्यक्रम परिकल्पना श्रीराम तिवारी, समन्वयक संजय यादव और प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय भोपाल।
1: दोस्तों, आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा, खातों से हमें जरूर सूचित करें।

खुशियों की फुहार लाएगी हर दिन त्योहार। अब हर दिन बजेंगे मन में ढोल, अपने मन के रंग में अब रोज रंगेंगे, उड़ान भरेंगे सपनों के रॉकेट में। सिर्फ पुनेरी आवाज में 107.8, खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: कुछ दिन पहले एक भाई मिले, उन्होंने कहा सुबह क्या हुआ, कहते मैं उठा ऐसे बेड से उठा तो टेबल थी बेड के सामने, मेरा पैर लग गया टेबल से। तो मैंने सबको जोर जोर से डांट लगानी शुरू कर दी, दिखता नहीं, अपने सब स्टाफ को बुलाया, वाइफ को बुलाया, दिखता नहीं बेड के सामने टेबल रखी, उठा मेरा पैर लग गया, सबको डांट रहा था। तो धीरे से किसी ने आके कान में कहा, सर रात को आपने रखी थी। अब जैसे ये पता चला कि रात को आपने रखी थी, अब व्यवहार कैसा हो जाएगा? इसीलिए जीवन में जितने विघ्न हमें दिखाई दे रहे हैं, जिनके लिए हम औरों को डांट रहे हैं, औरों को जिम्मेवार ठहरा रहे हैं, औरों पर चिल्ला रहे हैं, वो जीवन में विघ्न हमारे किसने रखे थे? किसने रखे थे? वो हमने ही रखे थे। अब औरों पर डांटने की बजाय हमें क्या करना है? हमें क्या करना है कि आज उसको ध्यान से साइड पे रखना है। तो जो मेरे जीवन में हो रहा है, अगर मुझे ये क्लैरिटी है कि जैसा कर्म वैसा कॉन्सिक्वेंस, तो मुझे उंगली फिर किसी और पर नहीं, उंगली यहां और ठीक करने की उंगली भी यहां। वी आर नॉट डूइंग अ फेवर टू एनीबडी एल्स। ये हम कहते हैं ना, उसने किया इतना, मैं कैसे क्षमा करूं? उनको नहीं क्षमा कर रहे, अपने आप को क्षमा कर रहे हैं।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: नो स्मोकिंग जोन जैसे बन गए हर जगह, वैसे नो एंगर जोन। इधर गुस्सा नहीं कर सकते, आया है तो बाहर जाओ, कर क्या। यहां नहीं कर सकते, यहां नहीं कर सकते, क्यों? स्मोकिंग के लिए क्यों अलग जगह बनाई? क्यों नहीं कर सकते सबके बीच? क्योंकि कर आप रहे हैं, नुकसान हमारा हो रहा है। इसी तरह गुस्सा कर आप रहे हैं, सारे वातावरण में और सब लोगों का नुकसान हो रहा है। तो आप जाइए, वहां वो कमरा है, उधर गुस्सा करिए, वापस आइए।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM पर। मैं स्मिता जयकर, खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: नमस्कार, वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। वेलकम सिस्टर।
2: ओम शांति।
1: ओम शांति एंड वेलकम टू बीइंग शक्ति।
2: थैंक यू सो मच
1: सिस्टर। आप कह रही थी ना उस दिन, हाँ, मैंने पूछा था कि अगर मैं नफरत नहीं दूं उसके बदले में या हर्ट नहीं हूं, तो आपने बोला खाली भी रहो, न्यूट्रल भी रहो तो काफी है, क्योंकि आप अपने ओरिजिनल सेल्फ है तो आ ही जाओगे,
2: right.
1: क्योंकि आपका ओरिजिनल सेल्फ है प्यार और पीस एंड ऑल दैट,
2: राइट।
1: तो मैं कल ये देख रहा था कंप्यूटर, उसमें सिमिलर लाइंस मिली मुझे। सिमिलर मतलब अपनी क्वालिटी को इसने ब्यूटीफुल कहा है। टू बी ब्यूटीफुल मीन्स टू बी योर सेल्फ। यू डोंट नीड टू बी एक्सेप्टेड बाय अदर्स, यू नीड टू एक्सेप्ट योर सेल्फ।
2: सो ब्यूटीफुल।
1: योर के बाद मैं थोड़ा सा गैप देके डैश सेल्फ कर दू,
2: हाँ,
1: तो मेरा जो सेल्फ है,
2: यस,
1: माय सेल्फ,
2: राइट,
1: यू नीड टू एक्सेप्ट योर सेल्फ
2: एंड व्हेन यू एक्सेप्ट योर सेल्फ यू विल बी ब्यूटीफुल।
1: यस,
2: है ना।
1: एक और पढ़ूंगा फिर हम लोग बात करते हैं, प्लीज। माय हैप्पीनेस ग्रोज इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू माय एक्सेप्टेंस एंड इन इनवर्स

0: proportion to my expectations.
1: जी, कितने दिन से ये कर रहे हैं कि जितना लोगों से एक्सपेक्टेशंस रखते गए, डे बाय डे खुशी घटती गई. जितना लोगों को, कितनी अच्छी लाइन है, इनवर्स प्रोपोर्शन टू माय एक्सपेक्टेशंस एंड डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू माय एक्सेप्टेंस. अब क्योंकि हम एक्सपेक्टेशंस पे ज्यादा पर एक्सेप्टेंस के मोड में कम जीते हैं, फिर हैप्पीनेस की क्वांटिटी कितनी होगी, नेचुरली हो गया, इक्वेशन से ही समझ में आ गया. इट इज एन इनवर्स प्रोपोर्शन. जितनी हम अपेक्षाएं रखेंगे, हमारी खुशी उतनी ही घटती जाएगी. जितना हम सबको स्वीकार करते जाएंगे, एक्सेप्ट करते जाएंगे, हमारी खुशी उतनी ही बढ़ती जाएगी. और फिर उसी से वो लाइन कनेक्ट हो जाती है, जितना हम एक्सेप्ट करते जाएंगे उतना हम ब्यूटिफुल बनते जाएंगे. वी डोंट नीड टू बी एक्सेप्टेड बाय अदर पीपल. यू नो, अदर पीपल शुड एक्सेप्ट मी. उसके लिए हम बहुत कुछ कर रहे हैं, और सारा कुछ जो हम कर रहे हैं वो बाह्य लेवल पे है. आज बहुत सारा, एक ह्यूज नंबर ऑफ यूथ ग्रुप है, स्कूल के बच्चे हैं, जो ऐसी ऐसी चीजें करना शुरू कर देते हैं एक बहुत यंग एज में, सिर्फ ताकि दे विल बी एक्सेप्टेड बाय देयर फ्रेंड्स. वो चीजें वो हैं जो उनकी फैमिली वैल्यूज मैच नहीं करती, जिससे वो चीजें वो हैं जो उनके प्रिंसिपल्स मैच नहीं करते, वो खुद करना नहीं चाहते, उनको पता है वो गलत है उनके लिए, लेकिन आई वॉन्ट टू बी एक्सेप्टेड बाय माई फ्रेंड्स. चाहे वो स्मोकिंग है, ड्रिंकिंग है, रिलेशनशिप्स है, सारी चीजों में हम स्कूल में, कॉलेज में, हमारे आसपास के लोग वो कर रहे हैं, इसीलिए हमें भी करना है. और फिर सिर्फ बच्चे ही क्यों, यूथ ही क्यों, आज हम सब भी किसी न किसी चीज में, किसी न किसी बात में वी फील कि मुझे ये करना है सो दैट पीपल विल एक्सेप्ट मी. इफ पीपल एक्सेप्ट मी देन आई एम अ नाइस पर्सन. ये बहुत डीप इनग्रेन्ड प्रोग्रामिंग है. तो आपकी कोटेशन ने बहुत प्यार से हमें समझा दिया कि यू डोंट नीड टू बी एक्सेप्टेड बाय पीपल, यू ओनली हैव टू एक्सेप्ट योर सेल्फ एंड देन यू विल बी रियली ब्यूटिफुल. और वही हम इतने दिन से देख रहे हैं कि जितना हम औरों के साथ सहन शक्ति को यूज करते हुए चलते जाएंगे, तो हमारी ओरिजिनल ब्यूटी अपने आप निखर के आ जाएगी. नहीं तो हमारे मन में चिंता, हमारे चेहरे पर चिंता, तो ब्यूटी से हम बहुत दूर हो जाते हैं. कई बार हम बाह्य रीति से सहन करते हैं, अंदर नहीं टॉलरेट कर रहे, हम बाहर टॉलरेट करते हैं कि किसी ने कुछ कहा, हम चुप रहे, हमने जवाब नहीं दिया, हमने ऊपर से कुछ नहीं कहा, इनफैक्ट हमने ऊपर से प्यार से बात की, उन्होंने गलत व्यवहार किया, लेकिन हमने तो ऊपर से अच्छी तरह से व्यवहार किया. लेकिन कई बार जो थोड़ा सा सूक्ष्म होता है चेकिंग, कि कई बार हम ये टॉलरेंस अंदर नहीं, अंडरस्टैंडिंग से नहीं, सिर्फ बाह्य रीति से कर लेते हैं कि बोला नहीं, जवाब नहीं दिया, जो उन्होंने कहा मैंने मान लिया, जो उन्होंने चाहा वो मैंने कर दिया, सब कुछ मैंने टॉलरेट किया उनके साथ. लेकिन वो कई बार ये होता है कि अंदर ही अंदर वो बातें फिर दबती जाती हैं, और मन बार बार ये भी कहता है कितना सहन किया, कितना सहन किया, कितना सहन किया, मुझे ही सहन करना है, सहन करना है, सहन करना है. लेकिन वो फिर एक प्रेशर कुकर की तरह अंदर दब जाता है. ये हरेक को चेक करना है, कोई प्रेशर कुकर मेरे अंदर तो नहीं क्रिएट हो रहा है, कहीं भी, घर पे, काम पे, किसी फ्रेंड्स के साथ, मेरे अंदर कोई प्रेशर कुकर नहीं क्रिएट होना चाहिए. क्योंकि अगर क्रिएट हो रहा है तो हमारी डेस्टिनी निश्चित है कि वो एक दिन तो फटेगा. एंड वी ऑल नो कि जब प्रेशर कुकर फटता है तो द सीन इज अ वेरी अगली सीन,
0: वेरी अगली सीन.
1: वो अगली सीन मेरे जीवन में नहीं आना चाहिए कभी भी, क्योंकि वो जब आता है तो कई बार रिश्ते परमानेंटली डैमेज हो जाते हैं. इससे अच्छा है कि जब छोटी छोटी बातें आ रही हैं, देन एंड देयर वी हैव टू वर्क ऑन इट, नॉट अक्यूमुलेट. ये सहन शक्ति नहीं है, क्योंकि कई बार हमें सिखाया जाता है, कर लो ना, सहन कर लो, कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लो, कोई बात नहीं. लेकिन ये सहन और एडजस्ट हमें सिखाया गया, वो अंडरस्टैंडिंग के साथ नहीं सिखाया गया. उसका मीनिंग हमें सिर्फ ये दिया गया, चुप रहो,
0: बर्दाश्त करो,
1: बर्दाश्त करो,
0: चाहे कुछ भी हो जाए.

0: रिपीटेडली याद आती रहेगी, हर बार जब कोई और बात आएगी तो बैक रेफरेंस जरूर होगा, मन में बैक रेफरेंस होगा कि पिछली बार भी ऐसे किया था. तो एवरी टाइम वी विल गो थ्रू ऑल दैट पेन ऑल ओवर अगेन, क्योंकि हर बार हम प्रेजेंट सिचुएशन को, सिर्फ प्रेजेंट सिचुएशन को नहीं एड्रेस करेंगे, हम हर बार पास्ट की सारी बातों को निकालेंगे, क्योंकि हमने उसको समझ से फिनिश नहीं किया था अंदर से, हमने सिर्फ चुप करके अंदर उस बात को
1: सप्रेस किया,
0: दबा दिया था. तो हर बार जब कोई नई बात होगी, कोई इंसिडेंट फिर होगा, वी विल ब्रिंग आउट एवरीथिंग फ्रॉम द क्लोजेट.
1: क्योंकि जितना सप्रेस किया हुआ है, सारा मसाला पूरा फुल हो जाता है, तो बर्स्ट हो जाता है.
0: लेकिन बर्स्ट भी सपोज 2 साल बाद होगा, सपोज 4 साल, बर्स्ट भी बहुत जल्दी नहीं होता. हमारी ह्यूमन कैपेसिटी टू एडजस्ट बहुत ज्यादा है, बहुत कैपेसिटी है हमारे अंदर एडजस्ट करने की. लेकिन सिर्फ एडजस्ट की डेफिनेशन, हमने डेफिनेशन ये समझी थी कि चुप रहना, तो वो हम चुप रहे 2 साल 4 साल, हम सहन करते गए, उन्होंने जो किया हमने चुप ले लिया. लेकिन हर बार जब कोई बात आई, हमने पुरानी सारी बातें बाहर निकाली, तो सोचो मन पर कितने घाव बार बार रिपीट होते होंगे.
1: निकालते समय बोलते भी है, उस दिन में मैं चुप रहा, उस दिन चुप रहा,
0: yes.
1: तुम्हारे डैडी के सामने चुप रहा, तुम्हारे मम्मी के सामने चुप रहा, वो तुम्हारे भाई ने सब चुप रहा, फलाने से शादी के टाइम पे तुमने सब किया, पूरी लिस्ट आती है बाहर. और अब मैं चुप नहीं रहने वाला.
0: वेरी ट्रू. मतलब दैट इज द डे जब वो प्रेशर कुकर बर्स्ट होता है. तो वो सारे साल भी जो हम चुप रहे, वो एक्चुअली हम पावरफुल नहीं, लेकिन डिप्लीट हो रहे थे इतने साल. सप्रेस करना पावर नहीं है, चुप रहना पावर नहीं है. सप्रेशन डिप्लीशन ही करेगी. अंदर रखा ना, मन में तो रो रहे हैं, ऊपर से चुप है. मन में चिल्ला रहे हैं, ऊपर से चुप है. मन में गुस्सा कर रहे हैं, ऊपर से चुप है. तो वो डिप्लीशन कितनी होगी. और एक इतनी स्ट्रॉन्ग अर्ज रहती है कि हम सुना दें इनको ये सारा कुछ, हम बोल दें इनको ये सारा. ये बहुत स्ट्रॉन्ग अर्ज रहती है मन में कि इफ आई गेट अ चांस आई वॉन्ट टू टेल देम एवरीथिंग. मुझे बताना है उन्होंने मेरे साथ ये किया, ये किया, ये किया, ये किया. तो वो एक अर्ज तो है ही. तो जैसे ही कोई ट्रिगर आएगा एक दिन, और माइंड ने वो अर्ज तो इतने दिनों से क्रिएट की हुई, इतने सालों से क्रिएट की हुई है, तो प्रेशर कुकर तो बर्स्ट होगा ही होगा. और जब वो बर्स्ट होता है तो बहुत सालों का, अब देखो जब घर में प्रेशर कुकर बर्स्ट होता है तो कितने नुकसान होते हैं. किचन की सीलिंग पे भी जाता है,
1: आदमी का मुंह फट जाता है.
0: उनका मुंह फट जाता है, मतलब डैमेज उतना ही होगा हमारे प्रेशर कुकर का भी. कई बार सब कुछ फट जाएगा उससे, कई बार बीमारियां इससे हो जाती हैं,
1: डेथ हो जाती है प्रेशर कुकर की.
0: ये अंदर के प्रेशर कुकर से भी हो जाएगी.
1: अंदर के कुकर से तो 100% होती है ना.
0: ब्लॉकेजेस, इसी को कहते हैं इमोशनल ब्लॉकेजेस, जहाँ इमोशनल ब्लॉक करके रखी चीजें. ये भी ब्लॉक थी, ये भी पकड़ा. तो जहाँ इमोशनल इतनी सारी ब्लॉकेजेस होंगी, तो फिर शरीर की एनर्जी में ब्लॉकेजेस तो क्रिएट होनी शुरू हो ही जाएंगे. फिर हम शरीर के ब्लॉकेजेस का इलाज कराएंगे, कि यहाँ की ब्लॉकेज को नहीं ठीक करेंगे. तो इसको सहन शक्ति नहीं कहेंगे हम.
1: यूजुअली डॉक्टर्स कहते हैं बस स्किन में से फट के निकलता है
0: डिजीज.
1: ऑल दीज केमिकल्स व्हिच आर क्रिएटेड
0: बाय, बिकॉज द सोल डजंट लव इटसेल्फ एनीमोर. The soul is inflicting pain upon itself emotionally. The soul is inflicting pain upon itself emotionally, and the same it will start doing to the body. It's very. इसी दूसरा हमें दर्द नहीं देता है. हम अपने आप को कितना दर्द देते हैं जब हम ऐसी बातों को सप्रेस करके रखते हैं. इसीलिए साइकाइट्री में या डॉक्टर्स कहते हैं इससे अच्छा बोल दो, अंदर नहीं रखो, सुना दो जाके. यू नो, इसीलिए साइकोलॉजिस्ट साइकाइट्रिस्ट कई बार कहते हैं गुस्सा कर दो. गुस्सा करना चुप रहने से
1: वेंट आउट बोलते हैं.
0: लेकिन हमने वो देखा कि वो मेथड यूज करके भी हमारी पावर कम होती गई,
1: हमारे रिश्ते
0: बिगड़ते गए. तो इसका मतलब ना वेंट इट आउट, उसमें भी नुकसान है, ना सप्रेशन, उसमें भी नुकसान है. लेकिन हर बात जब आएगी,
1: लेट गो
0: अंडरस्टैंडिंग से.

0: अंडरस्टैंडिंग से उसको रिजोल्व करना है, मन में पकड़ के नहीं रखना है। ये बार बार अपने को और अपने आसपास सभी को समझाना है, ये सहन शक्ति नहीं है, ये सप्रेशन की शक्ति है। मिक्स नहीं करना है दोनों बातों को। चुप रहना है, लेकिन मुख ने नहीं चुप रहना है, मन ने चुप रहना है। और मन बोलने से नहीं चुप हो जाएगा, मन को सारी बात समझा के उस दर्द को खत्म करके फिर चुप करना पड़ेगा। ये पावर टू टॉलरेट है। तो जो क्वालिटीज हमें यूज जब हम करते हैं, जैसे हमने पिछली बार भी देखा, लव एवरीवन, अपने जीवन का एजेंडा बनाना है कि मुझे सबसे प्यार करना है, मुझे नहीं देखना कि सामने वाला कैसा है, क्या कर रहा है, कैसा व्यवहार मेरे से करता है, कैसा व्यवहार औरों से करता है। अपना मंत्र, मुझे सबसे प्यार करना है, आई लव एवरी वन, बिकॉज उसमें ही मेरी हीलिंग है, मेरी हीलिंग है, मेरी प्यार की एनर्जी ब्लॉक हो रही है ना, नहीं तो हर बार फ्लो नहीं हो रही एनर्जी मेरे थ्रू। मुझे सबसे प्यार करना है, लोग मुझे समझे। वी हैव दिस कॉमन कंप्लेंट, पीपल डोंट अंडरस्टैंड मी, यू डोंट अंडरस्टैंड मी ओनली एट ऑल।
1: हाथ देखने वाले भी बोलते हैं, नोबडी विल अंडरस्टैंड,
0: नोबडी विल अंडरस्टैंड यू।
1: आप बहुत, यू आर अ वेरी मिसअंडरस्टूड पर्सन,
0: रियली।
1: और आपकी किस्मत में जो लिखा है ना, आपको मिल नहीं रहा है, पता नहीं क्या हो गया। कोई आपका फैमिली मेंबर आपसे जेलस है, ऑल दीज थिंग्स दीज पीपल से आल्सो।
0: पावर टू टॉलरेट हमें सिखाती है कि नोबडी नीड्स टू अंडरस्टैंड यू, स्टार्ट योर लाइफ विद द पर्पस, आई विल अंडरस्टैंड अदर पीपल। जब तक हम वेट करते रहेंगे कि लोग मुझे समझे, और मुझे समझे का डेफिनेशन भी हमारा ये है कि लोगों का नजरिया मेरे नजरिए के साथ मैच हो जाए, वो तो होने वाला है ही नहीं। यू डोंट अंडरस्टैंड मी, इसकी बजाय हम अपनी लाइन को क्या चेंज करेंगे, लेट मी अंडरस्टैंड देम, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेट मी अंडरस्टैंड पीपल, लेट्स नॉट गो इन द वर्ल्ड सेइंग प्लीज अंडरस्टैंड मी, प्लीज अंडरस्टैंड मी विद द बेगिंग बोल लाइक दिस। लेट मी अंडरस्टैंड पीपल, जितना हम करेंगे, जो मेहनत हम करेंगे उसका फल हमें ही मिलेगा ना। सारा दिन मांगते रहेंगे ऐसे, तो अपने जीवन की शक्तियों को कैसे बढ़ाएंगे? मांगने से हम कभी भी एम्पावर्ड नहीं होंगे। हम मेहनत करके कमाएंगे ना, दुनिया में भी कहते हैं भीख क्यों मांग रहे, मेहनत करके कमाओ, तो हम भी क्यों नहीं मेहनत करके कमाते?
1: ये लाइन बहुत अच्छी है।
0: हाँ, हम भीख मांग रहे हैं सारे,
1: इसमें भी मेहनत करो,
0: इसी में भी मेहनत करके कमाते हैं ना। अगर हमें स्टेबिलिटी चाहिए, हम चाहते हैं अदर पीपल शुड अंडरस्टैंड मी, भाई थोड़ी सी मेहनत करते, लेट मी अंडरस्टैंड देम, क्या दर्द है उनको, क्या तकलीफ है, व्हाट डज दैट सोल नीड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हाट आई हैव टू अंडरस्टैंड। वो आत्मा क्या चाहती है, वो आत्मा की कौन सा दर्द है जिसकी वजह से वो इस तरह से व्यवहार कर रही है, वो आत्मा की हीलिंग मैं कैसे कर सकती हूँ, लेट मी अंडरस्टैंड पीपल। तो प्यार की शक्ति बढ़ेगी, अंडरस्टैंडिंग की शक्ति बढ़ेगी, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट एक क्वालिटी, पेशेंस, धैर्यता। आजकल हम थोड़े से फास्ट स्पीड पे चलते हैं, हर चीज हमें चाहिए जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी हो जाए। वो जल्दी जल्दी होने की वजह से भी हम टाइम नहीं देते अपने मन को रुकने का, समझने का, दूसरे को, दूसरे के नजरिए को देखने का समय नहीं है। विच इज गोइंग फास्ट फास्ट, रिएक्टिंग रिएक्टिंग रिएक्ट करते जाना, मेमोरी को यहाँ स्टोर करते जाना और ब्लॉकेज को क्रिएट करते जाना। तो धैर्यता, अपने जीवन को फिर से थोड़ा सा पेशेंस, एवरीथिंग इज हैपनिंग परफेक्ट, हर आत्मा अपना रोल परफेक्ट प्ले कर रही है। ये बार बार बातें जब अपने आप को याद दिलाते जाएंगे, तो अपने आप सहन शक्ति
1: बढ़ती
0: जाएगी, नेचुरल है। परिस्थिति से हम गुजर रहे हैं, अगर हम अधैर्य हो जाएंगे, इम्पेशेंट हो जाएंगे, तो हम दूसरे की बात को, व्यवहार को समझेंगे कैसे? हमें थोड़ा सा तो स्लो डाउन करना पड़ेगा, क्योंकि क्या होता है, सीन आफ्टर सीन आता जा रहा है, यहाँ से गुजरे एक सीन, वहां से निकले एक सीन। बहुत इम्पोर्टेंट है हर सीन मुझ आत्मा के ऊपर क्या इम्प्रेशन छोड़ के जा रहा है, एक मार्क तो छोड़ के जा रहा है ना।
1: हर सीन का इम्पैक्ट और वो मार्क हमेशा के लिए रहता है, और अगले जन्म तक भी रहता है, तो उसके बाद जन्मों तक रहता है। जैसे आपने कहा ग्रूव
0: ग्रूव बन रहा है ना,
1: और उसका फिर दूसरे जन्म में फिर हम बोलते हैं कि मेरी आदत मुझे

0: हर सीन पहली बारी में ही परफेक्ट करना पड़ेगा। नहीं परफेक्ट किया तो रिकॉर्डिंग हो जाएगी, कर्म का फल तो वापस आएगा ही आएगा, और वो कोई भविष्य जन्म में नहीं आएगा, अभी अभी आ रहा है उसका।
1: लाइफ में जर्नी इज मोर इम्पोर्टेंट देन द गोल।
0: जर्नी इज ओनली इम्पोर्टेंट,
1: लाइफ इज अ जर्नी नॉट द गोल।
0: गोल तो आ ही जाएगा। इट्स लाइक हम यहाँ से यहाँ चल के जा रहे हैं, जर्नी इज इम्पोर्टेंट, चलते रहेंगे तो वहां तो पहुंच ही जाएंगे, पहुंच तो जाएंगे ही गोल पे, लेकिन पहुंचने तक की हालत, हर सीन, हर स्टेप, हर कदम जब उठाया उस गोल तक जाने के लिए, उस जर्नी पर हम कैसे हैं? अगर गिरते लटकते दो बार धक्का मारते फिर उस गोल तक पहुंचे तो उस गोल को एंजॉय नहीं करेंगे पहुंचने के बाद। इसलिए आज सारा दिन ये चार क्वालिटीज को हम पकड़ेंगे। लव, आई लव एवरी सोल, लोग मुझे समझे इसका अब इंतजार हम नहीं करेंगे, आई विल अंडरस्टैंड पीपल, मेहनत करके हम अपनी कमाई करेंगे कि वो क्यों ऐसे हैं, आई विल अंडरस्टैंड देम, आई विल एक्सेप्ट देम एज दे आर बिकॉज आई अंडरस्टैंड कि वो आत्मा का वो संस्कार है।
1: But I also don't have any other choice also, na?
0: Of what? Of doing it another way?
1: Huh? I don't understand, मैं कितनों को ठीक कर लूंगा?
0: मैं किसी को भी नहीं ठीक कर सकता,
1: मैं खुद को तो कर लूँ, खुद को ही नहीं कर पा रहा।
0: यही तो वो जर्नी है।
1: लास्ट टाइम आई टोल्ड यू कि ये अपने आप को ठीक करना इज नॉट एन इजी टास्क, तो आपने बोला कि इतने काम करते हो, इतनी मेहनत करते हो, लेट्स पुट डू द सेम थिंग
0: टू आवरसेल्फ,
1: टू आवरसेल्फ,
0: राइट। तो लेकिन दूसरे के लिए नहीं कर सकते हम ये मेहनत,
1: दूसरे के लिए यही कर सकते कि एक आप ऐसी अच्छी एनर्जी भेजो कि वो आपकी एनर्जी से ट्रांसफॉर्मेशन उसका थोड़ा
0: उसकी हीलिंग होती है उससे। दूसरे को चेंज करने के लिए अगर हम वाइब्रेशन उसको प्यार की दे दें, इससे बड़ा गिफ्ट हम किसी को नहीं दे सकते।
1: इन जनरली अगर मैं बैठा हूँ और सिर्फ वाइब्रेशन प्यार की दे रहा हूँ, जैसे आपने कहा था संत महात्मा भी देते हैं, तब भी अपने ऑरा में अपने नजदीक जो भी आता है उनका भी तो, उनकी भी तो हीलिंग होती है ना।
0: अब जो जो लोग आपसे इंटेंगल होंगे उनको अपना बेनिफिट मिल जाएगा ना,
1: थोड़ा थोड़ा मिल जाएगा,
0: बहुत थोड़ा थोड़ा नहीं मिलता, बहुत बेनिफिट होता है। क्यों हम जाते हैं संत महात्माओं के पास? हमारा बहुत बेनिफिट होता है उसमें। और इसी तरह अगर हम बार बार परमात्मा से कनेक्ट होते रहे, हमारा कितना बेनिफिट होता है उसमें। एनर्जी फील्ड पावरफुल आत्मा की लेना ये बहुत बड़ा बेनिफिट है, तो क्यों ना हम अपने परिवार में, अपने काम के क्षेत्र पे हम वो पावरफुल आत्मा बन जाएं। आज का हमारा होमवर्क, प्रेशर कुकर अंदर कोई क्रिएट नहीं होना चाहिए, कोई भी चीज सिर्फ चुप करके अंदर नहीं रखनी है, सहन करना है, सप्रेस नहीं करना, ये डिफरेंस को, थिन लाइन को बार बार देखना है। और सप्रेस नहीं करना इसका मतलब ये नहीं है बार बार बोल के शोर मचा के बाहर निकालना है, इट मीन्स बात को समझ के
1: चुप रहना,
0: रिजोल्व करके बात को अपने अंदर चित पर से फिनिश करना है, घाव नहीं रखना है, हील करके उस बात को खत्म करना है। रिकॉर्डिंग हो रही है, बहुत ध्यान से इस मूवी को रिकॉर्ड करना है, इसका कॉन्सिक्वेंस किसी और को नहीं, हमारे ही सामने आएगा, हमारी खुशी पर और हमारी हेल्थ पर आने वाला है। एंड इस जर्नी ऑफ लाइफ को थोड़ा सा स्लो डाउन करके चलना है।
1: थैंक यू सो मच सिस्टर।
0: ओम शांति।
1: जरूर स्लो डाउन करेंगे।
0: ओम शांति।
1: ओम शांति। थैंक यू।
2: Our happiness grows in direct proportion to our acceptance and in inverse proportion to our expectations. The longer is our list of expectations from people and situations, the more is the chance of our being unhappy and dissatisfied. The way we live our life, what we eat, what we wear, how we speak and behave, sometimes may not be the right way for us. And yet, we do it only to get others' acceptance. We seek acceptance from others because we believe that when others

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: हम भी भूल गए कि हम मन के, बुद्धि के, संस्कारों के, इन कर्म इंद्रियों के हम मालिक हैं, हम राजा हैं, हम भूल गए। आज हम कहते हैं मुंह से निकल गया, हाथ उठ गया, आंखों से देख लिया, किसी का बुरा बोल दिया। मन तो सारा दिन चलता है, वो तो कभी सोचा, वो तो उसके बारे में तो कर्म इंद्रियों के भी गुलाम। ये तो सूक्ष्म इंद्रियां, इसको हम कहते हैं सटल ऑर्गन्स, मन, बुद्धि, संस्कार। लेकिन फिजिकल सेंस ऑर्गन्स, ये पांचों कर्म इंद्रियां, ये भी आज हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो आत्मा आउट ऑफ कंट्रोल ओवर इट्स ओन ऑर्गन्स, ट्राइंग टू कंट्रोल एवरीबडी एल्स। इट्स लाइक ड्राइविंग ऑन द रोड, अपनी गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल, लेकिन चाहते हैं कि बाकी सबकी गाड़ी मेरे हिसाब से चले। रिजल्ट क्या होगा? एक्सीडेंट के अलावा और तो कुछ हो ही नहीं सकता ना। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बाकी सब गाड़ियों में भी जो बैठे हैं ना, उनकी भी अपनी गाड़ी पे कंट्रोल नहीं है, उनकी भी अपनी गाड़ी पे कंट्रोल नहीं है। वो भी ये चाहते हैं कि हमारी गाड़ी उनके हिसाब से चले। जस्ट विजुअलाइज दिस सीन ऑन द रोड, जस्ट ओनली सी कि पांच गाड़ियां एक सड़क पर हैं, पांचों के ड्राइवर्स का अपनी अपनी गाड़ी पर कंट्रोल खत्म हो चुका है। एंड पांचों चाहते हैं कि जो बाकी चार है गाड़ियां, वो उनके कंट्रोल से चले।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: रिश्तों में सरलता और प्यार बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: अगर आप गुस्सा नहीं करेंगे जब किसी ने इस तरह से गलती की है, तब वो सच बोलेंगे। हम झूठ तभी बोलते हैं जब हमें सच बोलने का डर है, और डर ये है कि सच बोलेंगे तो कोई एक्शन लिया जाएगा। इफ आई एम श्योर अबाउट दिस कि मुझे डांट नहीं पड़ेगी, मैं आपको सच बता दूंगी। लेकिन इफ आई एम श्योर अबाउट दिस कि आपको सच बताने के बाद मुझे डांट पड़ेगी, तो इजियर चॉइस फॉर मी इज झूठ बोलो और निकल जाओ। सो इट्स ऑल अबाउट आई नो व्हाट योर रिस्पॉन्स इज गोइंग टू बी। ट्रस्ट आ जाता है ना उसमें, आपको पता है कि दूसरा आपको समझेगा कि आपने जो गलती की, नेवर माइंड, ही विल एक्सेप्ट यू, आप सच बोलेंगे। देर इज नो रीजन, कोई झूठ नहीं बोलना चाहता क्योंकि खुद को बहुत गिल्टी लगता है उसके बाद।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

नमस्कार दोस्तों, ज्ञान की धारा इस कार्यक्रम में मैं ज्योत्सना आपका स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो हमारा आज का विषय है महाभारत रूपी मनोयुद्ध में संपूर्ण विजय कैसे प्राप्त करें। आज हम देखते हैं कि इस घोर कलयुग में मानव जीवन महाभारत युद्ध का रूप ले चुका है। प्रतिदिन व्यक्ति अपने जीवन को सुखी समृद्ध और खुशहाल बनाने के लिए मनोयुद्ध रूपी संघर्ष करते हुए विजय का प्रयास करता नजर आता है, किंतु गलत आधार चुनने के कारण उसे विजय से अधिक हार का सामना करना पड़ता है। यादगार महाभारत युद्ध में दुर्योधन ने कृष्ण से उनकी सेना प्राप्त की और अर्जुन ने निहत्थे कृष्ण को अपना सारथी बनाया। परिणाम सभी जानते हैं कि निहत्थे होते हुए भी श्री कृष्ण ने पांडवों को जीत दिलाई और दुर्योधन की हार हुई। दुर्योधन की यही भूल थी कि उसने सेना को महत्व देते हुए भगवान का साथ ठुकरा दिया। आज लगभग सारे व्यक्ति उसी दुर्योधन के मनोभाव का अनुसरण कर रहा है। ईश्वरीय नियमों मर्यादाओं का उल्लंघन करते हुए वह सांसारिक संपदाओं के बल पर जीवन रूपी संग्राम में विजयी होना चाहता है, लेकिन परमात्मा को अपना साथी सारथी व खेवैया बनाकर जो जीवन रूपी रण क्षेत्र में उतरता है उसी की विजय होती है। सांसारिक सुखों का भोग करने की लालसा से हम अनेकानेक पाप करते हुए भौतिक संपदाओं का लंबा चौड़ा साम्राज्य स्थापित करने लग जाते हैं। इतिहास साक्षी है कि रावण सिकंदर आदि अनेक लोगों ने यह मार्ग अपनाने की भूल की और अंत में पछतावे के सिवाय उनके जीवन में कुछ भी नहीं बचा। तो आज हम देखते हैं कि भौतिक संपदाओं के आकर्षण के अंधे होने के कारण संपूर्ण सृष्टि के संचालक परमात्मा की स्मृति ही बुद्धि से ओझल हो जाती है। अहंकार में डूबे ऐसे लोग जीवन में चाहे कुछ भी करें, किंतु उनकी जो सर्व प्राप्तियां संदिग्ध ही रहती है। तो इसी के साथ हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद मैं फिर से आपसे आकर मिलती हूँ, और तब तक के लिए आइए सुनते हैं इस गीत को।

नमस्कार दोस्तों, तो ज्ञान की धारा इस कार्यक्रम में मैं ज्योत्सना आपका फिर से स्वागत करती हूँ। हमारा आज का विषय महाभारत रूपी मनोयुद्ध में संपूर्ण विजय कैसे प्राप्त करें। तो हम अपने आगे की चर्चा इसी तरह जारी रखते हैं। आज जैसा कि हम देखते हैं कि वैभव युक्त जीवन की लालसा ही हमसे ईश्वरीय सत्ता की अपेक्षा करवाती है, जो जीवन पर्यंत दुख कष्ट रोग संताप विलाप आदि का अनुभव कराने वाली परिस्थितियों को जन्म देती है। सांसारिक शक्तियों की ओर आकर्षण से समस्याएं तो समाप्त नहीं होती, किंतु जीवन से उमंग उत्साह मनोबल और आत्मबल अवश्य समाप्त होने लगता है। यदि आप देखिए तो संपूर्ण श्रद्धा भाव से जीवन मैया को पतवार जो है जीवन की मैया की पतवार परमात्मा के हाथों में सौंप दी जाए तो मन से भय व संशय समाप्त हो जाएगा। प्रभु पालना से प्रतिदिन आप देखना, दिन प्रतिदिन हमारा चरित्र दिव्य गुणों से भरपूर होता जाएगा। इस विश्व नाट्य मंच पर समस्त घटनाएं हमारे ही कर्मों की प्रतिफल के रूप में निर्धारित समय पर घटित होती रहती है, जिनके लिए कोई और व्यक्ति दोषी नहीं है। इसलिए विपरीत परिस्थितियों में परमात्म सत्ता पर अटूट व अटल विश्वास ही हमें उनका सामना करने का संबल प्रदान करता है। विश्व में कर्म की प्रधानता, कर्म करना मानव धर्म है। कर्मों के आधार पर ही जीवन यापन के समस्त साधन जुटाए जाते हैं। हम परमात्मा द्वारा निर्मित जो भी वैश्विक आचरण संहिता की परिधि में रहकर जो भी ईश्वर इच्छा के अनुरूप ही प्रत्येक कर्म करें, हमारे मन बुद्धि में यह प्रश्न सदा विचरण करता रहे कि परमात्मा मुझसे क्या करवाना चाहता है। क्या मैं परमात्मा की इच्छा अनुरूप ही कर्म करती हूँ या करता हूँ परमात्मा इच्छा को प्रधानता देने वाला उसके पावन हृदय से स्थान प्राप्त करने के साथ साथ अपना भौतिक जीवन में दिव्य श्रेष्ठ और महान बना सकता है। अपने जीवन को अपने सर्व कर्म यदि परमात्मा को अर्पित कर दिए जाए तो वह हमें सर्व दुखों से पार कर देगा। तो दोस्तों, इसी के साथ हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद मैं फिर से आपसे आकर मिलती हूँ, और तब तक के लिए आइए सुनते हैं इस गीत।

हमारा आज का विषय है महाभारत रूपी मनोयुद्ध में संपूर्ण विजय कैसे प्राप्त करें। जैसे कि हम देखते हैं आज की विडंबना यह है कि सब कुछ जानते हुए भी हम दुर्योधन की भांति अहंकार का चैतन्य प्रतिरूप बनकर परमात्मा की आज्ञाएं स्वीकार करने को तैयार नहीं, बल्कि अपने मन रूपी बल ही कंधों पर दुख अशांति चिंताओं रोगों असफलताओं के अनेकानेक बोझ उठाए हुए जीवन को घसीटते हुए जी रहे हैं। अपने हृदय देश में जन जन्मांतर से विराजमान अहंकार वासनाएं राग द्वेष का जड़ से उन्मूलन कर परमात्म इच्छा श्रद्धा पूर्वक स्वीकार करनी होगी हमें, तभी जीवन यात्रा सफल हो सकेगी। समस्त अस्थल व सूक्ष्म जगत का संचालन करने वाली परमात्मा सत्ता के अनुरूप जीवन को श्रद्धा पूर्वक ढालना ही सफल जीवन का मूल मंत्र है। अब हमें यहाँ पर देखना यह है कि सजगता पूर्वक अपना जीवन रूपी रथ परमात्मा के हाथों में सौंप कर विजय यात्रा पर चलने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। हमारी हर श्वास और धड़कन उसकी याद उसके प्यार में सराबोर होनी चाहिए, तभी हम 5 विकारों के विरुद्ध महाभारत रूपी मनोयुद्ध में संपूर्ण विजय प्राप्त कर सफल जीवन की परिकल्पना को साकार कर सकेंगे। तो आपने देखा कि ईश्वरीय सत्ता हमारे लिए कितनी जरूरी है, और अगर हम इसे अपने जीवन में अपनाते हैं तो इससे हमारा जीवन जो है वो ईश्वर के साथ रहेगी और सुख शांति और वैभव को प्राप्त करेगी। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का कार्यक्रम हम यही समाप्त करते हैं और हम आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए हंसते रहिए, गाते रहिए और कुछ गुनगुनाते भी रहिए। नमस्कार, ओम शांति।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: आज मैं आत्मा ड्राइवर ये गाड़ी मुझे चलानी है कि मेरी आंखें मेरे हिसाब से चले, मेरा मुख मेरे हिसाब से बोले, मेरा हाथ वो ही करे जो सही है कर्म और मन वो ही सोचे जो सही है। दैट वुड बी दैट माय कार इज इन माय कंट्रोल। सो लाइक दिस फाइव पीपल आर स्टेइंग इन द हाउस, पांच आत्माएं ड्राइवर और उनकी अपनी अपनी एक गाड़ी। अगर हर आत्मा का अपनी गाड़ी पे कंट्रोल होता तो जर्नी कैसी होती उस रोड के ऊपर? ब्यूटीफुल। हर एक ने प्यार से निकल जाना, हर एक ने एक स्टीयरिंग व्हील घुमाना है, थोड़ा सा दूसरा आ भी रहा होगा तो उसने ऐसे टर्न करना है, उसने घूम जाना, एक्सीडेंट कभी होता ही ना। द पावर टू मोल्ड, द पावर टू एडजस्ट, द पावर टू टर्न हियर, द पावर टू ब्रेक स्टॉप, सब कुछ हो जाता अगर ये गाड़ी मेरे कंट्रोल में होती तो। और अगर पांचों की होती तो वो जीवन वो घर स्वर्ग होता, राइट? अब अगर सपोज चार की भी नहीं है, एक भी अपने करना शुरू कर दे, सी, तो कितनी सारी चीजें बचेंगी अगर एक आत्मा अपने ऊपर संयम ले आए। दिस इज द पावर दैट वी हैव। लेकिन अगर पांचों ने अपना ध्यान नहीं रखा, अपनी उनकी ब्रेक्स चलती नहीं, उनका स्टीयरिंग व्हील उनके कंट्रोल में नहीं, लेकिन वो चाहते हैं कि वो बाकी सब गाड़ियां मेरे हिसाब से चलें, तो एक क्षण भी बिना एक्सीडेंट के नहीं चलेगा उस घर के अंदर। दिस इज द रियलिटी ऑफ आवर लाइफ टुडे।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0102 बोरियत की एरर, नएपन की कमांड रिजेक्टेड। अब हर चीज हर जगह तो नहीं मिलती, कुछ नयापन चाहिए तो सुनिए पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

मेरे कंप्यूटर, चल चल चल मेरे कंप्यूटर। कुछ चीजें ओरिजिनल ही अच्छी लगती हैं। सुनिए पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: हमने आज क्रोध को त्याग कर शांति को धारण किया तो हम सिर्फ अपने मन को सुकून नहीं, रिश्तों में प्यार नहीं, प्रकृति को सद्भावना नहीं, हम विश्व को सुंदर बनाने की सेवा कर रहे हैं। तो क्या हम सेवा करने के लिए तैयार हैं?
1: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: है तुम हो हसी कहाँ के
1: हम चांद आत्मा के
0: हाय हाय गुरूर इतना
1: हाँ हाँ गुरूर इतना
0: तो ये अदा है ये नया

तरसा है जब से तुम्हें देखा सनम, दिल बेकरार सा है।

अनुराधा, ओ अनुराधा, क्यों री पगली? अरे इस तरह रोने से क्या होगा? ओ तुम आंसू पोंछ रही हो, मगर मुझे हिचकियों की आवाज तो सुनाई दे रही है। अच्छा सुनो, तुम्हें एक कहानी सुनाए, बहुत दिन हुए

मगर सबसे ज्यादा दुख जानती हो किसे हुआ था? अनुराधा जैसी एक राधा थी, बिचारी बिचारी रो रो कर कहती थी।

0: 经济安全穿一个为了下步好学吧好आप खड़े नहीं खड़े
1: जी नहीं मैं डाइटिंग कर रही हूँ
0: डाइटिंग
2: लगता तो नहीं

गुलाबी रात के साए तले इन मासूम बच्चों की रात कितनी भयानक।

धरती अर्थी बन जाती है जब जब बारूद पिघलती।

0: मैं कहेंगी ना तो मैं जवाब क्या दूंगा?
1: जवाब? अरे बांगड़ू, प्यार में जवाब अपने आप सुन जाता है। कहना अनुराधा।
2: अरे गुरु गुरु गुरु, अनुराधा नहीं, बिंदु बिंदु,
3: बड़े तेरी की भूला।
1: कहना कहना
0: क्या
1: मेरी

0: और जब सवेरा होगा तो हंसेगा सोने पर।
1: किसी के रोने से हंसना अच्छा नहीं।
0: इसलिए हंसेगा कि महज एक सपना रुला गया।
1: जो सपना देखता है वही जानता है उसको टूटना क्या होता है।
0: जब सपना टूट जाए तो आंखें खोल लेनी चाहिए।
1: क्या देखने के लिए? अंधेरा?
0: नहीं, ये देखने के लिए कि रात बीत रही है, सवेरा जरूर होगा।
1: तो भी जख्म जो है उसे भर सकते वक्त लगता है।
0: इलाज करने से जल्द भर जाता है।

जो करता है पाता है। अरे अपने बाप का क्या जाता है। जोशी पड़ोसी कुछ भी बोले बोले, हम तो खुश नहीं बोले।